0: तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिष्ट के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई।
1: بعضكم لبعض عدو

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
2: हमसे रोशन ये जहां,
3: हमसे है

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: के किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

आई होप सो कि आप तमाम ही लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। भाई जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान इब्रार। मेरा और आपका साथ हुआ करता है हर सोमवार को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। इस साथ को खूबसूरत, हसीन, खुशगवार और मज़ेदार बनाने की हम भरपूर कोशिश किया करते हैं। मिनाइल मेरे साथ हुआ करती हैं, आज वो किसी वजह से नहीं है। सो कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी।

वो कहता है कि एक बार आ गया जो निगाहे हुसैन में, रहता है ता हयात पनाहे हुसैन में। इश्क अगर अपनी मस्ती में आ जाए तो, इश्क अगर अपनी मस्ती में आ जाए तो सर नेजे पर वो भी आ जाता है। रब दिलां विच रहंदा। हमेशा कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कोई किसी की आह अर्श को ना हिला दे। आप फर्श वालों के साथ अच्छा मामला किया करें, अच्छी चीज़ें किया करें, उनका दिल ना दुखाया करें, उनके लिए बेहतर चीज़ें, उनके लिए आसानियां किया करें। अर्श वाला आपके लिए आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। आपके काम कैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा।

अपने लश्कर से बगावत नहीं अच्छी लेकिन अपने लश्कर से बगावत नहीं अच्छी लेकिन आदमी हुर हो तो जायज़ है बगावत करना।

क्या कहने हैं यार, क्या कहने हैं। मैं ना एक वेंजुएला में पिछले दिनों कुछ एक बड़ा शिद्दत का जो है ना एक जलजला आया था, और उसकी एक वीडियो हमने देखी। और वहाँ पे जानवरों की वफादारी के हवाले से अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है वो इतना ही कोई कह लें कि एक घोड़ा था उसके साथ, उसकी एक मालकिन थी, और वो जो है वो घोड़ा जो है वो चल रहा था, और वो जो था बिल्डिंग गिर रही थी, तो वो घोड़ा उस अपनी जो मालकिन है उसके ऊपर ऐसे हो गया, और वो उसको अपने अंदर उसने जो है वो छुपा लिया, और अपनी मोहब्बत का, अपनी वफादारी का उसने इजहार किया।

शब्बीर के होते हुए सालार हैं अब्बास, शब्बीर के होते हुए सालार हैं अब्बास, अब इससे बड़ा क्या रुतबा सुनाऊं।

Alright, welcome back once again. Thank you so very much for tuning into FM 101 Channel Pakistan. www.facebook.com/FM101 Channel Pakistan. पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतों चाहतों का बेहद शुक्रिया हमारा जिस जिसने जहाँ जहाँ से भी साथ दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह माला खेल हैं और कहते हैं जी कि जो खुशबू इंसान के किरदार अखलाक और अमल में होती है वो किसी मुश्क इत्र या फूलों में नहीं. और ये खुशबू उस वक्त चली जाती है जब इंसान तकब्बुर में आ जाता है, जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है ना. बाबा जी कहते हैं फुलां दा तू इतर बना, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं फुलां दा तू इतर बना, इतर दा फिर कट दरिया, दरिया दे विच फिर गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका. तो ये बात है यार, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी बात की आपने. और ऐसे ही है बिल्कुल, जब आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है ना, जब आप कहते हो कि मैं ही मैं हूँ और मेरे अलावा जो है वो कुछ नहीं है, सब चीज़ें जो है वो मैं कर सकता हूँ या मैं करता हूँ. ये जो मैं है ना, ये एक लफ्ज़ मैं है बस, ये मैं तमाम तर चीज़ें जो है ना ये ख़राब करती है. और फिर जो है वो चीज़ें कैसे जो है वो आपके इख्तियार से भी निकल जाती हैं. और अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी होती हैं वो भी आप उस चीज़ को जो है वो भूल जाते हैं.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ऑलराइट वेलकम बैक वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू एफएम 101 चैनल पाकिस्तान। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान इब्राहिम, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जस्ट फॉर यू। और प्रोग्राम में शामिल आप कैसे हो रहे हैं, www.facebook.com/fm101channelpakistan पर आप जा रहे हैं, फेसबुक पर जाकर एक पेज ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप जो है वह कमेंट कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बेहद शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारा साथ दिया है जी अनीसा ने, हमारा साथ दिया है 4471 पर, और थैंक यू सो वेरी मच जी। खुश रहें, सलामत रहें, आपको और आपकी टीम को बहुत सलाम जी। प्रोग्राम इज़ वेरी गुड। अब्दुलशकूर एंड जवाद अली, थैंक यू सो वेरी मच जी। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत रखे और ऐसे ही जो है वो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहें। और बिल्कुल ऐसे है जी। अच्छा, फीफा के हवाले से हम बात करते हैं। मैचेस जो हैं वो चल रहे हैं और तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, तो इस हवाले से एक तहकीक है और वो दिलचस्प तहकीक है और दिलचस्प इंकशाफात भी हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो लाजमी तौर पर जो है ना वो हम शेयर भी करें। और वो सेहत के हवाले से हैं अगर हम बात करें तो, फीफा जो वर्ल्ड कप है या कोई भी मुकाबला है, कोई भी चीज़ जो मुकाबला हो रहा होता है उसको हम जनरल में ले लेते हैं। अभी

Manu.

0: और जी वेलकम बैक वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू एफ एम 101 चैनल पाकिस्तान। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान इब्रार। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जस्ट फॉर यू लाइव इस्लामाबाद के स्टूडियो से। वेल जनाब, अगर आप लोग ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं तो आप लोगों ने ड्राइव बड़ा केयरफुली करना है, बड़ा ध्यान के साथ करना है, बड़ा इत्मीनान के साथ करना है। मैं कोशिश करता हूँ और ज़ोर देता हूँ इस बात पर, और बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना वो अपना ख्याल रखना है। ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनका भी ख्याल रखना है। आपकी ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी आप एक सेकंड दो सेकंड के लिए आपकी अटेंशन हटी रोड से, आपकी नज़रें हटी, आप मोबाइल फ़ोन की तरफ आपने देखा, या कुछ कोई आपने रैश ड्राइविंग की, कोई चीज़ भी आपने की, कोई चीज़ भी ऐसी की जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, आपके जो इर्द गिर्द बाइक पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, साइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, किसी भी चीज़ पे हैं, पैदल हैं, आपने जो है वो कोशिश करनी है और उनका ख्याल रखना है। और भरपूर कोशिश के साथ जो है वो आपने बढ़ाना, इत्मीनान के साथ, ध्यान के साथ। आप जितना मर्ज़ी कोई तेज़ चला लें गाड़ी, फ़र्क दो तीन चार पाँच मिनट का पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कोई शख्स आपके पास से बड़ा तेज़ ऐसे जिग जैग करता हुआ गुजरा और आगे जाके किसी टोल प्लाज़ा पे, किसी पेट्रोल पंप पे, किसी भी जगह पे वो आप उसके पास पहुंच जाते हैं और आप जो है वो गठे हो जाते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक अपनी जो स्पीड है उसे मेंटेन करें, जो सेफ़ स्पीड है उसको मेंटेन करके आप जो है वो ड्राइव करें और ख्याल रखें अपना भी, अपने लोगों का भी जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की कोशिश भी होती है कि जो है वो जल्दी कर जाएं, लेकिन जल्दी नहीं करनी चाहिए। और बिलखसूस जो मेरे भाई बाइकर हजरात हैं, आपसे मेरी हाथ बांध के गुजारिश है कि ज़रा अगर आपने कहीं मुड़ना होता है रोड पे और कहीं जाना होता है आपने, तो आप जो है वो देख लिया करें, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अगर कोई 60-70 की स्पीड पर भी, अपनी स्पीड पर भी, मेनटेन स्पीड पर भी आ रहा है तो वो उसको ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा। और बाखुदा आज दो जगह पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बाइक वाले भाई आए और बिल्कुल ये ऐसे, मतलब वो उन्होंने क्रॉस किया मुझे रॉन्ग साइड से, एक तो ओवरटेक किया और फिर मेरे आगे आके उन्होंने वो यू टर्न लिया। और वो बहुत ही, पता नहीं, अब मुझे दुआई बचाती है हर दफ़ा। मैं तो, हमारा कोई कमाल नहीं, हम घर से निकलें और कोशिश करें कि सफ़र की दुआ लाजमी पड़ा करें, तो उस वजह से ही बचत हुई, अदरवाइज़ कोई बचत वाला मामला उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो कोशिश किया करें, ज़रा ख्याल रखा करें अपना भी, क्योंकि एक ज़रा सी आप देखें वो एक सेकंड का गैप है ना, वो आप जैसे आप ऐसे टर्न ले, एक तो आप ओवरटेक कर रहे हैं, अगर आपने मुड़ना ही है तो आप पीछे से मुड़ जाएं, आपने ओवरटेक करना है और फिर आपने बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल बोनट के पास से आपने ऐसे बाइक मोड़ा जैसे वो पता लग रहा था किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो बहरहाल कोशिश किया करें कि जो है वो थोड़ा सा ना अपना ख्याल रखा करें, और जो आपके घर में जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं उनका भी ख्याल रखा करें। कॉल्स की जानिब जाते हैं, 0511111001 एंड 0519202540। देखते हैं हमारे साथ कौन है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी गिदड़ सिंगी है यार, मैसेज भी आपका सबसे पहले आता है, कॉल भी सबसे पहले मिलती है, क्या वजह है?
1: हम लोग ये दिल से मिलाते हैं, जो बंदा दिल से काम करेगा वो डायरेक्ट हो जाता है।
0: क्या कहने हैं यार, मैं समझता था आप फोन से मिलाते हैं, आज पता लगा आप दिल से मिलाते हैं।
1: जब दिल का कनेक्शन ठीक होगा तो फिर सारा कनेक्शन ठीक होगा।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? क्वेटा का मौसम कैसा है यार, पहले तो ये बताओ।
1: बस क्वेटा का मौसम, ये 3 दिनों से मौसम बहुत ज्यादा गर्म है।
0: ना करो यार, मैं तो समझ रहा था वहाँ पे ठीक होगा मौसम, नॉर्मल होगा।
1: नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होगी। ये जुलाई का महीना तो फुल गर्मी में जाएगा, फिर जाकर 10 अगस्त तक थोड़ा गर्मी कम होगा।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, फिर हम खुश ही रहे अपने इधर अपने इलाके में।
1: हाँ, जाहिर से बात है, जब पहाड़ी इलाकों में इतना ज्यादा गर्मी होएगा तो फिर मैदानी इलाकों से फिर क्या गिला है।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
1: और क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों के लिए, बस अल्लाह पाक आप हमेशा खुश रखे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जितना हो सके हर किसी के साथ जो है प्यार मोहब्बत से में रहना चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसी है भाई, बिल्कुल ऐसी है, अच्छी बात है।
1: ठीक है,
0: थैंक यू सो वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। यार ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत के साथ जब आप रहते हैं ना, प्यार मोहब्बत के साथ जब आप चीज़ों को कर रहे होते हैं तो आप कोशिश किया करें। देखिए हमारे ना, हम में ये मसला होता है कि हम इंसान की एक नेचर भी है कि जब वो ला हासिल होते हैं ना, ला हासिल के पीछे आप भाग रहे होते हैं। जब वही चीज़ आपको हासिल हो जाती है फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती, फिर आप उसकी वैल्यू करते नहीं हो, फिर आप उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देते हो, अगर आप बैठ के देखो, आज भी आप बैठ के देखो, जितने लोग भी आप मुझे सुन रहे हो, आप सारे बैठ के देखो, कोई जिंदगी का कोई ना कोई लम्हा ऐसा होगा जिस लम्हे में आप एक चीज़ के लिए तड़प रहे होंगे, दुआएं मांग रहे होंगे, कोशिशें कर रहे होंगे, रात दिन एक कर रहे होंगे, आपको नींद की फिक्र नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी, जब वो चीज़, जब वो रिश्ता, जब वो सहूलत आपको मुयस्सर आ जाती है, फिर आप उसकी नाकदरी करते हो, फिर आपको जो है वो उसके आपके लिए वो बिल्कुल अहम नहीं रहती, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये ज़रा आप भरपूर कोशिश करें कि जब कोई चीज़ आपको मिल जाए तो फिर आप उसका जो है वो उसकी कदर भी करें, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो उस चीज़ से नवाजा, और फिर मज़ीद की तलब तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास जो मौजूद हो उसका आप शुक्र करें। तो 0511111001 अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: कैसे हैं मेरे बच्चे? तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुन रहे नहीं रही हैं इसलिए आप दो कह रही हैं।
2: मिनाइल के कैसी हो मेरा बच्चा?
0: मिनाइल तो नहीं है यहाँ पर, मलाइका बैठी हुई है अगर बोले तो। अगर मलाइका बैठी है अगर बोले तो वो नहीं बोल रही, वो कहती है मैं नहीं बोलती।
2: अच्छा मलाइका बच्चे कैसी हो?
3: शुक्र है।
2: अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो प्रोग्राम तो खैर मैं नहीं सुन रही, मैं बस फेसबुक पे आप लोगों के साथ शामिल हूँ, मैं तो कल कार आई हुई घूमने के लिए।
0: वाह जी वाह, क्या कहने हैं मिसेस सईद, क्या कहने हैं। उधर जी उधर एक झील है, ऐसी उधर एक झील है बहुत मजे की, वहाँ पे वो बड़ा ठंडा पानी होता है उसका।
2: हाँ बहुत जबरदस्त है, वो पिछली दफा मैं गई थी, जब आई थी तो इस दफा भी नहीं गई कि गर्मी इतनी शदीद है, आज इतनी गर्मी हुई भी है ना, आज तो बहुत ज्यादा है।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी का ना ही पूछो।
2: और सुनो क्या हाल चाल है, सब खैर खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास।
2: मिनाइल क्यों नहीं आई, ठीक तो है?
0: मिनाइल मेरे ख्याल में ठीक है, और कोई मजबूरी थी, कोई मसला था, सही हमारी बात नहीं हो सकती।
2: दोनों की लगी हुई थी, मैं समझे दोनों आप बैठे हुए हो, आप दोनों होंगे।
0: ऐसे ही है।
2: अच्छा टॉपिक क्या रखे?
0: कोई अच्छी बात करने आज जो आपका दिल करता है।
2: कोई अच्छी बात? वैसे मैंने दो अच्छी बातें लिखी भी हैं, अच्छा वो भी चेक कर लेना।
0: बड़ा मसला बना हुआ है मिसेस सईद, बड़ा मसला बना हुआ है, मुझे मैसेजेस ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और बहुत कोई पहले हम ढूंढ लेते थे मैसेजेस, अब वो सेटिंग ऐसी
2: हाँ। अकेला बंदा हो ना फिर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं।
0: नहीं वो भी नहीं है, लेकिन बस कोई सेटिंग ऐसी हुई हुई है उस पेज की कि वो हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ।
2: चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बस नाम ही ले लिया करो सबके,
0: ऐसे बिल्कुल ऐसे
2: पढ़ने की जरूरत भी नहीं। एक अच्छी बात कह के इजाजत चाहती हूँ
0: जी जी।
2: रफ्तार आता हर कमी पूरी हो जाती है, जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है,
0: ऐसे है जी।
2: इंसान को इंसान अगर गंवा दे तो तलाश के बावजूद भी ढूंढ नहीं पाता।
0: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी।
2: तो जीते रहो मेरा बच्चा, सलामत रहो, खुश रहो, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: इंशाल्लाह वापस जल्दी आऊंगी, सबके साथ शामिल हो जाऊंगी
0: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे से खैरियत से आए, खैरियत से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेकर आएँ और खैरियत से रहें, और बच्चों के साथ आप इंजॉय करें, और जो अपना टाइम है वो स्पेंड करें। यही वक्त होता है, यही चीज़ें होती हैं जब आप अपनों के साथ होते हैं, और जब आप चीज़ों को जो है वो गुजार रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप फिर बाद में याद भी करते हैं। तो अच्छी बात है, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जो आपने बात की कि इंसान को अगर आप खो दें, तो ये वाकई ये चीज़ बड़ी तकलीफ देह होती है कि अगर आप किसी का एतमाद खो दें, किसी का भरोसा खो दें, किसी इंसान जो शख्स आप पर आंखें बंद कर अंधा एतमाद करता है, अगर आप वो खो दें, तो वो फिर ना आपकी वो वैल्यू रहती है उसकी ज़िंदगी में, और ना जो है वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह की हो सकती हैं। तो ये कोशिश किया करें, वही बात है, पहले वाली बात सी बात रिलेट होगी कि कोशिश किया करें कि चीज़ों को बेहतर रहने दिया करें, चीज़ें अगर आपके हक में आ जाएँ तो उनको हक में रहने दिया करें, उनके साथ फनकारियां ना किया करें। 0511111001 अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
4: एजाज मनोहर बात कर रहा हूं कोटा
0: से। एजाज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आफ्टर सो लॉन्ग।
4: नहीं यू आर कम बैक टू सो लॉन्ग।
0: नहीं हमारा एक प्रोग्राम मिस हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले प्रोग्राम में भी आपकी कॉल नहीं आई, उससे पहले भी नहीं आई, मुझे शायद मुझे याद गलत पड़ रहा है, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है।
4: ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए प्रोग्राम स्किप किए हैं कि मुहर्रम की वजह से, मैं कहा प्रोग्राम नहीं हो रहे।
0: नहीं मुहर्रम से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मुहर्रम से पहले।
4: मेरे ख्याल में हुई
0: सुनाए कैसे हैं, क्या हो रहा है?
4: ठाक आपने मैं आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खोटा का मौसम कैसा है?
4: खोटा का मौसम जिस तरह मरी का होता है इसी तरह है। आप मरी के हैं ना?
0: हाँ मरी यार, मैं कल मरी था और कल मुझे जो है ना वो थोड़ा सा ना होता है कि मरी जो है वो आप जाएं क्योंकि वहाँ पे ज़रा मौसम अच्छा बेहतर हो जाता है। लेकिन मैंने सुना था कि कोहोटा का मौसम उतना एज़ कम्पेयर टू मरी ज़रा गर्म ही होता है।
4: हाँ, मैं मरी का आप पहन कैसे है उधर?
0: मरी का अच्छा था, मरी का तो बेहतरीन था, पंखा
4: चलो
0: लगाने की
4: ठीक
0: ज़रूरत नहीं थी
4: ठीक
0: लेकिन
4: है, जाए
0: लगाया था रात
4: मरी
0: को।
4: की जहाँ पर मौसम अच्छा होता है। लेकिन सेम है कोटा जो है ना, मरी और कोटा का वेदर जो है सेम है, थोड़ा
0: चल एंड
4: सा
0: दैट्स
4: डिफरेंस
0: ग्रेट, गुड हो
4: है।
0: गया, गुड हो गया जी। और सुनाएं क्या कहना चाहेंगे
4: बस सर आपका शो सुन रहा था
0: सर। थैंक यू।
4: तो वो पहली कॉल आई अल्हम्दुलिल्लाह खैर की, तो मैंने कहा यार मैं भी हाजिरी लगा दूँ, तो
0: चलें बो
4: आपका बहुत अच्छा शो है। तो आज मिनल आपकी नहीं आई है?
0: मिनाहिल आज नहीं आ सकी हैं, उनका कोई काम था आई थिंक सो, या कोई मसरूफियत थी, हमारी बात नहीं हुई डिटेल, लेकिन वो नहीं आ सकी हैं आज।
4: आपका शो रेडियो ट्यून करने से पहले मैंने सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट लगी हुई देखी थी दोनों की, तो जब ट्यून किया तो आप सिंगल बोल रहे थे, मैंने कहा कि
0: हाथ हो
4: आपका
0: गया
4: होगा।
0: उस्मान के साथ, आज हाथ हो गया।
4: हाँ, अमूमन मेरे ख्याल में जो है ना नैलिम क्या जो है ना वो शो से जो मिस होती है वो
0: हाँ ये वैसे पूछते हैं हम अगली दफा कि अमूमन क्यों ऐसा होता
4: सर। मैं आपको मैं बताऊँ ना, जिस तरह आरजे सहेल खान और रिबेका भी शो करती है ना,
0: है।
4: इसी तरह आप दोनों का शो जो है ना, हम ज्यादातर कंबाइंड शो बहुत खूबसूरत होता
0: ऐसे
4: है और हम इसको ज्यादा जो
0: ऐसे
4: है ना वो करते हैं
0: बिल्कुल
4: डेडिकेट
0: ऐसे,
4: और
0: मैं आपकी
4: कवरेज
0: बात के
4: करते
0: साथ
4: हैं।
0: एग्री करता हूँ
4: हेलो,
0: जी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं कह रहा हूँ एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
4: कंबाइंड शो जो होता है बहुत मजा आता है, इतना सिंगल पर्सन प्रोग्राम करते हैं इतना मजा नहीं आता जितना कंबाइंड शो सुनने में मजा आता है।
0: चले हम कंबाइन ही करते हैं जी अगली दफ़ा इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं, अगर वो छुट्टी करें तो फिर मैं भी छुट्टी कर लिया करूँगा।
4: नहीं, हम आपको विश करते हैं, ये नहीं कि आप नए इम्तिहाज के बाद अकेले हैं तो आपको नहीं पूछते, तो आरजे जो है ना तमाम आरजे हमारे यहाँ को उतारते हैं।
0: चलें बहुत शुक्रिया एजाज भाई, खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू।
4: आप सबको जो है ना आरजे को तमाम पूरी टीम को सब सुनने वालों को विजी शरीफ मलिक को और इश्तियाक मलिक को आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा मकतूब भरा सलाम कबूल हो।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच एजाज भाई, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें। और बिल्कुल ऐसी है जी, 101 का खासा भी रहा है कि कंबाइन शोज़ जो हैं वो हुआ करते हैं, और कंबाइन शोज़ का अपना ही एक जो है वो चार्म होता है। तो बिल्कुल एजाज भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। 0501111001, सलाम अलैकुम जी।
1: वो बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह था तो बिस्मिल्लाह था जिया है अपरू वो असमान इबरार था बिस्मिल्लाह करा बेटा, क्या हाल है कैसे? ओ
0: अल्हम्दुलिल्लाह सर, मलिक साहब आप ठीक हैं?
1: पता नहीं आप कहाँ से इतनी खूबसूरत बातें कहाँ से तलाश करके लाते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज खूबसूरत आवाज के मालिक और जबरदस्त कंपेयरिंग।
0: सर आपका हुस्ने समात है सर, खुश रहें।
1: ओ सुने, मैं आपसे राजी हूँ ना कि आप मेरा नाम याद रखते, मुझे तो सारी दुनिया जानती है।
0: ऐसे ही सर,
1: मैं नाराज हूँ मिनाइल के साथ के वो मेरा नाम भूल जाती है, मेरा नाम उसे याद ही नहीं, आपने उसका इम्तहान लिया लेकिन वो फेल हो गई है, आप पास हो गए।
0: सर फिर भी फायदा नहीं है ना, देखें वोट की जब बारी आती है या इस तरह का कोई मामला होता
1: अरे
0: है तो
1: वोट
0: फिर वो
1: आपको मिलेगी, आप
0: फिर वो
1: इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, मैं भाभी जाता हूँ बेटा,
0: बस
1: मैं वोट आपको ही मिलेगी इंशाल्लाह।
0: हम नेक्स्ट वीक कोई कंपटीशन रखेंगे तो फिर उसमें वोट आपने मुझे ही देना है, आपका दिल माने ना माने।
1: मैं बिल्कुल दूंगा बेटा, ये सुने ना, मैं माफी का तलबगार हूँ लेकिन आपको वोट देनी है, मैं सर के बल

0: जाता जाऊंगा और आपको वोट दूंगा।
1: ये मलाइका बताना नहीं है किसी को कि मैं वोट खरीद रहा था?
0: नहीं, कुछ तो नहीं रहा बेटा।
1: कोई सुन नहीं रहा सर, कोई सुन नहीं रहा सर।
0: अच्छा, तो बेटा आपने जो आगाज किया ना शोदाए करबला, मैं 10 दिन जो है कि मैं वाक्य करबला पे बातें करता रहा। मैं 88.6 का मावन प्रोग्राम भी हूँ और 10 दिन मैंने जिक्रे हुसैन की महफिल सजाई। अल्लाह ताला मेरी फादरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपने भी जो आगाज किया है शोदाए करबला से आगाज किया है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ कि खूने हुसैन करबला में किस शान से अमर हो गया था, खूने हुसैन करबला में किस शान से अमर हो गया था, घटाकर गर्दन अपनी सर लेदे पर हो गया था।
2: बहुत खूब सर।
0: तो बेटा मैं असल में सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 101 की पूरे स्टाफ को और अपनी बेटी सदफ रानी को और पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि महरम के दौरान आपने इंतहाई अकीदत व एतराफ़ के साथ प्रोग्राम पेश किए और जिसका सेहरा जो है सदफ रानी और स्टीव के सर जाता है। और मैं सलाम पेश करता हूँ, शाबाश पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ खसूसी तौर पर बेटी सदफ रानी और टीम।
1: बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें सर, आबाद रहें, थैंक यू सो मच।
0: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मलाइका बेटी को मेरी तरफ से मापतों बरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
0: इसके अलावा मेरी तरफ से सदफ रानी बेटी को सलाम, इजाज मुगल साहब को सलाम, नजीर कियानी साहब को सलाम और मेरे सिंगर उस्ताद श्री अफवान साहब को और इसके अलावा हमारे जो है नजीर कियानी साहब है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश करना। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आज ये यकीन जाने के मैं 10 दिन प्रोग्राम में आया हूँ और मैंने शोदाए करबला का जिक्र किया है, तो आपने भी आज वही जिक्र किया है, तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन और मुबारक हो। बहुत जबरदस्त आप आए और मेरे हुसैन का की महफिल आपने आज भी आपने सजा दी और आपको मुबारकबाद मैं आपको भी पेश करता हूँ। अगर कोई गलती होगी तो बेटा माफ कर देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, बसला ख्वाजा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुश रहे मलिक साहब, आपकी मोहब्बतें, आपका हुस्ने समात, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत रखे ताकि आमद रखे। 051-111-0101 अस्सलाम वालेकुम जी।
3: डियर ब्रदर उस्मान का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। योर लविंग ब्रदर मलिक अली स्पीकिंग, हाउ आर यू डियर जान?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तो बैक टू बैक मलिक आ चुके हैं। कैसे हैं सर मलिक साहब? ठीक हैं,
3: अल्लाह तआला का शुक्र है। आप आए बाहर जैसे बाहर है, अल्लाह तआला को सलाम रखे, बहुत से कामयाबी दे,
1: आमीन।
3: अभी अंकल इश्ताक साहब आ रहे हैं, उनकी बात में सुनने बहुत खुशी है। अंकल इश्ताक साहब को, मूसा भाई भैया, अंकल मफूज साहब को, जितने भी नर्सलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ से बहुत सारा बहुत सा देश है। और मान जी रहे थे मिस्त्री साहब, उनको बहुत से सलाम को आज का कल रिकार्ड नहीं है बच्चों के साथ मनाने के लिए। उस्मान जी कैसे गुजरे आपके दिन? आपको बहुत मिस किए थे मैंने, चलो हमारे के बाद भैया आ गए, बहुत अच्छा लगा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप ठीक हैं, हैरियत से मलिक साहब?
3: बहुत प्यारे शो, बहुत अच्छे डिस्कशन। वैसे पैसे मेरी अपने मलाइका बेटी को बहुत बहुत सलाम पेश करूंगा क्योंकि आज आप मैंने ऐसा पता नहीं आए तो उनको भी बहुत से पैसे। वैसे पैसे उस्मान भी आज आवाज लगाइएगा कश्मीर से रजवान भैया को, उनको बहुत सलाम, बहुत सा दवा, बहुत से पैसे, उनकी बहुत सारी राजी लगी है। रजवान जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अभी किसी टाइम कॉल पे आ जाइएगा। इसके अलावा तमूर भैया को भी चकवा बहुत सा सलाम,
1: बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा
3: दो खूबसूरत बातें कहूंगा।
1: जी जी सर,
3: दूर के चांद से मिट्टी का दिया बहुत है, समझने वाले भी बहुत कष्ट है।
1: मैं समझ गया सर, आपने बात किया मैं समझ गया।
3: दिया बहुत है और पैर छोटे से बाजे की रख दे जमाना चाहे दिल तोड़ कर, रख दे जमाना चाहे दिल तोड़ कर, रोना नहीं जिंदगी की किसी मोड़ पर। आपके लिए 150 गाय उस्मान जी अल्लाह तआला सलाम रखे और मेरी तरफ मैम सदर रानी साहब को और पूरी टीम मामन जिन सवाल तमाम को उस्मान जी को मलिक करने में सलाम। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक उस्मान जी, थैंक यू।
1: बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल किया। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत रखे और यूं ही आप लोग जो है वो प्रोग्राम में शामिल होते रहें और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा लगता है, यकीन माने जो सारी चीज़ें हैं ना वो बड़ी बेहतर हो जाती हैं। हम देखते हैं जी हमारे साथ फेसबुक पर कौन कौन है और कहाँ कहाँ से है, क्योंकि थोड़े से मसाइल होंगे, अगर किसी का मैसेज मिस होता है तो आई एम वेरी सॉरी, अब मैं बहुत माजरत खा हूँ, क्योंकि कुछ मामला ऐसे हुए हैं, ऐसे हम देखेंगे कि इसकी सेटिंग ऐसे ठीक कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह प्रोग्राम वेरी नाइस, मलेशिया से सुन रहा हूँ, अहमद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, खुश रहें सलामत रहें। और उसके साथ साथ गुल यासीन नाज हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच, अहमद हमारे लिए दुआएं भेज रहे हैं, फूल भेज रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और उसके साथ साथ कौन है जी हमारे साथ, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया जी, मिसिस सईद मलक ने हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस भेजे, और थैंक यू सो वेरी मच मिसिस सईद, खुश रहें आबाद रहें। और उसके साथ साथ कौन है जी, स्टाइलिश पख्ताना हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का। रियाज साहब हमारे साथ हैं, रियाज साहब बहुत शुक्रिया, किरण ने हमारा साथ दिया 4471 पर पिंडी से, और कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुस्कुराते रहें हंसते रहें, थैंक यू सो वेरी मच किरण, आप भी खुश रहें सलामत रहें। शोएब ने हमारा साथ दिया जी चकवाल से, चकवाल से कह रहे हैं कि मैं चकवाल से सुन रहा हूँ, किसी जगह का आपने आगे नाम लिखा है और वो मुझसे नहीं पढ़ने हो रहा, हम वेरी सॉरी। और कहते हैं जी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत रखे। और जो आपकी कॉल्स हैं उसका सिलसिला बिल्कुल हम शामिल करेंगे, लेकिन स्ट्राइक के बाद, और आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ साथ रहना है।

0: Alright, welcome back once again. Thank you so very much for tuning into FM 101 channel Pakistan. Program mein shamil hone ke liye mobile uthakar right message option mein jayenge, type karenge 101 space naam paigham send kijiyega 4471 par uske saath sir www.facebook.com/FM101channelPakistan search karenge, ek adad page milega, us par ek adad post milegi, us par aap jaakar comment kar sakte hain. Aur calls ke liye aap number note kar len 0511100101 and 0519202540 aur bilkul aap program mein shamil ho sakenge. और लाइव कॉल जो है वो आपके प्रोग्राम में हम इंटरटेन करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच जो जो लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी मोहब्बतों चाहतों का बेहद शुक्रिया. वेल जी, बात करते हैं हम अद्वियात के हवाले से. अब देखा है हमने कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जाली जो अद्वियात हैं वो उस हवाले से भी सामने आती हैं कि कोई जाली कंपनीज़ होती हैं वो अद्वियात जो हैं वो उसको जो है वो मार्केट में जो है वो बेच देती हैं और मार्केट में जो है वो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जिससे आपकी सेहत के जो मसाइल हैं वो हो जाते हैं. तो उस हवाले से हुकूमत का एक प्लान जो है वो तरतीब पाया गया है और वो मास्टर प्लान क्या है वो मैं बिल्कुल आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा. पाकिस्तान में जाली और गैर मयारी अद्वियात के बढ़ते हुए मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने आइंदा 60 दिन के अंदर मुल्क भर में बार कोड सिस्टम जो है वो नाफिज करने का ऐलान जो है वो किया है. और वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजारत सेहत और मुतल्लिका इदारों ने इस निज़ाम के नफाज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं. और उन्होंने मजीद कहा है जी कि बार कोड सिस्टम के नफाज के बाद हर दवा की मुकम्मल ट्रैकिंग और निगरानी मुमकिन हो जाएगी, जिससे मार्केट में दस्तियाब अद्वियात की असलियत की तस्दीक की जा सकेगी और जाली अद्वियात के कारोबार की मौसर रोकथाम मुमकिन होगी. वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 85% अद्वियात मुकामी सतह पर तैयार की जाती हैं, ताहम फार्मास्यूटिकल सनत के दरकार तकरीबन जो है वो 99% है और खाम माल बैरून मुल्क खसूसन चीन से जो है वो दरामद जो है वो किया जाता है. और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अद्वियात के खाम माल की मकामी पैदावार बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि दरामदात पर इन्हिसार कम हो और मुल्क का जो फार्मास्यूटिकल शोबा है वो खुद कफालत की जानिब जो है वो गामजन हो सके. तो इस हवाले से ये अपडेट थी जिस हवाले से बार कोड और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रही हैं और चीज़ें जो हैं वो बेहतर जो है वो हो रही हैं. 0511100101 अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नाम बताइएगा. फ़ाइज़ा कहोटा से. फ़ाइज़ा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. क्या हो रहा है फ़ाइज़ा? क्या बता, आप शहर की तरफ रहती हूँ, वो किसी पहाड़ की तरफ रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. फ़ाइज़ा आप हमें पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं आई थिंक. माइज़ा चलें. माइज़ा थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें पहली दफ़ा कॉल किया मेरे ख्याल में. चलें बहुत शुक्रिया माइज़ा, खुश रहें सलामत रहें. चलें जी, वालेकुम सलाम, सबको सलाम पहुंच चुका है आपका. थैंक यू सो वेरी मच माइज़ा, बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल किया. कॉल किया करें. बहुत शुक्रिया, चलें बहुत शुक्रिया माइज़ा, खुश रहें. थैंक यू. मलाइका आपी आपको भी सलाम. मलाइका वालेकुम सलाम कह रही है जी. ओके थैंक यू सो वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग कॉल करते हैं इस तरह से. खामोशी से सुनना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी कॉल करनी चाहिए. तो आपने कोशिश किया करें। मैं इसीलिए अब कॉल ज़्यादा ले रहा हूँ कि जो लोग नए आने वाले हैं उनको भी मौका मिल सके, और वो पुराने जो भी हैं वो भी नाराज़ ना हों, और नए जो हैं उनको भी मौका मिले। तो आपने कॉल्स जो है ना वो हमें लाजमी तौर पर हमें किया करें और हमें बताया करें, ठीक है? 0501111001। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: मैं
0: वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
1: आफिया खान लाहौर से।
0: आफिया खान या आसिया खान?
1: आफिया
0: आसिया। कैसी हैं आसिया, आप ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लाहौर का मौसम कैसा है, वहाँ तो और गर्मी होगी?
1: लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी है, पूछे मत, एसी में भी पता नहीं चलता, इतनी गर्मी है।
0: ये तो है।
1: और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है,
0: थैंक
1: और
0: यू।
1: तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: और क्या आप एक सॉन्ग प्ले कर देंगे?
0: जी जी बताइए, कौन सा करना है?
1: मुंह का वेनु करके एतबार दीनिया,
0: मुझे समझ नहीं लगी।
1: मुंह का वेनु करके एतबार दीनिया।
0: अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं कोशिश करता हूँ, मलाइका बैठी हुई है, अगर वो मुझे ढूंढ के देती है ना तो मैं जो है
1: सर
0: वो।
1: वो आपका जो दूसरा नंबर है 0421111, वो बंद है क्या? वो
0: नहीं, नंबर सारे चल रहे हैं, बंद तो कोई भी नहीं है, बस मिलती कॉल कभी किस पे है कभी किस पे है।
1: अच्छा, तो ये बात है, मैंने इस पर की थी लेकिन तीन मतलब उठाए, लेकिन आगे से कुछ बोला नहीं, फिर मैं डर गई, फिर मैंने कहा
0: जी आपने किस टाइम की थी कॉल?
1: ये कुछ देर पहले की थी, तो तीन मतलब उठाए लेकिन आगे से कुछ बोला नहीं, फिर मैं डर गई।
0: ये मलाइका तुम फोन उठाती हो, फोन उठा के बोलती नहीं है। चलें ठीक हो गया जी, बिल्कुल ऐसे ही आप ना, आप जब मैं बताता हूँ ना फिर उस वक्त कॉल किया करें, मलाइका हमें फोन उठाती रहती
1: और मैं यहाँ पर एक सुनने वाला है, उसे मैं एक शेर कहना चाहती हूँ
0: जी।
1: कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरों से मिलती है अक्सर नजरे, हर दोस्त वफादार नहीं होता।
0: ठीक हो गया जी, गुड
1: सॉरी
0: हो।
1: सॉरी सॉरी, हर नजरों से मिलती है अक्सर नजरे, हर नजर का मतलब क्या नहीं होता,
0: हाँ ऐसा बात। मैं भी
1: मैं भूल गई,
0: ऐसे ही, बिल्कुल
1: मैं
0: ऐसे।
1: डर
0: कोई
1: जाती
0: बात
1: हूँ
0: नहीं,
1: नजर
0: कोई बात नहीं,
1: से।
0: ऐसा
1: चले
0: हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई इशू नहीं है।
1: जरा मेरा गाना सुना दे।
0: चलें बिल्कुल प्ले करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आसिया, हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने लाहौर से हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, कॉल
1: अल्लाह
0: करती रहा करें,
1: हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। वो कहता है कि ये कायनात सुराही थी, जाम आंखें थी, मुवासलात का पहला निज़ाम आंखें थी। तो आंखें जो है ना वो बड़ा मैटर करती हैं। मुंह काबे नु करके वो ढूंढ देंगी, आपको पढ़ा है गाना? मुझे मुझे तो नहीं पता, मैं ढूंढ भी रहा हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है तो हम प्ले कर देते हैं। हमें लाहौर से फरमाइश आई है, वो कहते हैं कि लाहौर जो है ना वहाँ से जो फरमाइश आती है वो प्ले करनी चाहिए हमें, तो उस हवाले से फिर आप ढूंढें। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। 0501111001। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो गया यार, कोई लोड ज़्यादा पड़ गया फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम, काजनदार पकड़ना लो बोल यहां से, कलर कार तो बोल यहां,
0: चाचा जी आज कलर कार कितने पहुंचे हो?
2: कलर कार पहुंचे ना, कलर कार नौकरी करे नहीं, चकवाल तो कलर कार उन बगनिया जाने और तो नौकरी करे नहीं डाले वातो।
0: क्या बात है चाचा जी, तो क्या उत्थे झील भी है एक बड़ी सोहनी जी?
2: हम भी बड़े नो दे, तू भी बड़े नो,
0: लोकार्ड भेजो ना फिर थोड़े जी।
2: लौकार खत्म हो गए नो,
0: ऐसे ही होता है मेरे साथ,
2: खत्म हो
0: मेरे
2: गए।
0: साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब चीज मांगो ना वो कहते हैं खत्म।
2: हाँ, मेरे वाटो नो, अगले साल मेरे वाटो, अगले साल वाटो,
0: अल्लाह चलो अगले साल इंतजार करने, केड़े महीने च बात मिल सन,
2: तुझे तो वाटो आवाज मेरे वाटो नो,
0: बात बात केड़े महीने च मिल सन,
2: वाटो पंजवे महीने कनका कपेनिया,
0: 5वें महीने ना इंतजार, वत मैं 2 महीने लेट थी गया, महीना लेट थी गया। ओहो ये तो बड़ा रोला थी गया, उन 11 महीने वेट। सुनाओ ना जी, सुनाओ ना शेर, बिस्मिल्ला करो। बेहतरीन है, मैं लुकाट मंगिया तो उसके लुकाट कोई
2: नहीं।
0: चलो ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਬਹਰਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਿੰਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਸਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਮਲਾਇਕਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਵੈਲ ਆਸੀਆ ਜੀ ਹਮੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾ, ਤੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ, ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਅਗਰ ਹਮੇ ਕਭੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਯੇ ਗਾਣਾ ਹਮ ਆਪਕੋ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਵੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਯੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਯੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਯੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਔਰ ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਹਮੇ ਜਿਸ ਔਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ।

ओके मैंने गाना ढूंढ लिया यार, देखो मतलब पड़ा हुआ था और मलाइका को नहीं मिल रहा था। देखो मलाइका का ये काम है, मलाइका फेल होगी आप आज। ये मैं ना बताऊंगा, मिनाहिल को बताऊंगा कि मलाइका फेल होगी।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहदी इलाके में खुफिया इतलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन और दहशतगर्दों के ठिकानों को ठीक ठीक निशाना बनाकर 29 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। हुकूमत ने ज़रई शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कौमी ज़रई बायोटेक्नोलॉजी की मंजूरी दी है। और आइंदा माली साल के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का बजट आज मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: मैं इकबाल कासिम टेस्टिकेटर, मैं हूँ पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेस्ट क्रिकेटर समी असलम और आप सुन रहे हैं FM 101, मैं हूं पाकिस्तान।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत बातों को, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे।

अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत माहतों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत माहतों को इस उम्मीद के साथ

पता नहीं क्या हुए जा रहा है। एनीवेज जी, सुन रहे हैं आप अपना फेवरेट प्रोग्राम लेडीज लाउंज। सारा प्रोग्राम इधर उधर हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एनीवेज जी, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ मैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे। उस पोस्ट पे जाएं और जाकर कमेंट करें, और यहाँ पे मैं एक अदद सॉन्ग लगा रही हूँ, तब तक ये सॉन्ग इंजॉय करें, फिर मैं वापस आती हूँ और आके आपसे करती हूँ मजीद बातचीत।

जी जनाब, यार मुझे ना आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है इस पे, ज़रा मेरे कमेंट सेक्शन में आके ज़रा मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक जा रही है। अगर तो ठीक जा रही है तो फिर ठीक है, अगर ठीक नहीं जा रही तो फिर उसको मैं ठीक करवाने की कोशिश करूं। आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है तकरीबन दो हफ्ते के बाद, और इन दो हफ्तों में आपके ये दिन कैसे गुजरे ये आपने मुझे बताना है। अभी मैं बस प्रोग्राम कैसे कर रही हूँ, मेरे कानों में मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि आपकी आवाज़ ठीक जा रही है। लेट्स सी क्या होता है। आज है जी 29 जून, और जून की जहाँ बात करते हैं वहाँ जून की छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, जून की जहाँ बात करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत भी आ जाती है, गर्मी की शिद्दत में आम का मौसम भी आ जाता है। मैं कल अभी एक पोस्ट पढ़ रही थी और फिर मैंने उसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी की कि जिनके आम के बागात हैं ना उनको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अब बहुत ज़्यादा पोस्टें आजकल वैसे चल रही हैं, वो कहते हैं कि मुल्तान वालों से रबते बहाल करने का मौसम आ गया है, लेकिन मुल्तान वाले जो है ना आजकल सलाम दुआ नहीं करते, ऐसे कुछ मामला चल रहे होते हैं ना। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके इतने दिन कैसे गुजरे, ये आपने मुझे बताना है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा आपके यहाँ गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है, गर्मी की शिद्दत कैसी चल रही है, और इस शिद्दत में क्या कुछ खाया जा रहा है। 04221100101 हमारा डायलिंग नंबर है, उस पर आपने कॉल डायल करनी है और डायल करके हमारे साथ आ जाना है। आज हमने बात करनी है किस टॉपिक पे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी में, यानी कि बाहर जितनी ज़्यादा लू है, जितनी ज़्यादा तपिश है, और इतनी गर्मी से एसी वाले कमरे में, चिल वाले कमरे में आते हो, या जहाँ पे पंखा चल रहा होता है, या जहाँ पे वो कूलर चल रहा होता है, फिर एक अलग किस्म का सुकून होता है ना, है ना, होता है ना। कभी बंदा कहता है बस दुनिया में जो एक जन्नत है ना वो बस यहीं पर है, और फिर बस हम वहाँ सुकून करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी जब चल रही होती है ना, ज़िंदगी में कुछ लोग शामिल होते हैं और उन लोगों के आने से दिल कहता है कि ज़िंदगी सकून दे हो गई है, सकून दे। बाज़ दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों से, वो चीज़ें वो लोग नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है, इंसान कहता है अच्छा ऐसे भी। अरे म्यूजिक सुनवाते हैं आपको, इंजॉय करें। मुझे यार जरा ये प्लीज बताएं, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है आप? अच्छा जी, सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक हो गया, ओके जी, अब फिर मैं सही बोलूंगी। अभी तो

वेलकम बैक टू एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियोस पे ज़ुबैर शफी अपना प्रोग्राम जो लेडीज लॉन्च लेडीज लॉन्च में मेरा आपका साथ हुआ कहता है हर चीज की तो भाग गया सारे मामला चलते रहते हैं और जो लोग इन सारे मामला को फेस करके कख नहीं हो रहा इन सारे मामला को फेस करके फिर आगे बढ़ते हैं ना फिर वो ही तो चैंपियन कहलाते हैं चैंपियन पता नहीं अब ये क्या हो गया

बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आपने मुझे बताना है कि रिलेशनशिप ये जो होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है हमें रिलेशनशिप, वो बहन भाई का रिश्ता, वो माँ बाप का रिश्ता, वो बच्चों का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें अपनों से। जब इन सारी एक्सपेक्टेशंस पे

Oxi! E da só na é semente.

बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं।

है जो मेरे साथ हमारे साथ हमना मौजूद है। हमना हमें सुन रही थी कहाँ से? हमना फ्रॉम जर्मनी कहती है। मैंने कहा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इतनी दूर से कॉल, आवाज तो दूर से आएगी ना आपकी। सही लॉजिक दिया लड़की ने।

ये आपने मुझे बताना है, बताने का तरीका बहुत ही आसान है. जाना है अपने बाल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर देना उसको 111-4471 पे. और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04221100101 पे. आप मुझे इस पे कॉल करेंगे, आपकी कॉल मुझ तक पहुंच जाएगी, फिर मैं नहीं बताऊंगा, शायद बता भी दूं. जो क्वेश्चन क्या है उस पर बातचीत कीजिएगा, गाने की तरफ बढ़ गाना सुनिएगा और फिर हम वापस आएंगे यकीनन. तब तक सब बेहतर हो चुका होगा. Stick around.

This is FM 101 The High Life Studio. मैं सुबह शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में आज बहुत से ब्लेंडर्स के साथ मैं मौजूद हूँ आपके साथ. बात हम कर रहे हैं रिश्तों में बेहतरी लाने के हवाले से. फिर कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि फ्ला रिश्ता जो है ना, कोई भी रिलेशनशिप चल उस इंसान की वजह से, यानी कि अपनी कहानी में हम खुद अच्छे होते हैं, अपनी कहानी में कोई भी इंसान खुद को झूठा नहीं, अपनी कहानी में हम कहते हैं कि गलती सामने वाली साइड से आई और मैंने तो बहुत कोशिशें की, लेकिन उस इंसान ने या सामने वाले इंसान ने या जो जिस इंसान के साथ कोई भी मसला दरपेश आया होता है, उसके साथ कहा जाता है कि उस इंसान ने जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां कोताहियां थी, उस वजह से ये रिश्ता नहीं चल पाया. अब होता मसला ये है कि अक्सर औकात इस तरह की चीजों की वजह से हम दूसरों के बारे में राय कायम भी कर लेते हैं, और बाज़ दफा हम क्या करते हैं, हम उनसे पूछते भी नहीं हैं कि यार ये जो मसला या ये जो बात कही जा रही है तुम्हारे बारे में, ये बात ठीक है या नहीं है, और इस तरह कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं. ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. ये सारी चीजों के साथ चलते चलते एक और चीज जहन में जो आती है वो ये होती है कि यार ये चल सकता था अगर मैंने ये किया होता तो, या अगर मैंने गुस्सा ना किया होता, या अगर बात ये मैंने कंफर्म कर ली होती तो. ये सारे मामला चल रहे होते हैं. तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब कभी कोई रिश्ता आगे बढ़ाना हो या रिश्ते को बेहतरीन बनाना हो, रिश्ते को चलाना हो, तो फिर आपको क्या लगता है कौन सी चीज है जो उन रिश्तों को खूबसूरत बना सकती है, उनको बेहतरीन बना सकती है, ये मुझे आपने बताना. FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आज ही ना सारे मुझे कही जा रहे हो, काफी दिनों बाद आई हैं, आप कहाँ थी, मैसेज करें मुझे, कमेंट करें, इतने ज्यादा लाइक करें मुझे, ज्यादा ढेर सारे कमेंट आए, मुझे पता चले कि आप मुझे याद कर रहे थे. ऐसे तो नहीं ना कि कहेंगे हाँ जी बस आप इतने दिनों बाद क्यों आई हैं, कमेंट शामेंट करें कोई ना, ऐसे तो नहीं ना होता. फिर आपके कुछ पैगाम आते हैं उनको शामिल करूंगी, लेकिन यहाँ में मेरे ख्याल से एक गाना लगाना चाहिए मुझे, और उस गाने को सुनना चाहिए आपको, और इस गाने को सुन के फिर हम वापस आएंगे आके, फिर हम करेंगे मजीद बातचीत. आपसे पूछूंगी आज, वैसे आपने मुझे लाजमी तौर पे बताना है कि किसी भी रिश्ते की खराबी की वजह क्या होती है, और उसको बेहतर बनाने में क्या चीज करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज को एड डाउन करना चाहिए जिससे आपको लगता है कि रिश्ते खूबसूरत बन सकते हैं, बेहतरीन बन सकते हैं. FM 101 इंटर्नशिप प्रोग्राम करवा रहा है, पता है ना आपको, आज से उसका बाकायदा आगाज हो रहा है. बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत क्यूट क्यूट चेहरे मेरे सामने से गुजरे हैं. स्टिक अराउंड.

और बाज दफा आपकी खुशी को चार चांद लगाने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात की और ये एक वाकई बहुत अच्छी चीज है कि रिश्तों को निभाने के लिए वन लाइनर एक आंसर दिया जाए तो वो कि सब्र, दूसरे की बात को सुनना चाहिए, वो पूरे झूठ से बुरा

और फिर उसके बाद कोई भी आपने आंसर करना है या कोई भी आपने बात करनी है या कोई भी आपने जो है वो उसका आउटपुट निकालना है, फिर उसके बाद वो चीज करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे गाने की तरफ हम वापस आएंगे, आपके ढेर सारे पैगाम मेरे सामने मौजूद हैं, उनको मैं शामिल करूंगी, लेकिन इस सॉन्ग के बाद ये सुने आप, एंजॉय करें। And once again, RJ Dogs, thank you so much. आपने विश किया।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया है। हुकूमत ने ज़रई शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कौमी ज़रई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी की मंजूरी दी है। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का बजट आज कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद में पेश किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ज़मीन और कुदरती वसाइल पर मुनज़्ज़म अंदाज में कब्ज़ा करने पर भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में हिंदुत्व हुकूमत की शदीद मज़म्मत की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक, आपका तो प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और कॉल देखते हैं हमारे साथ कौन है। 04221100111 अस्सलाम वालेकुम जी। एम रिजा चौधरी सर कैसे हैं? कोई हो गए 5, 6, 7, 8, 10 साल? बिल्कुल
1: ऐसी बर्दाश्त होनी चाहिए,
0: बिल्कुल ऐसी है
1: बर्दाश्त। दूसरा
0: ठीक हो गया।
1: दूसरा
0: ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रजा चौधरी साहब थे, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। उमर खान भट्टी हमारे साथ मौजूद, कहते हैं सिस्टर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम, सुपर डुपर वॉइस, तमाम दोस्तों को सलाम फ्रॉम डीजी खान, बहुत शुक्रिया जी। हमदुल्ला वाला खैल हमारे साथ, थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान हमारे साथ, थैंक यू सो मच जी। मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। और कौन मौजूद हैं? अकबर खान हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। बरकत रमदानी, थैंक यू सो मच, अकबर खान का फिर मैसेज आया, बहुत शुक्रिया। कासिम भट्टी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। और साथ हमारे साथ हैं साथ, थैंक यू सो मच, कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम।
2: कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
3: Oh,

Such a great call.

0: सर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पे मोनो उनके ऑफिशियल पेज पे आपने जाना है, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट करना।
1: Let's see.

0: जी जनाब मानते हैं ना फिर आप मुझे, मानना मुझे कि आज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप सोचें फिर कितनी माशाल्लाह, कितनी कितनी माशाल्लाह हूँ मैं। हमारे साथ 04221100101 पे देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: बहुत
0: शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: और जबरदस्त और मजा आ गया आपके शो सुन के।
0: कितनी अच्छी
1: अब आ रही है और आप कॉल की आवाज में ना सही नहीं आ रही है।
0: कॉल की आवाज सही नहीं आ रही। हाँ वो मुझे भी सही नहीं आ रही। कॉल की
1: सही नहीं आ रही, आवाज सही आ रही।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच फिनिश किया।
1: और आप अपने नाम एक गाना लगा देंगे।
0: मैं अपने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच।
1: हेलो
0: जी जी।
1: हाँ जी, और सबसे पहले तो हमारे पास
0: मुझे आपकी आवाज जो है ना वो बड़ी कट कट कट कट के आ रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। ऐसी ही हूँ मैं। हमने हार नहीं मानना। यस, एक्टर इन लॉ सजादा जी लाडला कहती है। वैसे आपका जन्मदिन आज ही है, लग तो यही रहा है। मेरी अम्मी भी यही कहती है कि आज का दिन ही था। इंसान उस वक्त खत्म हो जाता है जब वो किसी से पे पूरा एतमाद कर रहा होता है। सिर्फ तुम्हारा हूँ, लेकिन जब वही बंदा उसको धोखा दे जाता है का जिक्र है। एक दफा बंदा अपने आप को खत्म समझता है, लिहाजा मेहरबानी किया करे, किसी के साथ झूठ फ्रेब ना किया करे। अगर नफरत करते हैं तो नफरत कहा करे, अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत कहा करे। हाँ ये बहुत अच्छी बात की सजाद आपने। आवाज नहीं आ रही सही, अब तो आ जानी चाहिए लड़के। हा हा हा, मेरी पंजाबी उर्दू इंग्लिश मिक्स, वैसे तो निकम्मा हूँ पर पता नहीं आपको कैसे ये लगता है मैं मिक्स कर देता हूँ, पढ़ नहीं पाया होया मैंने। 04221100
2: जी।
0: एक्टर इन लॉ नहीं।

0: से ज्यादा ली कहते हैं आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आधे घंटे के बाद आती है, मैं आपको बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ।
1: हाय हाय क्या करें,
0: करते हैं कुछ, इसका भी कोई इलाज करते हैं।

0: हमारे साथ लाइन पे देखते हैं कौन है। 042-111-0001।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम, कौन है सब, कहाँ से?
1: मैं आसिया खान लाहौर से। कैसी आप?
0: आसिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
1: आसिया नहीं, आसिया। मैं ठीक हूँ, मैं आप कैसी हूँ? तुम कहाँ? कितना इंतजार किया।
0: हाय, मैंने भी आपका बड़ा इंतजार किया।
1: कितना इंतजार किया, मैंने कहा अब आएगी अब आएगी, वो आप आई नहीं।
0: आज आ गई ना फिर मैं। मैंने कहा आज आई हैं, आज ही आ जाएं। क्या कहेंगे?
1: मैं कहूंगी कि रिश्ते को बरकरार रखने के लिए सच बोलना बहुत जरूरी है। सच बोलने, जो जबान से बोले वही दिल में हो, वही हकीकत हो, इसे सच कहते हैं। आप सच बोलेंगे, अगर आप सच में झूठ कह देंगी ना तो वो कहेंगे नहीं ये सच कह रही है। अगर आप झूठ बोलेंगे वो कहेंगे ये झूठ बोल रही है। अगर सच बात भी कहेंगे वो कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रही है। सच ईमान की निशानी है, सच में बरकत है, सच में इत्मीनान है, सच में निजात है।
0: बहुत अच्छी बात,
1: बोलने वाली पर भरोसा करते हैं लोग। सच बोलना ईमान कामिल होने की अलामत है।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
1: मैं यही समझती हूँ कि अगर आपको रिश्ता बरकरार रखना है तो इसके लिए आपको सच बोलना पड़ेगा। और मैंने ये आजमाया है, इसलिए मैं कह रही हूँ सच बोलना
0: जरूरी है रिश्तों को कायम रखने के लिए। सच बोलना जरूरी है,
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। और अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। और मैडम अगर आप मेरी फरमाइश पूरी करेंगी तो अच्छा हो जाएगा।
0: हुक्म करें, हुक्म, कोशिश करूंगी क्योंकि हमारी इंटरनेट आज जो है ना सर्विस ठीक नहीं आ रही।
1: चलो कोई बात नहीं, आप कोशिश कर ले, क्या पता लग जाए।
0: ओके हो गया, बता दो।
1: अगर अगर आपसे नहीं लगता ना कोई बात नहीं, ना लगा, लेकिन बस मुझे ये बता दे कि ये किसने गाया है और नाम क्या है उसका।
0: ओके बताएं।
1: ये मुंह करके अतबार दुनिया, ये किसका गाना
0: ये
1: है?
0: मेरे ख्याल से वो क्या नाम है लड़के का, सरमद कदीर का है।
1: सरमद कपूर,
0: सरमद कदीर,
1: सरमद कबीर।
0: हाँ
1: चलो ठीक है,
0: कोशिश करके
1: तो वोट लगा ले।
0: जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू आफिया।

0: सज्जाद अली लाला कहती हैं, आज ना शो सुनने में मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं ये मत समझिएगा कि आपका शो अच्छा नहीं होगा, आपका शो अच्छा है हमेशा की तरह, लेकिन इसलिए नहीं आ रहा कि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही और आपको सही से सुन नहीं पा रहा। ये कंप्लेंट है और वो आज कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरी आवाज थोड़ी सी, हमारे सिस्टम की तरफ से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से आवाज थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, लेकिन चलें कोई नहीं, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी नेक्स्ट मंथ में कुछ बेहतर हो चुकी होंगी चीजें।
1: अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज्यादा उम्र करती करे, मेरा बेटा आपको सलाम के हाल है।
0: इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब कहाँ से?
1: ग्वाल मंडी से मोहम्मद रमजान बोल रहा हूँ बेटा। दिल करे तो मिलाते मिलके उनसे नहीं तो सुनता हूँ।
0: और ये जो बात है ना, ये जो दुआएं होती है ना, ये दुआएं बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में आगे चलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और कभी कभी मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जहां हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के लोग होने बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में, जो बेलोस दुआएं दें आपको, आपको आगे बढ़ने के, आपकी ज़िंदगी में आपकी तरक्की के लिए। ये गाना मुझे अच्छा लगता है, बस पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तमाम परदेसी जो मुझे सुन रहे हैं, उन तमाम के लिए आप मेरे से शामिल हो सकते हैं। एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके मेरे से शामिल हो। और ये जो मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, क्या करूं मैं इस आवाज का, माफी मांग लेनी है माइक को ना, कर दे मेनू, कोई गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, नहीं बोल रहा, बहुत दूर से आवाज आ रही है लड़की। हेलो, मैं स्ट्राइक कर देनी जी, तीन जाने थोड़ी देर के लिए लाइव चली जाती हूँ, फिर ही शायद आपको मैं नजर आ सकूं। अदरवाइज तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम।
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: थैंक यू।
2: मैंने आपकी बर्थडे कॉल की।
0: अच्छा, आपने मेरी बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू
2: आपका,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार आप लोग मुझे ढेर सारे मैसेजेस करें ना, कमेंट करें मुझे, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढूं। आवाज आपको मेरी सही आ नहीं रही, कमेंट्स आप मुझे कर नहीं रहे, कॉल पे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दसो मैं की करा।

0: अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आ रही है? आ रही है, बेहतर आ रही है जी।
1: कैसी हैं आप? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
1: मैं अमारा बात कर रही हूँ, शारदा से।
0: अमारा क्या कहेंगी?
1: जिंदगी के बहुत सारे खुशियाँ थी, और टोकियो वाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आपकी आई थी ना, उसने बिल्कुल गाइड बात की है। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आप जो भी ताल्लुक बनाते हैं ना, उसमें सच्चाई सबसे बेस्ट चीज है, जो आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाती है। और दूसरी बात ये कि हम लोग इंसानों को ना खिलौना बना लेते हैं, तो ये करना चाहिए और रिश्ते में जज्बात हो तो फिर ये रिश्ता आगे जाता है, वरना कोई नहीं। हाल आजकल की दुनिया का इंसान को इंसान समझना शुरू कर दें, फिर ही रिश्ते सलामत रहेंगे।
0: अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच हमारा।
1: थैंक यू सो मच, और आपके लिए बहुत सारे सलामत रहे। थैंक यू सो मच, आपने किया था अपने लिए।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।

माइक के आगे मेरी तरफ से हाथ जोड़ दे, उनको बोले मान जा बिरयानी खा लेना हमसे, बोतल भी पी लेना। भाई मैंने उसे कहा है, मैंने उसे बड़ा कुछ कहा है, मैंने कहा मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी, बोतल भी लाऊंगी, चाय, मान जा। चौधरी साहब कहती हैं आपको आपके साथ बहुत मुबारक हो, आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो, गिर बहारों का रक्स हो, खूबसूरती का अक्स हो। अरे वाह, अभी तारों से खेलो, मंजिलें खुद आपके कदमों में आए, आपको कभी कोई मुसीबत कोई ना मुसीबत मिले, मिले तो हर लम्हा अच्छी किस्मत मिले, सब लोग आपके गुण गाने लगे, आप घर सबके दिलों में बनाने लगे, बुलंदियां आपके कदम चूमे, मुसर्रतें आपके चार सू घूमे, आपकी पूरी हर कोई ख्वाहिश हो, जन्नत आपकी अगली रहाइश हो, मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो, आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो। थैंक यू सो मच अंदाजा चौधरी साहब, बहुत अच्छी विश, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी दुआएं, बहुत शुक्रिया जी।

0: है ना। नरमी से बिल्कुल। बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: ऐसे नहीं, ये वाला गाना लगाते हैं, सुनो फिर।

0: शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सज्जाद अली हमारे साथ। अच्छा, ये सज्जाद अली और हैं, ये सज्जाद अली और हैं, दोनों की क्योंकि तस्वीरें चेंज है ना, तो इन्होंने बहुत सारे फूल और दिल और बहुत सारे पाकिस्तान भेजे। सज्जाद अली अब्बासी हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी।
1: क्या होगा
0: या? इसलिए मैं बदल देता जी, ए हुन मतलब मेरे हाथ में कंट्रोल है तो फिर मैं तो ऐसे ही करूंगी। ये चेस

बात लिए रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, मुझे आप बता रहे हैं। 0421111 पे कॉल आ रही हैं आपकी, कुछ पैगामात मेरे सामने मौजूद हैं, उनको भी मैं शामिल

बात कर रहे थे हम रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उनको अच्छे से चलाने के लिए कौन सी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग आजकल ना जल्दबाज, ये किसी के साथ एक दूसरे की डाइजेस्ट करने में, एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, एक दूसरे की आदत

Adopte mes casas. Continue. उनकी उनकी एक उनका एक अपना वो ऐसा या उनकी लाइफ का एक जो स्नेरियो और कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव. अब जो एक्सप्रेस नहीं है इट्स नॉट मीन कि वो आपकी जिंदगी में या आपको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते. बाज दफा हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं. बाज दफा हम खुद से बनाए गए सवाल पेशेंस बहुत ज्यादा ये इस गाने को करते हैं रिमूव और कोई और गाना लगाते हैं यहाँ पे. पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी. सच बोल अगर सच्चाई

खा रहे हैं ना किसी रिश्ते में, ना तोड़े ना तोड़े ना छोड़े, हाँ बत्ती तो वक्त के साथ एडजस्ट हो जाते हैं चीजें, इसलिए अपने रिलेशन आप तमाम को आप सबकी दुआ शुक्रिया, यकीनन आप बहुत सारी परेशानियों में बहुत सारी मुसीबतों में हम झट से बाहर निकल आते हैं, और वो कहते हैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया, मेरे दिन को बहुत अच्छा बना, अब तो बहुत सारा ख्याल नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।

0: FM Dial 111-111 FM.
1: There's me. Above FM 101.
2: This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਲੋ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਮਨ ਐਫ ਐਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਓਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ
2: ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਪੇ ਇਸ ਪੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥਰੂ ਏ ਲੀਗਲੀ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਸ ਕੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਆਜ ਨਾਫਿਜ਼ੁਲ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਫੋਰਮਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋ ਬੜੀ ਰਸਵਾਈ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਸਟਾਂਸ ਕਿਸੀ ਏਕ ਫੋਰਮ ਪਰ ਵੀ ਉਸਕੋ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਮੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੇ ਤਹਿਤ ਆਗਾਹੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਰਿਆਓਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸਕੀ ਨੋਇਅਤ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਜੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਫਸਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਇੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਜਬ ਨਿਊਟਰਲੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਸਤਹ ਪਰ ਮਾਹਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਹੱਕ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨਰੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਨਰੇਟਿਵ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਟਾਂਸ ਕੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਉਸਕੀ ਆਗਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਓਵਰ ਟੂ ਹੂ ਆਈ ਕੰਸਿਡਰ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਾਈਡ ਬੀਂਗ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਇਨਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ
3: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਕੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਂ ਸਿਵਾ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਨੇ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਬਾਤ ਥੀ ਵੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਔਰ ਉਸਕਾ ਜੋ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਏਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਸਤਹ ਪੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੇ ਜੋ ਇਦਾਰੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਕੋਰਟਸ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਜੋ ਮੌਕਫ ਥਾ ਉਸਕੋ ਇੰਡੋਸ ਕੀਆ ਗਿਆ ਅਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜਵਾਬ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹ ਆਹੋ ਫੁਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਮਾਮਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਵੋ ਅਸਲ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਯਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪੇ ਮੁਅੱਸਰ ਤੋ ਗੁਫਤਗੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਂ ਹੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਵਾਮਿਲ ਪੇ ਔਰ ਜੋ ਦੀਗਰ ਅਵਾਮਿਲ ਜਿਨਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸੁਲੰਗੀ ਸਿੰਧ ਔਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸਕਾ ਗਾਓ ਹੈ 2010 ਮੇਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਵੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਿਰ 2012 ਮੇਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਵੋ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ 2022 ਮੇਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁਆ ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸੁਲੰਗੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦਫਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਭੀ ਪਾਣੀ ਆਤਾ ਥਾ ਤੋ 8-8, 7-7 ਫੁੱਟ ਉਸਕੀ ਫਸਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਤੀ ਥੀ ਡੂਬ ਜਾਤੀ ਥੀ ਔਰ ਕਭੀ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਤਾ ਥਾ तो उसकी मट्टी में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे, यानी इतनी खुश्क हो जाती थी उसकी मट्टी के, उसमें आप खेती बाड़ी तो क्या करेंगे, उसमें दराड़ें पड़नी शुरू हो जाती थी। तो बहुत से हमारे दोस्तों ने बहुत से इसके तनकीदी जायजे लिए और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई देखो पानी की ज्यादती है या पानी की कमी है जिससे इकबाल सोलंकी, और इकबाल सोलंकी तो एक मेटाफर है, मैं आपको ऐसी 1000 कहानियां सुना सकता हूं, कल सुनाऊंगा भी। तो इकबाल सोलंकी जो 240 मिलियन लोगों में बटा हुआ है, चारों सूबों में बटा हुआ है, कभी वो पानी में बह जाता है और कभी उसकी जमीन इतनी खुश्क होती है कि दराड़ें पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसमें खेती बाड़ी क्या हो। तो लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो क्लाइमेट का असर है, तो ये बात उनकी ठीक है, क्लाइमेट का असर तो है, मगर एक और भी बात, इकबाल सोलंकी के खेत में पानी आएगा या खुशहाली होगी, इस पे कुदरत के अलावा किसी और का भी हाथ है। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। तो भाई मेरे, एक मसला तो वो है क्लाइमेट का जिस पे हम बात करते हैं, दूसरा मसला ये है कि ये पानी का जो बहाव है उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो इकबाल सोलंकी नहीं है, ना इकबाल सोलंकी वोट के जरिए उसको ला सकता है, ना इकबाल सोलंकी उसको वोट के जरिए हटा सकता है। तो इकबाल सोलंकी के खेत हरे भरे होंगे या खुशहाली की वजह से उसकी मट्टी में दरारें पड़ जाएंगी, ये टूटी का नलके की टूटी जो है ये किसी और के हाथ है। तो इकबाल सोलंकी की बर्बादी सिर्फ इकबाल सोलंकी की बर्बादी नहीं है, इकबाल सोलंकी की बर्बादी के पीछे कोई एक और शख्स है, कोई एक और मुल्क है जो फैसला करता है कि इकबाल सोलंकी को कब बर्बाद होना है, और यह है मसला, इस पे होगी कल डिबेट। यानी हमारे मुल्क की 50% 50% 40 से 50% जो हमारे लोग, उनका जरिया रोजगार जो है वो ज़राअत है, खेती बाड़ी करते हैं, सब इकबाल सोलंकी हैं, 50% लोग, 50% लोग इस मुल्क के इकबाल सोलंकी, इस मुल्क की 25% मईशत, 20 से 25% मईशत जो है वो ज़राअत, और आपके घर में ये गंदुम या आपके घर में जो दीगर सब्जियां, ये तमाम आपकी फूड सिक्योरिटी जो है, 100% फूड सिक्योरिटी, 50% एम्प्लॉयमेंट, 25% आपकी तरक्की, आपकी मईशत, और 100% आपकी फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर हाथ किसी और ने रखा हुआ है। तो अब सवाल यह है कि ये जो मामला कल और बैनुल अक्वामी सतह पे, अभी मैं आया हूं ब्रसल्स से, इस पे सारा दिन बात हुई है, उसके क्लिप्स हैं, आप देखिए कि दुनिया क्या कहे, हमारी बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे, हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई, दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन बाकी दुनिया के ममालिक, बाकी दुनिया के गरीब लोग, क्या यह हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या यह हक दे दिया गया है दुनिया को कि हर मुल्क जो ढलान पे है, जिसको आप लोअर राइपेरियन कहते हैं, अपर राइपेरियन का रहने वाला मुल्क उसका पानी रोक सकता है, उसके बच्चों को प्यासा कर सकता है?
4: अरे भाई हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो पहले से इन चीज़ों पे जान देने के लिए हक के, हम हक के सामने, बातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। मगर वो ममालिक जिनके पास कोई ट्रीटी नहीं है, बस सदियों से पानी बह रहा है तो बह रहा है, कभी किसी के गुमान में नहीं आया। वो नाइल्स का पानी कहां से अफ्रीका से शुरू होता है और कहां तक जाता है, कभी किसी के गुमान में नहीं आया कि मैं इसका पानी रोक लूं। और कोई ट्रीटी नहीं है जो किसी मुल्क को बचाती है। कन्वेंशन है कि कभी किसी ने बहती हुई हवा को भी रोका है, कभी किसी ने बहते हुए पानी को भी रोका है, कभी कोई खुशबुओं के रास्ते में भी खड़ा हो चुका है कि यहां बॉर्डर आ गया, खुशबू को रोक दो। अगर ये सब नहीं हो सकता और बाकी की दुनिया के अंदर पानी बह रहा है बगैर किसी ट्रीटी के, तो यहां पे कैसे रुक सकता है? तो यह मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अभी भी दो जगह पे करके आए, दोबारा कल पेश करेंगे। ये जितना आपको दुनिया में कोई अमन नजर आता है, वैसे तो उसका शिराजा बिखर रहा है, मगर जितना दुनिया में आपको अमन नजर आता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज के बाद का अमन है भाई। एक कागज है, एक कागज है जिसके ऊपर हमने लिखा कि दोबारा जेनोसाइड नहीं होने देंगे, इंसान को नहीं मारने देंगे। फिर आप देखिए क्या हुआ उन तमाम कागजों के बावजूद। मगर जो काम इज़राइल कर रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई ट्रीटी, हमारे तो जो सामने आएगा हम तो जेनोसाइड कर डालेंगे। तो वही बात ये हमारा हमसाया मुल्क कह रहा है कि होगी कोई ट्रीटी, होगी नहीं ट्रीटी, है ट्रीटी, है ट्रीटी। इस वजह से कल की जो पूरी सारे दिन की कॉन्फ्रेंस है, ये बुनियादी तौर पे जस्टिस की कॉन्फ्रेंस है। यह फैसला किया जाएगा कि बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर इंसाफ क्या है। कल की कॉन्फ्रेंस राइट्स की कॉन्फ्रेंस है। यह फैसला किया जाएगा कि ढलान पे रहने वाले पूरी दुनिया के बच्चे बच्चियां जो हैं, उनको पानी का हक है या नहीं है। तो ट्रीटी के जो कानूनी नुकात हैं वो तो हम आपके सामने पेश करेंगे। आप जर्नलिस्ट हैं, कुछ आप में से बैनुल अक्वामी जरीदों के लिए भी काम करते हैं, तो हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको टेक्निकली भी तमाम चीज़ें बताएंगे, हम आपको लीगली भी तमाम चीज़ें बताएंगे, हम आपको कन्वेंशंस की भी बात बताएंगे, हम आपको ट्रीटीज की भी बात बताएंगे। लेकिन असल बात हम आपको, सवाल जिसका जवाब कल हम ढूंढेंगे वो ये है कि क्या दुनिया के 4 बिलियन लोग जो इधर उधर रहते हैं, जिनके पास बेचारों के पास ट्रीटी भी नहीं है, बस इस बात पे, इस कन्वेंशन पे चल रहे हैं। पूरा यूरोप इस कन्वेंशन पे चल रहा है भाई। अगर स्पेन चाहता तो पुर्तगाल का पानी रोक लेता ना, तो रोका। क्या दुनिया रुकने देगी? तो असल जो बात है वो होगी कल, जो बैनुल अक्वामी सतह पे ब्रसल्स में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। कल हम आप चाहेंगे तो आपको क्लिप्स भी दे देंगे। ये तमाम बातें जो मैं कह रहा हूं आपसे, पाकिस्तान बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर ये तमाम बात कर चुका है, और ये मुकदमा अब बैनुल अक्वामी सतह पे दायर हो चुका है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। मैं वहां बैठ के कहता रहा, छोड़े आप यार हमसे इंडस वाटर ट्रीटी की बात ना करें, हम तो खुद अपने आप को संभाल लेंगे। आप बताएं आपके बच्चों के हकूक की हिफाजत आप कर सकते हैं? ये जो पानी आज हॉलैंड में है, नेदरलैंड्स में है, ये कल स्विट्जरलैंड में था, उससे पहले जर्मनी में था, तो किसका क्या हक है? हमें भी तो बताएं आप, जरा खड़े तो हों। तो कल ये कॉन्फ्रेंस है तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस है इंसाफ के मुतल्लिक, ये कॉन्फ्रेंस है फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक। और हम आज मुहर्रम के महीने में बैठे हुए हैं, तो हम दोबारा सबको याद करवा रहे हैं कि बातिल के सामने हम में से कोई झुकने वाला नहीं है। हमारी 1400 साल पुरानी ट्रेडिशन है, हम आज भी उस पर कायम हैं। तो आप कल सब तशरीफ लाइए, सब तशरीफ लाइए, और जिस नुक्ते से, जिस पहलू से आप चाहेंगे इस ट्रीटी पे बात होगी, आप चाहें तो अभी भी हो सकती है, आप मेरे से जो मर्जी सवाल पूछ लें, मगर असल बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि 50% आबादी पाकिस्तान की इकबाल सुलंगी है, जिसके पानी के ऊपर कोई और हाथ रख के कह रहा है कि मैं बंद कर दूं, इसका जवाब हम कल देंगे।
2: जी
5: सर, मैं फोरम से जाऊं भी इससे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, माशाल्लाह आपने एक बड़ा अच्छा ह्यूमन एक्ट किया, वाकई जो लोग फेस कर रहे हैं ग्राउंड पे प्रॉब्लम हो रहा है, और पाकिस्तान के नैरेटिव भी बहुत अच्छा इसमें बना हुआ है, पाकिस्तान ने फोरम का आह्वान किया, इंटरनेशनली आप बता रहे हैं कि आपने आह्वान किया, इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान लिया हुआ है, बड़ा अच्छा केस स्टार्ट है, लेकिन इंडिया जो है दस्तूर इसके वो रिजर्व जो है वो बिल्ड करता जा रहा है और वो पानी रोकने की कोशिश करता जा रहा है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान रिजर्व बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, DGISPR भी कई जगह प्रेस्तानों ने कह चुके हैं कि हम हाथ काट देंगे, आपने भी आज कहा, तो मेरा सवाल ये है कि प्रैक्टिकल इकदाम कब होंगे, हम खुद अपने डैम कब बनाएंगे और उनको इंडिया को प्रैक्टिकली रोकने के लिए हम कब कदम उठाएंगे, जब देर होने की तब दूसरा दायर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दोस्त पार मेरे और हैं, एक तो कश्मीर कमेटी का क्या हो रहा है उसके बाद फिर डेटा अपडेट करने, और दूसरा अब जो US ईरान टॉक्स हैं उनका अगर होंगे दोहा में हो रहा है, तो क्या ये जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का क्रेडिट छीना जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इससे दोहा में टॉक्स होने से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने अब तक कुछ काम किया उस पर कोई असर पड़ेगा?
4: देखें, आपका पहला सवाल जो है वो बड़ा अहम है, अभी तक तो वैसे भारत कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सका जिससे हमारा पानी रोक सके, ना हम रोकने देंगे, ये बात बड़ी क्लियर है, जब वक्त आएगा तो आपको जवाब इसका मिल ही जाएगा, जवाब आपको मालूम है, सबको मालूम है, वैसे ही मायूब है उसका बार बार जिक्र करना, मगर जवाब सबको मालूम है कि इसका जवाब क्या है, तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, होगी, हो भी नहीं सकती, उसको तो बात को रोक दें एक तरफ, लेकिन जो आपने दूसरी बात की बड़ी अहम, एक इंडस वाटर ट्रीटी में जो गुफ्तगू चल रही थी वो ये थी कि चलें बहते पानी पे तो बिजली बनाने का हक आपको दिया, और जब भी बहते पानी पे, हमारा झगड़ा भी यही है कि बहते पानी पे जब आप बिजली बनाने का हक देते हैं तो थोड़ा बहुत पानी आप स्टोर करते हैं, उसका भी तरीका कार बैन अल-अक़वामी सतह पे तय है, और अदालतों ने फैसला पाकिस्तान के हक में दे दिया कि यह अंधाधुंध नहीं स्टोर किया जा सकता पानी, इसका एक तरीका कार है, इंजीनियरिंग का टेक्निकल तरीका कार है, जो पाकिस्तान का मौकफ था, जो बैन अल-अक़वामी सतह पे फैसला आ चुका है। तो असल बात ये थी कि उस वक्त बहुत से लोगों को शक था कि होगा ये कि अगर ये बहुत से बंद बना देंगे और अंधाधुंध पानी वहाँ पे रोकना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि पानी रोक देंगे, मगर ऐसा है कि जिस वक्त हमें पानी चाहिए, जिस वक्त इकबाल सुलंगी को पानी चाहिए, जब फसल, अगर आप में से बहुत से लोग गांव से हैं, जब आप सैपलिंग लगाते हैं, जब सीड में से छोटा सा नन्ना पौधा निकलता है, उसको अगर 5 दिन पानी ना मिले तो वो बर्बाद हो जाता है, तो लोगों के गुमान में यह था कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ये जो कह रहा है कि हम सिर्फ बहते पानी पे बना रहे हैं, अगर 5-6 इसने ऐसे डैम सीक्वेंस से बना दिए तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी करके ज़्यादा पानी रोक के उन 15 दिनों में जब पानी चाहिए उस वक्त फसलों को बर्बाद कर देगा, ये गुमान था, शक था, इस जंग में साबित हो गया, यानी उनके पास ताकत नहीं थी पानी रोकने की, 1-1.5 दिन के बाद नहीं रोक पाए तो छोड़ना पड़ा, मगर 1-1.5-2 दिन जो पानी रोका उससे साबित हो गया कि वो तमाम शकूक जो लोगों के दिलों में थे वो बिल्कुल हकीकत में मबनी थे। इस वजह से एक तो बैन-उल-अक़वामी सतह पे जो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, जिस पे कहा गया कि आप ऐसे बंद नहीं बना सकते कि आप जो मर्जी पानी रोक लें, एक तरीकाकार है बहते पानी का बिजली बनाने का, उसमें एक तरीकाकार है कि कितना पानी आप रोक सकते हैं, बस उससे ज्यादा आप एक कतरा नहीं रोक पाएंगे, चलें आगे लेकर चलते हैं इसको। दूसरी बात आपने ज्यादा अहम की, वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना भाई, बंद जो है वो जो हम डैम बनाते हैं ये पानी का स्टोरेज नहीं होता, ये पानी को रेगुलेट करने का तरीका होता है। ये अभी पिछला जो सैलाब आया तो ना जाने 7 या 8 मंगला या तरबेला डैम जो है समंदर में बह गए, कभी तो पानी नहीं होता फसलों में और कभी 7-8 डैम जो हैं वो पानी समंदर में बह जाता है। इसको रेगुलेट करने का एक ही तरीका है कि जब ज़्यादा पानी आए तो उसको आप स्टोरेज में डाल दें, इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ स्टोरेज चाहिए, इसलिए कि जब आपको गरीब किसान को जब फसल के लिए पानी चाहिए तब दिया जा सके। अगर उसके 50 दिन बाद या 100-150 दिन के बाद 4 तरबेला भी बह जाए समंदर में, इतना पानी हो, तो वो उसका क्या फ़ायदा, وہ تو ہو سکتا ہے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دے. تو جو ڈیم کا اصل مقصد ہے وہ صرف سٹوریج نہیں, سٹوریج تو ہے ہی ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے, اب تو عیاں ہو گیا, مگر اصل مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی کو جس نے چند بوریاں گندم لے کے چار مہینے اپنے گزارنے ہیں اگلی فصل تک, جس کو فصل میں حصہ ملتا ہے, اس کے لیے بھائی جب اس کو پانی چاہیے اس وقت پانی نہ ملے تو باقی کے پانی کو کیا کرنا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سب کے مطابق, یعنی سب کے ساتھ کنسنسس کر کے, سب کو, یہ میرے کو دل کی آواز ہے, کو کسان صرف میرے جاننے والے, پورے پاکستان میں ہیں کسان, ہم سب پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ 50% پاکستانی کی آبادی جو ہے اس میں خوشحالی کریں. تو اس کے لیے جو ہمیں نہ صرف سٹوریج بلکہ پانی کو ریگولیٹ کر کے وقت پہ پہنچانا, ہمارے جو وہ ہیں لوگ جو کسان ہیں وہ بہت اہم ہے. اس وجہ سے آپ نے تو ایسے گویا میرے منہ کی بات چھین لی, یہ بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم بین الاقوامی سطح پہ دوسرا پہلو اٹھائیں گے, اور اندرونی طور پہ مشاورت جو ہے ایک بھرپور مشاورت کے ذریعے ایک کنسنسس کریں گے کہ ہمیں کیسے یہ کرنا ہے. اگر کسی آپ ایک چیز کا نام لینا تو کنٹروورسی ہو جاتی ہے, لیکن آپ یہ تو اگری کریں نا کہ ہاں ہم نے پانی کو ریگولیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے پانی کی سٹوریج کی ضرورت ہے, تو اس پہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی تنازع انشاءاللہ نہیں ہوگا, نہ ہم ہونے دیں گے, ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کو طے کریں گے. میں منسٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے, اگر
6: دیکھیں ایک تو آج کی پریس کانفرنس آئی ڈبلیو ٹی کے حوالے سے ہے, اس کو اسی پہ ریسٹرکٹڈ رکھیں, ہم کسی اور طرف اس کو لے کے جائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. لیٹس فوکس آن دس, ایک ایک کر کے, ایک میں ادھر ہوں, ایک ایک کر کے. ہاں بتائیں, ایک ایک کر لینا, وہ کر لینا. آپ
7: دیامیر باشا اور داسو ڈیم جو ہیں وہ کافی سالوں سے بن رہے ہیں, لیکن صورت حال یہ ہے کہ داسو ڈیم کی جو کاسٹ ہے اس میں 257% کا اضافہ ہوا ہے, یہ ابھی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی اس میں ہے, تو ابھی تک یہ تو ریسنٹ رپورٹ ہے پچھلے سال کی ہے. تو حکومت دیامیر باشا اور داسو ڈیم جو ہیں وہ کافی سالوں سے بن رہے ہیں, لیکن صورت حال یہ ہے کہ داسو ڈیم کی جو کاسٹ ہے اس میں 257% کا اضافہ ہوا ہے, یہ ابھی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی.

0: इसमें जो ग्रंट रेसिनतास मुआहदे में उसके रूल के हवाले से क्या कहेंगे आप?
1: जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बैनुल अक्वामी सतह पे जितनी मरतबा हमने इसको, एक दो मरतबा नहीं किया, दो मरतबा तो इस महीने में मैंने आपको बताया किया है, जितनी मरतबा इसको हमने रेज किया है, दावत दी है हमने, तमाम हमसाया ममालिक के आए बैठे नहीं आते। अगर इतना ही लॉजिक है बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर तो आए ना भाई। अभी ये जो ब्रसल्स में हो रही थी हम सब बैठे थे तो आ जाते। मुझसे उन्होंने पूछा वहां पे क्यों हो रहा है, मैंने कहा वो जो भारतीय वो इस वक्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनसे पूछें कि ये क्यों हो रहा है, मुझसे क्यों पूछते भाई, मैं किसी के मुल्क पे क्यों तबसरा करूं। इस वजह से ये जो आपका मुकदमा है इसकी पजीराई बैनुल अक्वामी सतह पे हो रही है। आप अगली मरतबा आए तो सही, इन कॉन्फ्रेंस ये लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है, इनके क्लिप्स चल रहे हैं, आप देखें ना, कोई आपको जवाब में वहां पे सिवाय एक आध हमारे ये साउथ ये पाकिस्तान से या इर्द गिर्द के ममालिक के, बाकी सब तो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन होते हैं, तो उनको कहें ना कि हमसे पूछे सवाल। भाई हम बैनुल अक्वामी सतह पे बैठे हैं और लोगों से ये नहीं कह रहे कि हमारी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं हमसे सवाल पूछो, और जब तुम्हारे पास पूछने को कोई सवाल ना रह जाए तो फिर अपने आप से पूछो कि क्या ये इंसाफ है, और यही मुकदमा हम सामने रख रहे हैं। सर इजाजत थी, थैंक
2: यू सर जी। प्लीज
3: राव कलीज सर, जो मैं पाकिस्तान में जंगलात की कटाई की जा रही है, हाउसिंग स्कीम में इस पे क्लीन स्वीप कर रही है बड़ा, पाकिस्तान के शहरियों को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने के लिए क्या पॉलिसी है वफाकी हुकूमत की, और आज तक जिस स्कीमों ने ये जंगलात काटे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया?
2: जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो किसी भी शहर का मास्टर प्लान होता है उसके अंदर ग्रीन एरिया डेजिग्नेटेड है, राइट ऑफ वे डेजिग्नेटेड है, रेजिडेंशियल एरिया डेजिग्नेटेड है, तो ये तो फॉरेस्ट की कटाई के हवाले से बिल्कुल मेजर लिए भी जा रहे हैं, लिए भी गए हैं, उसके तहत नोटिसेज भी जारी किए जाते हैं और एक्शन भी लिया जाता है, और ये गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और ना सिर्फ फेडरल कैपिटल में बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी इस पर, ट्री प्लांटेशन पे उनका बड़ा फोकस है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 10 उन ममालिक में आता है जो शदीद तरीन खतरात इसके फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज के, जबकि जो कार्बन इमिशन्स हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन वो 1% से भी कम है। तो वी आर फुली कमिटेड टू दिस कॉज, और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी की जाए और प्लांटेशन के हवाले से भी जो है वो मजीद इकदाम जो किए जाएँ। जी लास्ट क्वेश्चन जी,
4: सर ग्रीन फाइनेंसिंग का कितना?
2: देखिए मैं अलग बात कर लेंगे। देखें IWT मेरे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन है और मुझे इसी पे रहना है, इसके अलहदा को बात करनी होगी वो हम बाद में ज़रूर इस पे कर लेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान ने अपना मुकदमा लड़ा हर फोरम पर, हर साल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब भी UNGA में जाते हैं तो अक़वामे मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान का मुकदमा पेश होता है, और दुनिया के जो ममालिक हैं जो ग्रीन फाइनेंसिंग के हवाले से कलीदी किरदार अदा करते हैं उनको भी ये बावर कराया गया है कि पाकिस्तान जब सफ़र करता है क्लाइमेट चेंज के जो मुज़िर असरात हैं उनकी वजह से, तो अरबों डॉलर का नुकसान हर साल होता है, अगर फ्लड आते हैं लोग डिस्प्लेस होते हैं, इकोनॉमिक लॉस अलग है, लॉस ऑफ लाइफ अलग है, तो हम अपने ताई भी उसके इकदाम कर रहे हैं, और इस दफ़ा आपने देखा कि फ्लड के दौरान पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान ने एड की अपील नहीं की। ये मुश्तरका फैसला था वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का कि हम अपने फ़ंड से अपने लोगों की रिहैबिलिटेशन करेंगे, हम अपने फ़ंड से अपने लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे और लोगों को वापस आबाद करेंगे उन इलाकों में, और रिलीफ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी हम खुद करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ज़िम्मेदाराना और एक कॉन्शियस फैसला था कि हमने एड इस पे नहीं लेनी, और फ्लड के बाद जितना डैमेज हुआ हमने उसको खुद डील किया। ऑब्वियसली उन ममालिक की, दुनिया के कई ममालिक की इस पे कमिटमेंट भी है, और वो एक ग्रीन फाइनेंस फंड के हवाले से उन्होंने मुतद फोरम्स पे ये कमिटमेंट्स भी की हैं, मगर पाकिस्तान जो है وہ اپنے اوپر رلائی کر رہا ہے الحمدللہ, اور یہ اکنامک سچویشن بہتر ہوئی ہے تو پاکستان اس قابل ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ ریلیف اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر سکتا ہے. اور بلکہ اگر کسی اور ملک میں کبھی کوئی ڈیزاسٹر آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے امداد بھی وہاں پہ بھیجی جاتی ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.
4: وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں بڑے طبقے کا ذریعہ معاش زراعت سے وابستہ ہے, اور پانی کے بغیر پاکستان کسی بھی صورتحال پہ مودی حکومت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی کے معاملے پر مودی حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کہنا ہی صداقت ہے. بین الاقوامی سیمینار میں پاکستان پانی سے متعلق اپنا موقف پیش کرے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جو پاکستان کے پانی پر ہاتھ ڈالے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور حق کے لیے کھڑے ہونا ہی ہماری روایت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور ڈاکٹر مصدق ملس نیوز کانفرنس کر رہے تھے. آبی کانفرنس کے حوالے سے وہ اپنا موقف شیئر کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر مودی حکومت آبی دہشت گردی کرنا چاہتی ہے. پاکستان میں بڑے طبقے کا ذریعہ معاش زراعت ہے جو کہ پانی سے وابستہ ہے. پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا.
5: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
6: FM 101, a bale bale or shower.

0: अर्जा ने आज इस्लामाबाद में अफगान नाजिम उलमूर को तलब करके कराची में दहशत गर्दों के हमले के हवाले से सख्त एहतजाजी मरासला जारी किया। हुकूमत ने ज़रई शोबे को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए कौमी ज़रई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में खुले मकाम पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट आज कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद में पेश किया गया। और ईरान और अमरीका ने अबनाए हुरमुज पर हमले रोकने और इस तनाज़े पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: पारा है 16, सूरत है सूरह मरियम और आयत मुबारका है 49 से 50। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। फलम्मा तज़ारहुम ममा याबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाका व याकूब व कुल्लम जालना नबिया व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जालना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। सदाकल्लाज़ीम। तर्जुमा पेश खिदमत है। फिर जब उनसे और अल्लाह के सिवा उनके माबूदों से किनारा कर गया, यानी हजरत,
1: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
0: आज हम बयान करेंगे, पारा है 16, सूरत है सूरह मरियम और आयत मुबारका है 49 से 50। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। फलम्मा तज़ारहुम ममा याबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाका व याकूब व कुल्लम जालना नबिया व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जालना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। सदाकल्लाज़ीम। तर्जुमा पेश खिदमत है। फिर जब उनसे और अल्लाह के सिवा उनके माबूदों से किनारा कर गया, यानी हजरत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं वहाँ से हिजरत कर गए, शाम की तरफ चले गए, तो उनसे किनारा कर गया, यानी उनके माबूदों से किनारा कर गया, शाम की तरफ हिजरत कर गए। हमने वहबना लहू इसहाका, उसे इसहाक और याकूब अता किए, फर्जंद के फर्जंद यानी पोते। इससे इशारा मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ इतनी दराज हुई कि आपने अपने पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी देखा। इस आयत में ये बताया गया कि अल्लाह ने अल्लाह के लिए हिजरत करने और अपने घर बार छोड़ने की ये जज़ा मिली कि अल्लाह ताला ने अब बेटे और पोते अता फरमाए। इसी तरह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मदीना की तरफ, तो तमाम सहाबा कराम जिसने हिजरत फरमाई वो औरों से अफजल करार दिए गए, और जो गरीब थे अमीर हो गए। हिजरत में अल्लाह ने इलम भी छुपा के रखा हुआ है और हिजरत में अल्लाह ताला ने खुशहाली छुपा कर रखी है। जब किसी इलाके में रिजक कम हो जाए वहाँ से हिजरत कर जाओ और ऐसे इलाके में जाके कारोबार करो, तो वहाँ अल्लाह ताला हिजरत के सदके बरकतों से नवाजता है, इज्जतों से नवाजता है और पनाह से नवाजता है। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ से हिजरत की तो शाम की तरफ गए शहर बाबिल से, तो फिर उन्हें वहाँ पे क्या आता हुआ, उम्र दराज हुई और पोते तक ही बशारत अल्लाह, और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए और हर एक को गैब की खबरें बताना वाला वह कुल्लम जालना नबिया, और हर एक को हमने गैब की खबरें बता, यानी पहले उनकी बदायश से पहले ही उन्हें नबी डिक्लेयर कर दिया। हाँ, हमने उन्हें खबरें बताने वाला नबी किया। वाह हबना, और हमने उन्हें क्या करा, वाह हबना जो होता है ना, जब हम वाह हबना कहते हैं तो उसका मतलब हमने नवाजा, हाँ यानी अता किया नवाजा। हाँ, तो लहुम उन्हें उनको मिन रहमतिना अपनी रहमत से, वाह जालना और हमने उनको बना दिया लहुम उनके लिए लिसाना उनकी जबान को, सिदकन सच्चाई वाला, अलिया बड़ा बुलंद उनकी, यानी कि जहाँ वो इरशाद फरमाते थे वो बुलंद से बुलंद उनकी कौल मुबारक को अल्लाह कर देता था, दिलों में उतरती चली जाती थी। हाँ, मैं ये कैसे, किस वजह से, मैं रहमत है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत है। और तमाम कायनात में जितनी अल्लाह ताला ने नवाजशें और अता की रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दम कदम से दुनिया को सैराब किया है। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया, हाँ, और उनके लिए सच्ची बुलंदी यानी नामवरी रखी उनके लिए। हाँ, फलम्मा तज़ालहुम, तो किनारा कर गया उनसे। हाँ, वमा याबुदूना, और जिनकी वो इबादत करते थे यानी बुतों की पूजा करते थे, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़ के, तो इस तरह से ये अल्लाह ताला ने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जतों से नवाजा, बरकतों से नवाजा, आसानियों से नवाजा और बुलंद नामवरी से, यानी कुल्लम जालना नबिया, और नबिया उनकी औलाद में रख दी, नबूवत रख दी उनकी औलाद में। اسحاق، یعقوب، پھر یوسف، پھر آگے چل سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، عزیر علیہ السلام بھی، تمام نبی ان کی آل میں، اولاد میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
3: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
5: This is FM 101. This is FM 101.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: देखे तो जो इधर

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution।
1: हमसे है

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.
2: Keep smiling and drive carefully, okay?
3: Okay.

टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, लेकिन स्टिल स्टिल स्टिल जो है अच्छी खासी गर्मी है. और गर्मी के साथ साथ जो है ना, मैंने आज नोट किया कि आपको याद होगा कि हमने पिछले समर्स में भी अक्सर शोज़ में हम बात करते थे कि गर्मी की वजह से, स्पेशली जब हम ऑफिस से इस टाइम पे एग्जॉस्ट होकर आ रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए या कोई किसी से कोई, वो जिसे कहते हैं ना, एक अजीब सी एक बहस स्टार्ट हो जाती है, या आप थोड़ा सा थके भी होते हैं, थोड़ा सा गर्मी का भी असर होता है. खैर आज तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है. बट एनी वेज जी, मेरे साथ भी अभी ऐसे ही कुछ एक वाकया हुआ कि मैं भी क्योंकि ऑफिस से निकल रही थी, तो मुझे इतना, मुझे एक वो गर्मी और एक वो जिसे कहते हैं ऑफिस का स्ट्रेस, और फिर आपको जल्दी होती है पहुंचना पहुंचना पहुंचना. तो मैंने क्या किया जी, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने राइड करवाई, और गलती से मैंने रेडियो के बजाय घर की राइड करा दी. एंड हाफ द वे जब मैं घर की रूट पे चली गई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैं घर जा रही हूँ. सो एनीवेज जी, गर्मी जो है ना, गर्मी का मौसम जो है वो कुछ इस तरह से भी, और कुछ आप स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना, समटाइम्स आपके साथ इस तरह का होता है. और फिर मैंने क्योंकि जो भी ड्राइवर थे ही वॉज़ वेरी नाइस, और उन्होंने कॉपरेट किया, और मैंने कहा कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो गलत राइड करा दी है, सो आई हैव टू गो टू द रेडियो. और फिर जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा वो किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, एंड उन्होंने जो है मुझे रेडियो तक छोड़ा. और अच्छी बात यह कि ही डिडंट आस्क फॉर मोर, और ऐसा भी होता है. और जी खैर, गर्मी की हम बात कर रहे हैं, तो गर्मी के साथ साथ हम हमेशा मैंगो सीज़न को ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं. सो अभी एक पीक मैंगो सीज़न है, और पीक मैंगो सीज़न में जो है वो मैंगो का जो मज़ा होता है, और मैंगो के साथ साथ और बहुत सारे फ्रूट्स हैं. बट कभी आपने सोचा है कि ये इतने सारे फ्रूट्स, या ये जो मैंगो है, या जो आपके घर में जो मैंगो आप खा रहे हैं, वो आप तक कैसे पहुँच रहा है? और इट इज़ रिटन. और ये चीज़ जो है ना, इतनी ब्यूटीफुल फ्रूट थ्योरी है, जिस पे हम आज बात करेंगे.

0: ऑलराइट जी, फ्रूट थ्योरी पे हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंगो या कोई भी फ्रूट जो आप खा रहे होते हैं, ये आप तक कैसे पहुंचता है और ये क्यों, ये एक रिटर्न होता है, मतलब लिखा हुआ होता है कि यही फल आप तक पहुंचना है, और कितना खूबसूरत ये फिलॉसफी है, कितनी खूबसूरत ये थ्योरी है, कितनी खूबसूरत ये जर्नी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ना, हम टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं और एक खूबसूरत सा नॉस्टैल्जिक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, और इस ट्रैक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों ये ट्रैक चूज़ किया और क्यों ये ट्रैक प्ले किया।
1: कहना था जो कुछ भी तो

All right, जी, welcome back once again, Radio Pakistan, FM 101 के live on Lahore studio से आप सुन रहे हैं आज हमना खान को, मेरा आपका साथ है ठीक ठीक ठीक जी 8 बजे तक. और अभी एक खूबसूरत नॉस्टैल्जिक सा ट्रैक मैंने प्ले किया हुआ था और आई गेस अभी तक आप लोगों ने आवाज़ और बैंड गेस कर लिया होगा क्योंकि हम सब का ये फेवरेट बैंड रहा है, हम सब ने इनको बहुत सुना है. एंड द बैंड इज स्ट्रिंग्स. और आगे मैं बताऊँगी इनकी वोकलिस्ट की एक स्टोरी और ये मैं बताऊँगी कि आज हम कुछ स्ट्रिंग्स के गाने क्यों सुनेंगे और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. वैसे भी अपने बचपन को रिकॉल करते रहते हैं. बट एनीवेज जी, अभी हम गर्मी की बात कर रहे थे और मैंने कहा कि हीट वेव इस कदर है पूरी दुनिया में. अभी हम यूरोप के हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज इस कदर आ रहा है. और अभी भी इस मोमेंट भी मैंने आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर इस कदर हाई है कि अभी भी इस टाइम पर लाहौर का टेम्परेचर जो है जी 41 डिग्री है. तो अभी जो है उसके साथ साथ खैर हमने एहतियात तो करनी है क्योंकि इस तरह का वेदर है और इस तरह की हीट वेव है. तो ऐसे में हमने जब बाहर निकलना है तो बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना है, अदरवाइज नहीं निकलना है. क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया, देखिए अदरवाइज अगर आप निकलेंगे ना तो आप लोगों के साथ मेरे वाला हाल होगा कि आप लोगों ने जाना कहीं और है और राइड कहीं और की करा ली है. तो ऐसा भी हो सकता है, कोई लड़ाई छड़ाई भी हो सकती है, लेकिन करनी नहीं है. तो थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा मोहतात रहना और थोड़ा सा जो है ना अपना ख्याल रखना है और अपनों का भी ख्याल रखना है. बट एनीवेज जी, कमिंग बैक टू द फ्रूट थ्योरी जिस पर मैं बात कर रही थी, और मैंने कहा कि जो फल हम खाते हैं वो बेसिकली जी लिखा होता है हमारे लिए, और वो कहाँ से आता है और किस तरह से हमारे तक पहुँचता है. मतलब अभी आप कह सकते हैं कि अगर अभी आप करंटली कोई फ्रूट खा रहे हैं और अगर साथ में आप शो सुन रहे हैं तो उसके पीछे एक पूरी थ्योरी है, एक पूरी जर्नी है और इतनी खूबसूरत जर्नी है कि मतलब वो जो फ्रूट आप खा रहे हैं वो आपका था उस दिन से जिस दिन से वो प्लांट हुआ, उसको किसी ने प्लांट किया, उसको किसी ने पानी दिया, उसको सूरज की रोशनी, हवा, पानी ने उगाया, ठीक है जी. फिर वो किसी के हाथों से उतरा, फिर वो ट्रैवल किया, कितनी गाड़ियाँ चेंज हुई, रोड्स चेंज हुई, रूट्स चेंज हुए, ठीक है जी, किसी ने तोड़ा उसको और दिन वो जाकर आप तक पहुँचा. लेकिन वो फल आपका था जिस दिन से वो प्लांट हुआ, मतलब द डे इट वॉज प्लांटेड वो आपका था. तो इसी तरह से ज़िंदगी में भी ऐसी होता है ना, हम चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए है ना वो अपना रास्ता खुद बनाती है. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अभी मैंगो सीज़न है और बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे कि इतना खूबसूरत जो है ना नेमत अल्लाह ने हमें अता की है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप फ्रूट खाएं या मैंगो खाएं और मैंगो इन्जॉय कर रहे हो सो ये ज़रूर सोचिएगा कि ये मैंगो जो है वो कितनी लंबी जर्नी, इसने कितना लंबा रास्ता जो है वो तय किया है आप तक आने के लिए और कितना खूबसूरत इसका एक वो रहा है. लेकिन रिटन आपके लिए था, लिखा आपके लिए था और आपके नसीब में था, आपने इसको खाना था और जिस दिन से ये प्लांट हुआ उस दिन से ये आपका था. सो ऐसे ही होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए होती हैं लेकिन हम वेट नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता ये चीज़ कहाँ से हम तक पहुँची, कैसे इसका वसीला बना. वो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, वसीला बनना. सो दिस इज़ समथिंग. एनीवेज जी, मैंगो सीज़न की बात हो रही थी, अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी और ऑफर कॉल पे 04111111 पर इन्होंने कॉल की. हाँ जी, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद मैं आई हूँ और फिर वो मुझे याद आ जाता है कि अभी बहुत सारी शिकायतें जो है वो शुरू हो जानी. बट एनीवेज जी, आप लोग हमेशा इतना खूबसूरत वेलकम करते हैं ना और एक इंतज़ार जो आप लोग का होता है ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो इन्होंने भी यही बात की, इन्होंने मैंगो की बात की कि मैंगो सीज़न जो है ना गर्मियों का तोहफा है. और यकीन माने, कोई अगर मुझे आके ये कहता ना, जैसे मुझे कोई आके कहे कि जी चाय नहीं पीते, तो मैं कहते कैसे चाय नहीं पीते, मतलब कौन लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते. इसी तरह से अगर कोई आके कहे ना कि जी मैंगोज मुझे नहीं पसंद, तो मैं कहते कैसे नहीं पसंद, मतलब मैंगोज, हाउ कैन यू से नो टू अ मैंगो, मतलब आप मैंगो कैसे नहीं खा सकते. मैंगो इज लव, मतलब मैंगो तो बादशाह है ना फलों का. तो मैंगो सीजन में मैंगो नहीं इंजॉय करना तो फिर आप, बाकी फल तो एक साइड पे है, मैंगो एक साइड पे है जी.

एनीवेज अगर आप लोग भी इस हीट वेव में मैंगो सीजन को इंजॉय कर रहे हैं और मैंगो आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर सकते हैं. और इसके साथ साथ इस हीट वेव से बचने के क्या तरीके आ रहे हैं, किस तरह से बच रहे हैं, और इस फ्रूट थेरी के हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आपको भी लगता है ऐसा या कभी आपने सोचा है, इवन बहुत सारे हमारे कॉलर्स ऐसे हैं जो ऐसी थॉट रखते हैं और वो फ्रूट की सीड्स भी बचा के रखते हैं और वो आते जाते हुए जो है वो उन सीड्स को प्लांट भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. क्योंकि अब जब हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्लांटेशन करें और हम जो है वो इस क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है इसको कंट्रोल करें. तो उसके लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डायल करना है नंबर विच इज़ 0422111. और इसके साथ साथ जी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं viz.com/FM101 लाहौर के पेज पे आपने जाना है जी. पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं. अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक जी. और अट जी ये ट्रैक जो है वो कोई 2 महीने पहले बहुत ट्रेंड किया है लेकिन हम प्ले नहीं कर सके. सो आज हम प्ले कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत ट्रैक है और आपने बस समझना है कि एक अच्छा खूबसूरत से आप अगर एक सनसेट इन्जॉय कर रहे हैं और खूबसूरत सा टाइम इन्जॉय कर रहे हैं, आई डोंट नो कि इस टाइम जो है ना छतों पर भी, मैं कहूँ कि अगर आप छत पर बैठ के ठीक इन्जॉय करें तो वो भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम बहुत गर्मी है. बट एनीवेज जी अगर आप सुन रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, सो इस ट्रैक को इन्जॉय कीजिएगा, भूल जाइए सारी टेंशनों को और किस तरह से ऑफिस चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे लड़ाई हुई, सब भूल जाएं. इस ट्रैक को इन्जॉय करें, स्टे ट्यून्ड.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की।

एनर्जी वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाइव इन लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक, और अभी इट्स 6:30 PM ऑन द डायल। और खूबसूरत सी आवाज़ जो अभी आप पीछे सुन रहे थे, इससे पहले भी आपने स्ट्रिंग्स का एक सॉन्ग इन्जॉय किया और मैंने कहा कि इनके वोकलिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो टुडे इज़ 29 जून और आज इनकी सालगिरह, सो बर्थ एनिवर्सरी है आज इनकी। और पाकिस्तानी म्यूजिशियन है, कंपोज़र है, सिंगर है, सॉन्ग राइटर हैं, गिटारिस्ट हैं, और क्या खूबसूरत गाने जी स्ट्रिंग बैंड ने हमें दिए हैं। और लीड वोकलिस्ट है इस बैंड के, और बहुत फेमस रॉक म्यूज़िक बैंड था स्ट्रिंग, जो कि फिर समहाउ कुछ रीजंस की वजह से टूट गया। और लेकिन पाकिस्तान के बैंड्स जो है ना, सारे नॉस्टैल्जिक हैं और आपको बचपन याद करा देते हैं, आपको वो दौर याद करा देते हैं जब बहुत अच्छे लिरिक्स हुआ करते थे। और इन सब गानों के, खैर ये तो अभी लेटेस्ट गाना था, लेकिन इससे पहले जो आपने गाना सुना, स्ट्रिंग बैंड के जितने भी गाने हैं, मैं कहती हूँ कि उनके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। सो अभी हम एक और ट्रैक भी सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि जी अगर कोई स्ट्रिंग्स का फ़ैन है सो आप लोगों के लिए कि जी आज इनके लीड वोकलिस्ट फैसल कपाडिया की बर्थडे है जी। 29 जून हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग बैंड्स की, और स्ट्रिंग बैंड्स का एक और खूबसूरत सा सॉन्ग जो कि एक मैशअप टाइप है, जिसमें आप 2-3 गाने जो हैं स्ट्रिंग बैंड के सुनेंगे। और स्ट्रिंग बैंड के एक और सिंगर जिसमें बिलाल मकसूद का नाम है, वो भी इसमें गा रहे हैं। सो इस ट्रैक को इंजॉय कीजिएगा जी, इंजॉय करें, लौट कर आते हैं।

हाँ जी, क्योंकि अभी हीट वेव की भी हम बात कर रहे हैं, सो अभी मुझे बिल्कुल, मैं जैसा आप लोगों को कह रही थी ना कि लिरिक्स इनके बहुत अच्छे होते हैं और सब वो गाने हैं जो कि नॉस्टैल्जिक गाने हैं जिनसे हमें अपना बचपन याद आ जाता है. सो अभी इतनी हीट वेव है, बहुत सारे लोग नॉर्थ का विजिट कर रहे हैं, नॉर्थ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से नॉर्थ जाया जाए, किस तरह से हीट वेव से थोड़ी देर के लिए जो है ना हम किसी अच्छे लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएँ, पहाड़ी सिलसिले देखें. सो इस गाने को इन्जॉय करें जी, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर भी.

All right. Welcome back once again. ABG Hasan Khan हमारे साथ मौजूद थे ऑफ द एयर और 0422111 पर इन्होंने भी कॉल की और ये हमें बकर की एक शादी का अहवाल सुना रहे थे जो कि अभी जून के आगाज़ में हुआ और इतने मज़ेदार किस्म की शादियाँ होती हैं ना ये. और मुझे लगता है मैंने अपने पिछले शो में भी जिक्र किया था कि मुझे जो गाँव की शादी है ना वो मैंने एक ही अटेंड की थी और उसका खाना मुझे नहीं भूला था. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये स्टोरी सुनना और किस तरह का एक शादी का अहवाल होता है, स्पेशली जो गाँव या जिसे कहते हैं ना पिंड की शादी. तो पिंड की शादी जो है ना मेरे लिए बड़ी एक फैसिनेटिंग है क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि आप जिस माहौल में रह रहे होते हैं उस माहौल से डिफरेंट माहौल. मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि आपको जो है ना हर तरह के माहौल के लोगों के साथ रहना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके खाने क्या है. मतलब ये अच्छा लगता है, आप एक्सप्लोर करें. अभी जैसे हम मौसम की बात करें तो मैंने कहा, मैंने उस गाने से कहा आप लोगों को कि अभी जो है बहुत सारे लोग अभी एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि जी 1 लाख से ऊपर गाड़ी जो है वो नारायण का गाना एंटर हुए. सो इट्स लाइक अभी वेदर है और अभी लोग प्लान कर रहे हैं. लेकिन आप जब भी जाते हैं किसी जगह पे तो यकीन माने आप उनका कल्चर तो एब्जॉर्ब करते हैं, आप खाने भी खाते हैं, आप उस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो है ना कभी भी कोशिश किया करें, अभी भी अगर आप लोग प्लान करें तो उस जगह को हमेशा वैसा ही छोड़ कर आया करें जैसे वो आपको मिली है. मतलब नेचर को जो है ना प्लीज़ ख़राब ना किया करें, वहाँ पर कोई कूड़ा वगैरह इस तरह का ना फेंका करें कि जिसकी वजह से जो अगले लोग आ रहे हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है ना वो कोई मसला क्रिएट हो या वहाँ पे गंदगी पैदा हो जाए. तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा. बाकी आप लोग प्लान्स बनाएं और अगर कोई प्लान्स है तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं ऑलवेज़ वेलकम हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है घूमना फिरना. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नॉर्थ की ट्रिप्स हों और पाकिस्तान में इतना कुछ है, इतना कुछ है जी, इतना कुछ है कि लास्ट ईयर ना मुझे याद है कि मैं 2 दिन के लिए सवात गई थी और सवात इतना खूबसूरत है जी कि आप 2 दिन के आप 5 दिन भी वहाँ रहेंगे ना तो आप सवात नहीं एक्सप्लोर कर सकते. सो इन चीज़ों को, इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, इन मेडोज को, लेक्स को, हर तरह के पहाड़ी सिलसिले को एक्सप्लोर करने के लिए, हर तरह के जंगलात को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान में इतना कुछ है. लेकिन उसके लिए आपको टाइम चाहिए और देखने वाली आँख चाहिए. और जी अगर आप लोग के भी कोई नॉर्थ के प्लान्स बन रहे हैं, अभी बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, हीट वेव भी चल रही है, सब कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉर्थ जाएं और किसी तरह से जो है ना कुछ टाइम जो है ना वो अच्छा ठंडा टाइम गुजार के आएँ. सो अगर आप लोग का भी कोई प्लान है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं 0422111 पर. उसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी मेरे साथ प्लान शेयर कर सकते हैं. हो सकता है मेरा भी कोई इरादा बन जाए, मैं भी थोड़ा सा आप लोग से जो है ना वो मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे कौन कौन सी जगह अच्छी हैं. सो एनीवेज जी आप लोग भी जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं facebook.com/FM1 लाहौर के पेज पे. आपने जाने जी पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी शेयर कर सकते हैं.

और जिसके साथ साथ अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी एक बड़ी प्यारी आरजे हैं, अगर वो सुन रही हैं जुबिया शफीक तो उनकी आज बर्थडे है, तो हमारी तरफ से आप वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू जुबिया, और पर्सनली भी हम इनको बर्थडे विश कर देंगे, लेकिन अभी लिसनर्स की तरफ से जो है वो आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रजा चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे। जी रजा चौधरी कहते हैं कि जी आपकी प्रोग्राम में जो है ना वो कॉल करना बीपी हाई वैसे ही कर देता। तो अभी हम गर्मियों की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि गर्मी का जो सीज़न है ना इसमें गुस्सा भी आ जाता है और हम अजीब साइक वो हो जाते हैं, और हम फिर कोशिश करते हैं कि ऑरा माइनस भी ना हो, क्योंकि आपको पता है ना ऑरा माइनस होता है, आप गुस्सा करते हैं, फिर आप प्रिटेंड करते हैं कि जी हम गुस्सा नहीं करते।

अच्छा मज़े की बात बताती हूँ, हमसे बहुत सारे लोग, बल्कि इवन मैं भी आप भी, हम सब जो है ना, कहीं ना कहीं ये बात हमने कही भी, अपने मुंह से कही भी है कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता। तो होता क्या है कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ना कि हमारा एक जो इमेज क्रिएट हुआ है, एक जो लोगों के सामने एक हमारा परसेप्शन क्रिएट हुआ है, वो ब्रेक ना हो। तो हम यही शो करें कि हम तो बड़े ठंडे दिमाग के, ठंडे दिल के लोग हैं, और वो मतलब हमें गुस्सा नहीं आता किसी भी तरह से। लेकिन होता क्या है कि आप तो ये कहते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे होता है, आपका जिस्म जो है वो थका हुआ रहता है। और जब भी आप गुस्सा दबाते हैं ना, तो गुस्सा दबाने से कभी भी गुस्सा ख़त्म नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको चाहिए कि आप गुस्सा निकालें या आपको शाउट करें, बट उसके और भी तरीके हैं, क्योंकि अगर आप गुस्सा दबाते हैं ना तो वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो अपनी जगह जो है ना तब्दील कर लेता है, और उसका फिर एक वर्स इफ़ेक्ट होता है, और वो आपके जिस्म पे होता है, वो आपके दिल से जो गुस्सा होता है ना, दिल या दिमाग में गुस्सा होता है आपको, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो आपके जिस्म में चला जाता है, और उसकी वजह से आपको अपने जिस्म में थकावट फील होती है, आपको नींद नहीं आती, या आपको कंधों में, जबड़ों में खिंचाव फील होता है, या बार बार आपको सर दर्द होता है, बेचैनी होती है, या आपको कोई बोझ सा फील हो रहा था। लेकिन इसका एक तरीका है। सो अभी जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता, आपको उसका ऑल्टरनेट वे बताते हैं।

अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप अपने गुस्से को पहचानें, आप उसको रिकग्नाइज़ करें कि आपका गुस्सा जो है वो क्या है, क्यों है, किस वजह से है। क्योंकि गुस्सा जो है ना, वो अक्सर बदतमीज़ी नहीं होती, वो एक जब आपकी लिमिट क्रॉस होती है ना, जब अक्सर हम बात करते हैं बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, एक लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बाद में पता चलता है। जब आपकी वो लिमिट क्रॉस होती है तो फिर आपको जो है ना वो गुस्सा आना शुरू होता है, तब आप उसको जो है ना आपको पता चलता है कि नहीं, अब इस चीज़ पर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वो गुस्से को जो है ना आपने सबसे पहले तो पहचानना है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, क्या एक लिमिट क्रॉस हुई है। और फिर उसके बाद जब आप उसको समझेंगे, आप उसको पहचानेंगे, तो फिर आप उसको एक नाम भी देंगे। और जब वो आप पर हावी होने के बजाय जो है ना काबू में आने लग जाता है, मसलन आपको पता लग जाता है कि गुस्सा नहीं है, नाराज़गी है, और ये कोई बदतमीज़ी नहीं है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अंडरस्टैंड करना शुरू होते हैं कि मुझे गुस्सा आया क्यों था और क्या वजह थी उसकी। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि ये गुस्सा जो है वो हमारे दिमाग से या दिल से जो है ना हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारे जिस्म थका थका फील होता है, तो उसका कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि आप किस तरह से इस गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। उसका एक तरीका वॉक है, और एक बचपन में हमें कहा जाता है ना, गुस्सा आ रहा है चलो तकिए को मार लो तो वो इसलिए कहा जाता था कि जी तकिए को मार के जो है ना गुस्सा निकाल लें। सो जब आपका बहुत ज़्यादा बच्चों को, जैसे स्पेशली कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो उनको भी जो है ना आप कोशिश करें कि इस तरह का दिखाएं, सिखाएं कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप बजाय किसी को मारने के, या कुछ बच्चे खुद को भी हिट करने लग जाते हैं, सो आप एक तकिया उनको दे दें और वो तकिए को जो है वो मार के अपना गुस्सा निकालें। ये तो हमने खैर मूवीज़ ड्रामास में भी देखा है, हमने खुद भी बचपन में किया है, और या फिर एक अच्छा अमल, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और हम जो है वो उसके ऊपर कोई एक थॉट प्रोसेस कर सकते हैं, उसको लिख के जो है ना अपने अंदर से निकाल सकते हैं।

अच्छा जी, एक और तरीका भी है कि आप अपने गुस्से का इज़हार करें. समटाइम्स होता है ना कि हमें गुस्सा आ रहा होता है लेकिन हमें कहना नहीं आ रहा होता है, या हम सामने वाले इंसान को बता नहीं पाते कि हमें क्यों गुस्सा आया है या हमें क्या चीज़ बुरी लगी है, कौन सी बात बुरी लगी है. तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि जी आप सामने वाले इंसान को जो है ना इल्ज़ाम देने के बजाय ना, अगर आप उसको समझाएँ, आप उसको बताएँ कि ये बात जो है ना स्पेसिफ़िक ये बात मुझे तकलीफ़ दे रही है, तो आपका आपका वे ये होगा कि आप अगले को बताना चाह रहे हैं. इंस्टेड ऑफ़ कि आप उसको किसी बात का इल्ज़ाम दें, शाउट करें, उसके बजाय आप समझा सकते हैं कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, आइंदा आप इस चीज़ को ना करें. और अजय, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को गुस्सा आए तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मुझे तो गुस्सा आते ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा आना देखिए कोई कमज़ोरी नहीं है. लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है और आप आइडेंटिफाई कर सकें कि गुस्सा किस वजह से है, या आप उसको ओवरकम कर सकें, आप उसको अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल सकें, और आप सामने वाले को समझा सकें कि नेक्स्ट टाइम दिस इज़ द बाउंड्री, ये मेरी एक लिमिट है और आपने ऐसा नहीं करना, या इस चीज़ से मुझे तकलीफ पहुँची है, तो यकीन माने इसको समझना जो है वो सबसे बड़ी मजबूती है. सो नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी कि आप अपने गुस्से को समझें. और अभी भी अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और किसी को अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है, या कोई भी वजूहत है जनाब, इसको समझें और कोशिश करें. अगर आपको किसी भी किस्म का गुस्सा है, किसी पे स्ट्रेस है, तो उसको लिखें, वॉक पर जाएं और उसको जो है ना वो अपने अंदर से निकालें, क्योंकि जितनी देर आप गुस्सा अपने अंदर रखेंगे ना, उतना ही आपकी बॉडी पर उसका असर होता है. आपको खिंचाव फील होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको एंजाइटी होगी, और आप सोचते रहेंगे. इसलिए बेहतर यही है कि या तो किसी तकिए पे मार लें या फिर आप जो है ना लिख लें. लेकिन मैं वैसे प्रेफर करूँगी, क्योंकि जितने भी हमारे टीनएजर सुन रहे हैं, जितने भी एडल्ट सुन रहे हैं, जितने भी मैच्योर बड़े लोग सुन रहे हैं, बड़ी एज के उम्र के लोग सुन रहे हैं, वो कोशिश करें कि इसको लिखें या एटलीस्ट वॉक पर जाएं.

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे मन को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है।

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
1: हमसे रोशन ये जहां,
0: हमसे है ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
0: हमसे है।

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के Live on Lahore Studio से. आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा और आपका साथ रहेगा. ठीक जी, 8 बजे तक, 7:06 हुए हैं जी. आप लोगों को याद होगा कि हम बचपन में एक बहुत कॉमन लाइन थी जो कि मेरे ख्याल में हम सब ने बोली हुई है. और अभी जब हम गुस्से की बात कर रहे थे, या समटाइम्स होता था ना कि आपको फील होता था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपके साथ कोई, जैसे कहते हैं ना, नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ इस तरह का आपके साथ हो रहा है, तो हम कहते होते थे कि जी ठीक है, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है या किसी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप कहते थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है. सो ये टर्म ऐसी है जो हम सब ने यकीनन बचपन में जो है ना इस्तेमाल की हुई है. हम ये कहते होते थे और अपने आप को तसल्ली देते थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है, जो कहता है वो खुद ही होता है. तो ये हम सब में बहुत काम है. मतलब मुझे याद है कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए कोई आपको कुछ कह जाता था, जैसे शरारतन भी बच्चे एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते थे, तो हम आगे से ये कहते

छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं होता, जो कहता वही होता है, जो कहता वही होता है, जो कहता है वो खुद ही होता है। सो आज मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूंगी इस चीज़ पे कि ये क्या आपको लगता है कि जो हम बचपन में कहते थे, अब जब हम बड़े हो गए हैं और हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, तो अब क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो हम बचपन में कहा करते थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है। सो एक्चुअली एक इंसान जो है, जो आपको कह रहा होता है और समटाइम्स आपको वो बात बुरी भी लग रही होती है, समटाइम्स कोई कुछ आपको ऐसा भी कहता है जो कि बहुत अच्छा होता है और आप सोचते हैं कि अच्छा इसने मेरे बारे में ऐसा कहा या मुझे कुछ ऐसा कहा। सो वो उसकी अपनी एक रिफ्लेक्शन होती है, वो इंसान खुद जैसा होता है, उसकी थॉट जैसी होती है, वो आपको वही देता है। अगर किसी की पॉजिटिव सोच है तो वो पॉजिटिव आंसर देगा, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करेगा, और अगर किसी की नेगेटिव सोच है और अगर किसी के दिल में आपके लिए कोई इस तरह का बुगज़ है, कोई नेगेटिविटी है, तो वो जो भी कहेगा वो एक्चुअली वही होगा जो उसके अंदर है। सो आपका इस चीज़ पे कितना बिलीव है, इस पे आज हम बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो कहता है वो खुद ही होता है या ऐसा बस हम बचपन में कहते थे। और जी अगर आप लोगों को लगता है कि जो कहता है वो खुद ही होता है तो प्लीज़ बताइएगा जी, कॉल कर सकते हैं आप लोग, डायल कर सकते हैं नंबर विच इज़ 4221111, और इसके साथ साथ फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं fizz.com/FO111 लाहौर के पेज पे आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको वाकई लगता है कि जो बचपन में हम कहते थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है, वो एक्चुअली खुद ही होता है, या वो सिर्फ बचपन में हम अपने आप को तसल्ली देते थे।

ऑलराइट जी, 0422111111 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं जी, इसके साथ साथ आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ऑफर कॉलर एक रिमशा हमारे साथ मौजूद थे, आफ्टर सो लॉन्ग इनसे बात हुई एंड सच अ नाइस स्वीट कॉलर, और ऐसे कॉलर्स जो कि फिर आके जो है ना आपको वो भी डालते हैं, पेनाल्टी भी डालते हैं और आपको कहते हैं कि नहीं अब आपको जो है ना हमें आप पे भी गुस्सा आ रहा है। सो एनीवेज जी, इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, गुस्से में हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मुझे इतना गुस्सा आता है, पहले तो इन्होंने बड़ा ईजिली मुझे कहा कि मैं ग्लास में पानी डाल के जो है ना पी लेती हूँ, फिर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं ना अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ और अगर कोई कमरे में आए तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने अपना अंजाम बुरा करा है तो फिर वो कमरे में आए। और इनकी एक कज़न एक बार इनके हाथों जो है ना उन्होंने अच्छी खासी मार खाई है सिर्फ इस वजह से कि इनको गुस्सा बहुत था और उनको पता नहीं था और वो गलती से जो है ना कमरे में आ गए। बट एनीवेज जी, मैंने इनसे फिर पूछा क्योंकि मैं सुबह ये सोच रही थी मुझे भी एक बात पे ना बड़ा गुस्सा आ रहा था, और ऐसा होता है ना कि जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप पिछली सारी जिसने भी आपके साथ जो भी किया होता है ना वो सब निकाल के बैठ जाता है आपका दिमाग, और आप जो है ना सोच रहे होते हैं अच्छा इसने भी मेरे साथ ये किया, उसने भी मेरे साथ ये किया, एंड देन आप कह रहे होते कि मैं इसको भी जवाब दूँ, उसको भी जवाब दूँ, मैं इसको ये कह दूँ, मैं इसको ये कह दूँ, काश मैंने इसको ये कहा होता। सो आई वॉज इन दैट प्रोसेस ना, और उस टाइम पर मैं सोच रही थी कि मुझे कितना गुस्सा आता है, और फिर मैं सोच रही थी कि मैं राजपूत हूँ। सो अभी मैं इनसे भी पूछी थी, मैंने कहा आपकी कास्ट क्या है, ऐसे मुझे ना याद आया कि अच्छा इनको भी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो मैं पूछूं कि कास्ट क्या है आपकी, तो कहती हम राजपूत हैं। मैंने कहा मैं भी राजपूत हूँ और मुझे भी लगता है इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। खैर ये एक मिथ भी हो सकती है और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने ऐसी कास्ट वगैरह के साथ एसोसिएट की हुई है, बट अगेन मैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि मैं राजपूत हूँ, तो वो कास्ट का भी असर है।

0: All right, जी, पहले कॉलर लेते हैं हम. लेट सी कौन हमारे साथ मौजूद है. 0422111001 पर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. All right, जी, पहली कॉल ड्रॉप हो गई है. कोई बात नहीं जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 0422111001 पर. और लाइव कॉल्स का सिलसिला हमने शुरू कर लिया जी, आप लोग डायल कर सकते हैं. लेट सी जी, पहले कॉलर तो ड्रॉप हो गए, नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: चलो शुक्र है, पहली कॉल भी मेरी मिल गई ऑन एयर.
0: ये देख लें, ये कभी कभी करिश्मा हो जाता है कि जिनकी ऑफर भी मिलती है उनकी ऑन एयर भी मिल जाती है.
1: हाँ, अब ये भी मैंने एक जादू किया ना, इसलिए मेरी कॉल मिल गई.
0: अच्छा जी, क्या कहना चाहती है रिमशा?
1: मैं यही कहना चाहती हूँ, एक बार आप टॉपिक जो है रिपीट दोबारा करना, मैं भूल गई.
0: मेरा टॉपिक ये था कि जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि जो कहता है वो खुद ही होता है. सो मेरा सवाल ये था कि आपका भी क्या इस चीज़ पे बिलीव है कि जो बचपन में हम कहते थे वो सच है, वाकई ऐसे ही होता है?
1: हाँ, अभी ऐसा होता है, जो कहता है वही होता है. लेकिन ना बचपन में मेरे काफी लोगों ने मेरे नाम रखे थे.
0: अच्छा.
1: गली के अंदर ना मुझे चिमटा कहा जाता था.
0: ओह माय गॉड.
1: मुझे ना
0: कोई यूनिक नेम मैंने नहीं कभी सुना ऐसा.
1: मेरे तो मुझे स्कूल में कहा जाता था रेशमी दुपट्टा, उड़ ना जाए पत्थर रखो. मैंने कहा अच्छा. तो मुझे और मेरी ट्यूशन वाली बाजी मुझे प्यार से बुलाती थी बिलो.
0: अच्छा.
1: वो अभी भी मुझे बिलो बुलाती हैं.
0: अच्छा.
1: और मुझे ना गले, मुझे सबसे ज्यादा चिड़ चढ़ती थी इस नाम से. मुझे जो गले में बुलाते थे मैं चिमटा, रोटी पकाना था चिमटा.
0: नहीं, तो बड़ी बुरी बात है. तो फिर आप तब क्या करती थी कि जो कहता खुद ही होता है?
1: मैं फिर वो कहते ना, आप अगर बार बार हम चिड़ते रहेंगे ना तो लोगों को ना फिर हमारी कमजोरियों को पता चल जाए. हाँ, ये तो चिड़ता है, हम इसे बार बार.
0: और स्पेशली जब अगले को पता चल जाए कि आप किस पॉइंट से ज्यादा चिड़ते हैं ना, मतलब किस एक एलिमेंट से, किस चीज से ज्यादा चिड़ते हैं,
1: बार बार आपको उसी चीज से परेशान करेंगे, इग्नोर कर देंगे, चिड़ना छोड़ देंगे ना, तो फिर वो आपको.
0: हेलो. हेलो, आई गेस जी कॉल ड्रॉप हो गई है, कुछ कनेक्शंस का इशू है. बट एनीवेज जी, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं. और ये वो चीज़ है कि जी हाँ, ये जो रिमशा ने बात की है ना, इस तरह से मेरे साथ भी बचपन में होता था. बचपन में जब मैं ट्यूशन जाती होती थी तो मैं अपने साथ रिलेट कर लेती हूँ. आप चेक करें कि मैं हर चीज़ को अपने साथ रिलेट कर लेती हूँ. सो मेरे भी ना ऐसे ही जो ट्यूशन में जो आपके साथ क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके फेलोज होते हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने भी ना मेरी ना ऐसी एक छेड़ रखी हुई थी. खैर, मैं रेडियो में बता रही हूँ. सो मैंने हम ना, तो वो कहते थे कि हम ना चिड़िया घर गए हैं. अब ये बड़ा कॉमन है, शायद हमना नाम की हर लड़की रिलेट कर सकती है इस चीज़ से. तो मैं भी बड़ा चिड़ती होती थी, लेकिन खैर मैं तब ये नहीं कह सकती थी कि जो कहता वो खुद ही होता है. सो लेकिन आई थिंक रिमशा जो है वो इस बात से रिलेट कर सकती है, वो कह सकती है कि जो कहता खुद ही होता है. ऑलराइट जी, एक और कॉलर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: हेलो. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
2: जी मोहम्मद शहजाद शादबा, लाहौर से बात कर रहा हूँ.
0: जी शहजाद साहब, कैसे हैं आप?
2: आपकी दुआएं, माशाल्लाह अच्छा शो होता है, बहुत अच्छी बातें होती हैं जी.
0: बहुत शुक्रिया.
2: और खुशी महसूस होती है जब आपका शो सुनते हैं.
0: बहुत शुक्रिया जी.
2: तो बचपन की बातें जब करते हैं ना, तो जब किसी आपके से सवाल नहीं ना आता था जवाब,
0: जी जी,
2: तो फिर कहते थे तुम खुद ही हो गए ऐसे.
0: अच्छा, ठीक है.
2: जब समझदारी आ जाती है फिर जवाब देने लगते हैं, फिर पता चल जाता है कि कौन सा जवाब देना है.
0: हाँ, ये बात है.
2: तो मैं ना एक दिन ना, जो वो लस्सी नहीं होती कच्ची नमक वाली,
0: जी जी,
2: वो मैं पिछले ज्यादा देर हो गई है, मैं ना बहुत बांटी, गर्मी थी, मैं कहा चलो स्वाब खटे.
0: अच्छी
2: बात है. उन्होंने मेरा नाम ही डाल दिया जी लस्सी पहलवान.
0: चलिए, ये तो चले आप बांटते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो ये भी बड़ी बात है कि आपके हाथ से आप दे रहे हैं, आप देने वालों में से हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है.
2: तो वो नाम तो फिर पक गया, फिर मेरा तो नाम ही पक गया जी लस्सी पहलवान. और मैं क्या यार, मैंने कभी किसी से कुश्ती तो की नहीं, आपने नाम डाल दिया लस्सी पहलवान.
0: ठीक है.
2: तो ये बात होती है. तो मैं क्या, अब ठीक है, यही नाम अच्छा है, चलो मैं मशहूर हो गया हूँ, इनकी मेहरबानी.
0: ठीक है, आप कहते हैं कि जो जो कहता है कह लेने दो, ठीक है?
2: कहने दो तो फिर जो जवाब आप आगे से जब जवाब नहीं आएगा जी, आप हम यही कहेंगे वो आप ही होएगा तू।
0: नहीं वो तो अब आप कह नहीं सकते, लेकिन खैर
2: शुक्रिया,
0: ठीक है जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भरा आंदे ने साथ जीरा, ये अपना हमीद साहब ने, फरूकाबाद वाले, इन्हें भी बड़े प्यारे ने, सारे मेरा सलाम, दिलो सलाम जी, बहुत बहुत प्यार भरा सलाम,
0: बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़,
2: अल्लाह हाफिज़।
0: राइट जी, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, और अगर अच्छा काम करने से आपके साथ कोई नाम एसोसिएट हो जाता है, कोई एक खिताब आपको मिल जाता है, कोई एक लकब आपको मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और जी जल्दी से कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं। आतिफ अली हमारे साथ मौजूद है जी, सलाम कहते, वालेकुम अस्सलाम कहते, वेरी नाइस शो, दुबई से सुन रहे, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। कवल नाज हमारे साथ मौजूद है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और किंग फजल हैं हमारे साथ जी क्वेटा से, बहुत शुक्रिया आपका भी। बरकत हमदानी है बलूचिस्तान से हमारे साथ जी, इब्राहिम है, डी जी खान से सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। कवल मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और इसके अलावा जी मलिक वसीम अवान हमारे साथ मौजूद हैं, और रजा चौधरी हैं जी हमारे साथ मौजूद, रमज़ान गुज्जर हैं हमारे साथ मौजूद, हमदुल्ला मलक खेल हमारे साथ मौजूद है जी, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और क्वेटा से हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो जनाब।

और जिसके साथ साथ फरहाद मेमन है हमारे साथ, रमजान गुजर कहते हैं कि जी टॉपिक रिपीट कर दें, जो बिल्कुल जी टॉपिक रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि हम बचपन में एक कॉमन सेंटेंस था जिसमें मैं आज बात कर रही हूँ कि हम अक्सर कहा करते थे, स्पेशली जब हमें गुस्सा आता था और हमें कोई बात बुरी लगती थी तो हम कहते थे कि जो कहता खुद ही होता, हम अपने आप को तसल्ली देते थे ना बेसिकली बचपन में, तो हमें कहा जाता था कि छोड़ो कोई बात नहीं, कि जो कहता खुद ही होता है, जो कहता खुद ही होता है। सो अभी मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, सब मच्योर हो गए, और तकरीबन मुझे पता है कि जो एज ग्रुप सुन रहा है मेरे शो को वो सब जो है वो एडल्ट हैं, मच्योर हैं। सो आपको क्या लगता है कि जो बचपन में हम कहते थे कि जो कहता है खुद ही होता है, वो एक्चुअली खुद ही होता है, अब इस पर कितना हमारा बिलीव है कि इंसान जो चीज़ें कहता है वो उसके अंदर होती हैं, या वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है, या वो जो भी रिफ्लेक्शन होता है, जो भी आप तक रिएक्शन आता है, जो भी रद्द अमल आता है, वो एक्चुअली उस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स होती हैं। सो इस पे आपका कितना बिलीव है, या सिर्फ बचपन की बात थी, बचपन की तसल्ली थी जो हम अपने आप को देते थे?

0: All right, एक और कॉलर हमारे साथ, लेट्स सी कौन और कहाँ से है। 04221111 पर हमारे साथ। जी कॉल ड्रॉप हो गई। एनीवेज जी कोई बात नहीं जी, आप लोग दोबारा डायल कर सकते हैं 04221111 में, और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM11 लाहौर के पेज पे। आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है हन्ना?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं?
1: हन्ना फ्रॉम दिल्ली।
0: सॉरी,
1: हन्ना फ्रॉम दिल्ली।
0: मेरी हन्ना में बात कर रही हैं?
1: हाँ जी, हन्ना फ्रॉम दिल्ली।
0: अच्छा जी, ठीक है, कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप?
0: मैंने पहली बार अपनी हन्ना से बात कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है।
1: मुझे भी बहुत खुशी है, आपको सुनती
0: रहती। अच्छा, मुझे सुनती रहती हैं तो फिर आप इतनी गुमनाम लिसनर क्यों है मेरी? कि पता ही नहीं है मुझे कि मेरा एक हम नाम भी सुन रहा है मुझे।
1: हम ना भी आपके तजान में कॉल नहीं मिलती।
0: अल्लाह,
1: मैंने क्या फर्स्ट टाइम मिली है नहीं। अच्छा, मेरी आपके तजान में कॉल सभी के तजान में लग जाती है, आपके तजान में नहीं लगती।
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप कॉल करती हैं, आप सुनती हैं।
1: मुझे
0: भी खुशी हो रही है, मेरे नाम की एक लिस्नर भी है मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप भी हमना है, आपसे हमना कह के मुखातिब होती हूँ, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो कहता है वो खुद ही होता है?
1: जो कहता है खुद होता है, मैं भी ऐसे कहती हूँ। मेरे जो मेरे सिस्टर है वो मुझे मतलब तंग करती है, मेरा नाम जो है ना उसमें टोटो डाला हुआ, तो मैं खुद हूँ।
0: अच्छा, आपके साथ क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो मुझे बचपन में छेड़ा जाता था, आपको भी ऐसे छेड़ा जाता था कि हम ना चिड़िया घर जा रहे हैं?
1: हाँ, ये मुझे बिल्कुल छेड़ा जाता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आप खुद होते हैं।
0: ये देखे ना, मुझे मेरी हमना मिल गई है, तो अब मैं कन्फर्म कर सकती हूँ कि आपको हमना तुमना भी कहा जाता था।
1: हाँ, हमना तुमना दमना, पता नहीं।
0: ठीक है, ठीक है।
1: और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आज जो है ना, आपकी तरह मेरे माइंड में ज्यादा था, इतना आज मुझे गुस्सा आया, हमना आपकी इतना गुस्सा आया। मैं देखकर जिस चीज ने मुझे ये कहा उसने दोबारा जाके जवाब दिया, आज जो आप बता रही थी मेरे माइंड में बहुत ज्यादा था।
0: अच्छा, इसका मतलब आज हमना नाम के जितने भी लोग हैं उनकी सेम फीलिंग्स चल रही है। ठीक है,
1: चलिए, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह
0: हाफिज़। चलिए जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और राइट जी, एक हम नाम कॉलर जो है, जब कॉल करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गई फॉर अ मोमेंट, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने नाम का जिक्र कर रही थी और कहीं मुझे ऐसे गलत नाम जो है ना अपना नाम ही समझ आ रहा है। सो आई हैव टू कंफर्म इट, और फिर जब मैंने कंफर्म किया तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके कि मेरे भी कोई हम नाम लिसनर जो है वो मुझे सुनता है। तो मुझे अच्छा लगा। एनीवेज जी, कॉल करती रहेगा और शो का पार्ट रहेगा, सुनती रहेगा। इसके अलावा जी, रेहाना खान हमारे साथ मौजूद है जी फेसबुक पर, बक्कर से बहुत शुक्रिया। गुल यासीन हमारे साथ मौजूद है जी, नूर हमारे साथ मौजूद हैं जी सिंध से, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने का।

और राइट जी, मैंगोज़ की पिक्चर्स भी आप लोगों ने बहुत सारी भेजी हैं रजा चौधरी से, जब मेरी बात हो रही थी मैंगोज़ के हवाले से, क्योंकि अर्ली स्टार्ट शो में मैंने जब गर्मी के सीज़न की बात की थी, जहाँ से बात रिलेट होते होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट एनीवेज जी, तब मैं ये बात कर रही थी मैंगो सीज़न की। और मज़े की बात यह है कि हम से अक्सर लोगों के साथ ये होता है, जो इनके साथ हुआ कि इनको रेडी वाले ने कहा कि मैंगो जो है ना वो मीठा है, और उनको जो टेस्ट कराया वो मीठा था, लेकिन जो घर लाए वो सारे फीके थे। इवन एट टाइम्स ये भी होता है कि मैंगो की, क्योंकि इतनी सारी एग्जाम है, इतनी सारी टाइप्स हैं कि हमें नहीं पता होता। और मेरे साथ अभी रिसेंटली ये हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था कि अभी जो मैंगो का एक्चुअली जो मैंगो होता है ना चौंसा, वो अभी नहीं आया। सो मैं भी मैंगो ले रही थी, और मुझे उसने कहा शॉपकीपर ने कि जी ये चौंसा है, तो मैंने कहा चौंसा तो अभी नहीं आया, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं ये सिंदड़ी है। सो मैंगो की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे फेवरेट जो है वो यकीनन हम सबका चौंसा ही है।

ऑन रेडियो 7:25 PM ऑन द डायल और एक खूबसूरत ट्रैक जिसे शान अली की आवाज में एंजॉय करते हैं. लौट कर आएंगे मजीद आप लोग की कॉल्स, ढेर सारी कॉल्स लेंगे, कोई गिले शिकवे नहीं छोड़ दे. सो मजीद कॉल्स करते रहेगा 0 4 2 1 1 0 1 1 इस ट्रैक के बाद लौट कर आते. स्टे ट्यून्ड.

0: right, जी another caller with us. Hello, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अहसन खान बात कर रहा हूँ, बकर से.
0: जी अहसन, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ.
0: जी
1: सबसे पहले तो हम आपके शुक्र गुजार हैं कि आपने हमारी शादी को जिस तरह रेडियो पे बयान किया या उसको कवरेज दी. तो मुझे तो फिर एक दोस्त का फोन है, वो भी रेडियो सुनते हैं, तो वो कहते हैं यार हमना खान जो है वो इनवाइटेड थी, वो वहाँ पर गई थी शादी पर.
0: देखिए मैंने सुन के अहवाल कैसा बयान किया कि उनको लगा कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैंने देखा है.
1: तो वो यही शक फरमा रहे थे कि कहीं हमना खान ने ना कोई शादी सारी देखी हुई है.
0: अच्छा.
1: मैंने कहा नहीं, यही आरजे का कमाल होता है कि वो बिन देखे अपनी आवाज के साथ हो और अपने लफ्जों के साथ ऐसे बयान करे कि चीज बिल्कुल सामने नजर आ रही हो. तो मैंने कहा जो हमना खान ने माशाल्लाह आरजे इतनी कमाल की है कि जो चीज उन्हें बताई जाए तो वो फिर उसी तरह ही बयान करती हैं और एक ऐसा माहौल बनाती हैं कि जैसे सामने शादी मौजूद है. तो बड़ी आपकी तारीफ हो रही थी.
0: बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह.
1: हमारी सारी फैमिली भी आपकी तारीफ कर रही थी कि माशाल्लाह इतनी कमाल के साथ बिन देखे बगैर वो फिर इस तरह बयान करना तो फिर मुश्किल ही हो जाता है बंदे के लिए. लगता है ऐसे था हमें भी दोबारा से शादी याद आ गई साथ जो उनको थी, काफी टाइम गुजर गया, मेरे ख्याल कोई 22 दिन तो गुजर ही गए होंगे. तो वो एक दफा फिर से शादी जिंदा हो गई है तो वो तो अच्छा लगा. तो हम आप सब हमारी फैमिली और सारे जितने लोग हैं इसमें वो शुक्र गुजार हैं आपकी.
0: बहुत शुक्रिया जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा.
1: काफी तारीफ है जो आपने इन अच्छे अल्फाज के साथ और एक अच्छा माहौल बना के उसे कवरेज दी जब यहाँ किया जो आप समझ दे.
0: तो
1: गुस्से के ऊपर बात करें तो गुस्सा जो है ना इंसान को आता है कभी कभी, यानी कि बातों के साथ भी आ जाता है, कभी कभी वैसे ही इंसान को आ जाता है. अभी कल ना मैं काम कर रहा था बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी.
0: अच्छा.
1: तो मैंने उनका एक काम कंप्लीट किया, मेरे कजन ने. तो असल में पाकिस्तान में कुछ मसला ये है कि थोड़ा सा ना वो बिल शेल ज्यादा आ जाते हैं, तो लोग उन्हें लगाए वो कहते हैं इधर ना इधर कनेक्शन कर दे, उधर को उधर कर. मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं, कोई मसला नहीं. तो रुपया आपका 1000 बनेगा.
0: अच्छा.
1: यार ये क्या बात. मैंने कहा बात ये कि 2 मीटर है, 2 कनेक्शन करने हो. कहते ठीक है. अच्छा मैंने वो सारा कंप्लीट कर दिया, चला के उनको दिखा के आप ठीक है. कहते ठीक है.
0: अच्छा.
1: तो सही 2 घंटे गुजरे हैं तो फोन आ गया, तशरीफ ले आए जी ये बिजली खराब है.
0: अच्छा.
1: क्या हुआ? अच्छा मैं गया, मैंने फिर चेक शेक किया तो उन्होंने एक चेंज ओवर लगाया हुआ था जो कहीं और तरह बिजली भेज रहे थे.
0: ठीक है.
1: यानी कि कोई मोटर चला रहे थे या कोई भी चीज चला, लेकिन वो हैवी थी थोड़ी. तो उसमें एक पतरी लगी होती है जो सर्किट को कंप्लीट करती है. तो वो पतरी जो थी वो जल चुकी थी.
0: अच्छा.
1: मैंने कहा रुपया 1000 बनेगा, वो कहते अभी काम करके गए. मैंने कहा वो काम और था, ये काम और है.
0: ठीक है.
1: वो कहते यार आप हमारे साथ कर रहे हैं एक 2 घंटों में 2000 की ब्याज लगा. मैंने कहा काम भी तो खतरनाक है.
0: अच्छा.
1: मैंने कहा ये खोलना पड़ेगा, ये खोल के फिर वो लेके पड़ेगा घर में, यहाँ पे धूप है वहाँ पे इसको रिपेयर करने. तो फिर मैं इसको तैयार करूंगा और फिर इसके कनेक्शन करूंगा, आखिर 2 मीटर है इसमें तो काफी सारा मतलब. तो वो फिर ठीक हो गया, सारा कुछ चला के दे दिया, ओके हो गया.
0: अच्छा.
1: जब ओके हो गया ना तो ठीक, कोई आज सुबह कॉल आ गई हमारे घर की बिजली खराब है जी अब क्या करें. मैं फिर पहुंच गया.
0: अच्छा.
1: मैंने देखा एक जोड़ जो था ना वो स्पार्क हुआ, तो मैंने लगा दिया. मैंने कहा जी ठीक हो गया. वो कहते हैं अच्छा तो बिजली फिर भी नहीं जा रही. मैं जब पहुंचा ना ब्रेकर तक तो ब्रेकर जो था ना वो जल चुका था.
0: ओहो. अच्छा.
1: वो अब लगा हुआ है तकरीबन 2009 या 2010 का. अब उसकी जो लाइफ थी वो खत्म हो गई, वो जल चुका था.
0: अच्छा.
1: अब वो चाचा भी आ गए, चाची भी आ गए, सास कजन भी कटो. कहते ये लड़का जिस चीज को हाथ लगा रहा है सारी खराब हो रही है. ये भी पूछा रहा था कि मैं भी तो ठीक हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, जो आप मुझे जितना दे रहे हैं.
0: अच्छा.
1: तो मुझे क्या पता कि आपको फलां छत के ऊपर कोई जोड़ खराब हुआ है. अब मुझे भी गुस्सा. मैंने कहा भाई मैंने करना ही नहीं. वो नहीं नहीं करना, क्यों नहीं, हम आपको छितर मार की करवाएंगे. ये वो देख लिया यार, एक मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा गुस्सा भी कर रहे हैं, बातें भी सुना, तीसरा मेरे गुस्से को बर्दाश्त भी नहीं कर रहे, छितर पे भी आ गए. तू हमारे घर का बच्चा है तू ऐसी बातें करेगा. ठीक है आपको 4 काम आ गए हैं, हम ये कर. मैं ठीक है भाई कर देते हैं, कोई मसला नहीं. कभी कभी दूसरे को बर्दाश्त भी करना पड़ता है जब अपने हो सामने।
0: बिल्कुल ठीक तो... है। और कभी कभी ऐसा वाकई होता है, आप एक काम ठीक करते हैं दूसरा बिगड़ जाता है, फिर दूसरा ठीक करते हैं तीसरा, और इंसान कहते हैं आज हो क्या रहा है मेरे साथ।
1: वो ऐसे ही हो गया ना, हालांकि उसी के साथ उसी टावर के ऊपर हमारा भी मीटर लगा हुआ।
0: अच्छा।
1: तो अचानक जब उसको छेड़ा ना तो हमारे की भी तारे निकल गए।
0: ओहो।
1: इतना यानी कि वापटा वालों के ना काम अच्छे माशाल्लाह कर रहे हैं हमारे मुल्क में, कि पिछले दिन आंधी आई थी एक गालबन, मुझे डेट नहीं याद, और तकरीबन 6 दिन बाद जाके हमारी वापटा की सप्लाई ऑन हुई और हमारे लोगों की बात हो गई थी।
0: चले खैर, लेकिन आप मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड हैं, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे ड्रिप का वाक्य सुनाया कि आप ड्रिप भी लगा लेते हैं, अब आप इलेक्ट्रिसिटी का भी काम कर लेते हैं, तो माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, एम्ब्रॉयडरी में हमारा नाम है, वो हमारा प्रोफेशनल और पेशा काम है, वो हम करते हैं। और ये जो है ना इलेक्ट्रिशियन है, मैं काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, आपकी दुआओं की जरूरत है, इंटरव्यू मेरा कामयाब हो गया।
0: इंशाल्लाह जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके लिए।
1: ये ग्रेप शरीफ हो गई, ये टीके शीके ये काम भी कर लेते हैं, इसके अलावा दर्दी भी हम गुजारे के
0: हर फन मौला है आप तो सब कुछ कर लेते हैं,
1: बातें शाते भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ, और हमारी बातों की वजह से लोग नाराज भी हो जाते हैं, किसान लंबी कर जाते हैं। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी जी,
1: तुमको सालगिरह मुबारक, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी दराज करे।
0: आमीन आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जी ऐसा खान वैसा मौजूद है, और कभी कभी वाकई ऐसे ही होता है कि आप कोई एक चीज़ ठीक करते हैं, और स्पेशली ना कभी कभी ऐसा भी दिन होता है ना कि आप कोई जल्दबाजी में होते हैं, जैसे घर से निकलना होता है जल्दी, या कोई काम ऑलरेडी लेट हो रहा होता है, या आपको होता है कि बस अब ये काम करके जो है ना मैंने फ्री हो जाना है, बस ये काम ख़त्म हो और उसके बाद मैंने रेस्ट करना है, लेकिन काम बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। और ये हम सब के साथ होता है, चाहे अब आपका वो पेशा है उसमें हो रहा है, कोई काम है आपकी जॉब है उसमें हो रहा है ऐसा, या घर में भी ऐसा होता ही है। बट एनीवेज जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है, इस पर अभी भी आपका उतना ही यकीन है जितना बचपन में था, या अब आपका जो परसेप्शन है या आपका थॉट जो है इस हवाले से वो चेंज हो गई है, और आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ बचपन में ही हम कहते थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है, अब जो है ना अब ऐसे मामला नहीं है। सो एनीवेज जी, आप इस पर अपनी थॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 0421000101 पर।

0: Alright, जी, वेलकम बैक वंस अगेन. इट्स 7:45 PM ऑन द डायल. और कमेंट्स में कमेंट्स आ रहे हैं कि जी जो ट्रैक प्ले किया इसका नाम बता दें. ये किसका ट्रैक है? इसका नाम है बंधन और ये हसन एंड रोशान का ट्रैक है विद क्यूबी. और खूबसूरत सा ट्रैक है जी. अगर आपने नाम नोट करना है तो प्लीज़ कर लें. इसका नाम है बंधन. और जी बार बार कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा पहले मैं ट्रैक रोक के जो है ना पहले बता दूँ, पहले क्लियर कर दूँ कि ट्रैक कौन सा है जी. एनीवेज जी, हम बात कर रहे थे कि जो कहता है वो खुद ही होता है और उस पर अभी तक जो आप लोगों का बिलीव है. और वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप लोगों को भी इस चीज़ पे उतना ही यकीन है और अभी तक ऐसा ही यकीन है कि जी जो कहता है वो खुद ही होता है. और वो बचपन की सिर्फ हमारी एक वो नहीं थी, हम अभी भी इस चीज़ पे जो है ना वो उतने ही जैसे कहते हैं ना डटे हुए हैं कि बाकी जो कहता है वो खुद ही होता है. All right, another caller with us. Hello, assalamualaikum.
1: Hey, waalaikum salam. हमने खान अब्दुल हमीद सुखा बात है कार लगे गए.
0: जी जी.
1: रमजान गुजर साहब आए माशाल्लाह ये गला बहुत अच्छे लगे.
0: अच्छा जी, ठीक है.
1: फिर हमने कहा देखो बचपन से कई पुटे से नाप होंगे ना जेड़ा गुस्सा करता है ना उन्होंने ज्यादा शेर दे शेर बन जाते
0: बिल्कुल.
1: जे खमोश हो जाना ना बोलना है ना क्या यार ये तो गुस्सा नहीं करता हूँ इन ना क्यों इन्ना है
0: ये बात
1: हाँ. माशाल्लाह भी अल्लाह तुम खुश रखे बहुत बढ़िया प्रोग्राम होया.
0: कमाल बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. हाँ
1: कई जो गुस्सा करते ना करो ओन बड़ा छेड़
0: बड़ी देर बाद समझ आती है हमें कि हम
1: जवाब जो मेनू कहने आप ही हो गए
0: बिल्कुल ऐसी है और ये बड़ी देर बाद समझ आती है हमें.
1: बाकी बहुत अच्छे आए कॉलर बड़ा बड़ा सोने माशाल्लाह अच्छा बोले ने लगा जो नहीं आया कमी महसूस
0: नहीं आए थे ऑफर आए थे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का. और बिल्कुल ऐसे ही होते जी, हमें बड़ी देर बाद समझ आती है कि जो इंसान हमें छेड़ रहा है वो हमारी उस चिड़ की वजह से. जब आप ज्यादा चिड़ते हैं तो सामने वाला आपको ज़्यादा चिढ़ाता है. जब आप अपने गुस्से पर या इस चीज़ पर कंट्रोल कर लेते हैं कि मैंने कितना एक इंसान को शो करना है अपना रिएक्शन या कितना मैंने जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उतना ही आपकी बॉडी काम हो जाती है और उतना ही आप पुरसकून हो जाते हैं और उतना ही सामने वाले को लगता है कि अब तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा. सो हमेशा जो है ना ये स्ट्रैटेजी ज़रूर काम आती है. बचपन में हमने बड़ी देर बाद जाके ये चीज़ें सीखी, हमें समझ आई कि अच्छा कोई इंसान हमें अगर चढ़ा रहा है कोई भी आपका क्लास फेलो है कोई भी तो कोई कजन्स हैं या कोई भी फ्रेंड्स हैं इर्द गिर्द के मोहल्ले के बच्चे हैं वो आपको चढ़ा रहे हैं. लेकिन अगर आप चिढ़ रहे हैं तो वो आपको और चढ़ा रहे हैं. अगर आप रुक गए हैं आपने अपने आप को शो किया कि मेरा तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा इस चीज़ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर जो है वो आपको चढ़ाना बंद कर देंगे.

0: कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम दो तीन कॉल्स, अगर आप लोग छोटी छोटी बात करें तो फिर हम दो तीन कॉल्स ले लेंगे होपफुली जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, बात मुकम्मल नहीं हुई अभी मेरी.
0: जी जी
1: हाँ जी. अभी मुझे सिर्फ इतना कहना था कि हम बचपन में जो होते थे ना, कि अभी रमजान भाई ने बात की ना कि हमारे पास जवाब नहीं होते थे, हम लड़ाई करने लग जाते थे, गुस्सा करने लग जाते, चिढ़ते थे. हाँ, लोगों का काम है हमें चिढ़ाना, मगर ना भाई हमें ना अभी ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी के कहने पर थोड़े ना बन जाएंगे.
0: ये भी बात ठीक है, लेकिन बचपन में नहीं ना समझ आता था.
1: बचपन में मुश्किल होता था कि जो तुम कहते हो तुम ही होगे, लेकिन बड़े होके हमें फिर समझ आते थे, आ जाती है कि हम किसी के कहने पे बन तो नहीं ना जाएंगे. इसी तरह जैसे हमें कोई कहता है कि तुम मर जाओ, हम किसी के कहने पे मर तो ना जाते हैं.
0: बड़ी बड़ी बातें होगी.
1: अगर कोई हमें कहेंगे जी तुम तो जादूगर बन जाओ, हम ज्यादातर हम वो थोड़े ना बन जाएंगे इतनी जल्दी. और इसी तरह हम किसी के कहने पे कुछ बन नहीं जाते. बस ये है कि हाँ बड़े होके हमें ये होता है कि हमारे पास सवालों का जवाब देना आ जाता है, हमें हर बात का जवाब देना आ जाता है, लेकिन हम बनते नहीं है किसी के कहने पे. वो तो सिर्फ एक लोगों का काम है, चिढ़ाना, तंग करना, गुस्सा दिलाना. उनको मजा आता है वैसे भी कि लोगों की छेड़ रखना, उसी नाम से पुकारना, फिर वो ताकि अगला बंदा वो उनको रिस्पॉन्स दे के हमारे साथ लड़े, गुस्सा करे हमारे साथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो बस चाहता ही यही होता है.
0: अच्छा, कि ये शरारती वाली नेचर जो है ना, कुछ लोगों की सारी जिंदगी नहीं जाती. और कुछ
1: बिल्कुल में, हालांकि आदत है तो मुझमें भी है. अब तक आप यकीन करें, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम शबनम है. आप यकीन करें, उसका नाम मैंने शलजम रखा हुआ है. मैं जब भी उसको मिलती हूँ तो मैंने कहा 100 रुपए शलजम, 100 रुपए किलो शलजम ले लो. स्कूल में हालांकि उसको सारे शलजम कहते हैं, तीसरे तक उसको शलजम कहने लगी, कहती रिमशा. और हालांकि जब से मैंने स्कूल छोड़ा ना, कहती चुप कर करो, मेरा नाम शबनम से बुलाने लगे, वरना मुझे शलजम कहती थी सारे.
0: लेकिन देखिए, कुछ चीजें ना बड़ी पॉजिटिव और स्वीट होती है, उसमें आपको पता चलता है कि नहीं ये कोई पॉजिटिव इंटेंशन से आ रही है या ये एक अच्छा सा मजाक है, एक छोटा सा मतलब
1: एक मजाक भी होता है, यादगार बन जाता है. खड़ा होता है तो वो मुस्कुराता है, ये लम्हा याद करके.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यार कोई ऐसा दोस्त था मुझे इस नाम से पुकारता था, मैं उसके साथ लड़ता था, मैं भी उसे इस नाम से पुकारता था, ये यादें रह जाती हैं.
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हमें चिढ़ना नहीं चाहिए. अच्छा, हम किसी के कहने पे बन नहीं जाएंगे.
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक,
1: ये सोचना चाहिए.
0: बिल्कुल ठीक है.
1: मेरी कॉल मुकम्मल नहीं कहा है, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, बात मुकम्मल नहीं हुई.
0: कोई बात नहीं, देखें जी आपकी कॉल तीसरी बार मिल गई है, और क्या चाहिए आपको. ठीक है,
1: बस आपकी दुआ चाहिए, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए.
0: जरूर जरूर इंशाल्लाह.
1: और आप इसी तरह से मुस्कुराती रहा करें. मैं सब कॉलर को कहूंगी कि आप भी हम ना अगर दोबारा छुट्टी करें तो आप लोगों ने इनके ऊपर साइन रखना है, कान करवाने की छुट्टियां बहुत करती हैं.
0: ठीक है, ओके जी, नहीं करूंगी इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़.
1: ओके, अल्लाह हाफिज़.
0: ऑलराइट जी, रिमशा वैसा मौजूद थी. और यही बात होती है कि कुछ चीज़ें इतनी स्वीट और पॉजिटिव होती हैं बचपन की, और वो यादगार बन जाती है, वो मेमोरीज बन जाती हैं. स्पेशली अगर जैसे इन्होंने अपनी फ्रेंड का नाम रखा होता है, तो कुछ चीज़ें बड़ी हेल्दी होती हैं, उसमें आप इंजॉय भी करते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन होती हैं नेगेटिविटी का, और उसको अवॉइड करना चाहिए. उस पर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि कोई इंसान जान के आपको चढ़ा रहा है और आपको फ़ील करवाना चाह रहा है, आपको इन्फीरियर फील करवाना चाह रहा है, तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग रखें कि सामने वाले को पता चले कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और फिर आप देखिएगा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसके बाद वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रुक जाएगा, खुद ही वो जो नाम है या जो भी एनीथिंग जो भी आपको कहा जा रहा है या किसी भी तरह से अगर आपको चढ़ाया जा रहा है, वो इंसान करना खुद ही रोक देगा. क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि सामने से रिएक्शन ही नहीं आ रहा, तो अब वो किस चीज़ को एंजॉय करेंगे, तो रिएक्शन तो आ नहीं रहा. सो ऐसे करने से जो है ना, वो ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक होती है जब आप रिएक्शन नहीं देते.
2: It's obvious, मैं तेरे ही जाल में फंसा, बेताबियां टूटे हुए दिल की ना जगा.

0: All right, it's 7:55 PM on the dial and Hassan Rahim, it's obvious. And it's obvious कि हमारा time जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है. So हम last caller लेंगे. Let's see 0422111011 पर कौन है जी last caller हमारे साथ. Let's see if the call doesn't drops. Hello, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं आफिया खान लाहौर से. कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक. आज बड़े नए नए कॉलर्स आ रहे हैं, हमारी कॉल अटेंड हो रही है और नई नई आवाज़ें सुनने को मिल रही है.
1: आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी मीठी आवाज़ है. मैं यकीन करें मैं खाना बना रही हूँ और मैंने अच्छा। रेडियो मैंने लगाया, मैंने सुना, मैंने कहा ये कौन है. मैंने कहा अच्छा मैडम आई है. मैडम इतनी प्यारी आवाज, और यकीन करें मैंने इतनी बार कॉल की. आपने उठाई
0: थी? अच्छा नहीं, मैं उठा रही हूँ, मैं कॉल्स ले रही हूँ साथ साथ. ऐसा तो नहीं हुआ आपका खाना जल तो नहीं गया कॉल्स करते करते?
1: रोटी जल गई.
0: ओए होए. अच्छा, रोटी बनाते हुए ना कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसा कुछ भी करने का. क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं होता.
1: आपके लिए कुछ भी कुर्बान है.
0: हाय,
1: आवाज बहुत प्यारी है.
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
1: और मैं कहना चाहूंगी कि गुस्से के बारे में मैं कहूँ तो मेरा गुस्सा ऐसा है यदि इससे मुझे गुस्सा दिलाया हो तो तब तक सुकून नहीं आता जब तक मैंने उसी शख्स को 2-3 थप्पड़ ना मारा.
0: ओह माय गॉड.
1: वो पे नहीं, वो जो बात कह रहे हैं.
0: हाँ, मैं समझ गई. वो मतलब कुछ ना कुछ उसका जो है ना अपने रिएक्शन देना है.
1: मैं ये नहीं, उसने मुझे मुंह से कुछ कह दिया बदतमीज में.
0: अच्छा.
1: तो नहीं, मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता. मुझे अच्छा लगता है उसे मार के.
0: ओए होए.
1: तब मेरा गुस्सा ठंडा होता है.
0: अच्छा.
1: ये मैं छोटी थी तब भी ऐसी थी और अब बड़ी हो गई तब भी मैं ऐसी हूँ.
0: अभी भी ऐसी है. ठीक है, तो इसका मतलब आपने तो फिर बचपन में बहुत कहा होगा कि जो कहता वो खुद ही होता है.
1: नहीं, मैं जब 12 साल की थी तब कहा था, बचपन में नहीं कहा.
0: अच्छा, बचपन में नहीं कहा. क्यों बचपन में आपको?
1: लेकिन सच था. लेकिन सच था जिसने मुझे
0: सच था
1: जो कहा था ना.
0: अच्छा.
1: हाँ, सच था ये.
0: वो खुद ही है. मैंने कहा जिसने आपको जो कहा वो खुद ही है.
1: हाँ जी. वो नहीं, मुझे 2-3 मेरी फ्रेंड थी उन्होंने कहा था. फिर मैंने कहा जो कहते हैं ना वही होते हैं. और वो वैसे ही निकले.
0: अच्छा, इसका मतलब आपने आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया इस चीज को.
1: फिर मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. जब मैंने खुद देखा मैंने कहा ये तो खुद है. चलो कोई बात नहीं, इनकी बात का क्या बुरा मनाना, ये खुद ही ऐसे. मैंने कहा हाँ
0: ठीक है जी, ठीक है.
1: और तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम. और ये जो आपके कॉलर थे ऐसा नाम है शायद, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी स्टोरी बताई है. मैं हंस हंस के मेरा पूरा हाल हो
0: गया. अच्छा ठीक है.
1: और उसके बाद जो कॉलर आए थे उन्होंने आपको इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, मुझे लगा पूरे होने वाली है. मैं कहती मेरे भी कोई दुआ करे. मैं पहली
0: नहीं नहीं आपके लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे, आप फिक्र ना करें. अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी करवाएं. और अगर कोई और कोई इशू है जिस हवाले से आप दुआ के कहना चाह रही हैं तो अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाएं.
1: आमीन आमीन सुम्मा आमीन. आपके मुंह में घी शक्कर.
0: चलिए जी, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है. ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. जी जी,
1: चलो ठीक है, कोई बात नहीं.
0: अल्लाह हाफिज़. ऑल राइट जी, बहुत अच्छा लगा जी. आज बड़े नए कॉलर्स आए हैं और बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं कितनी उस पूरे शो में आप लोग पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं तो मैं ये भी नहीं कह सकती. मतलब मैं पॉजिटिव वे में कह सकती हूँ कि आप लोग जो कहते हैं वो आप खुद ही हैं, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा आगे बोलते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. और सच अ नाइस शो कि मैं जब यहाँ से निकलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी अपने अंदर की एनर्जी जो है ना वो पूरी चेंज हो चुकी है. सो मैं शो करते हुए बहुत इन्जॉय करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग शो सुनते हुए बहुत इन्जॉय करते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि जो कहता है वो खुद ही होता है. तो टेंशन नहीं लेनी, दिल पे नहीं लेना और परेशान नहीं होना. और कोशिश करनी है कि आप जिससे जो भी कहें वो अच्छा ही कहें, वो पॉजिटिव ही कहें, ताकि किसी ने अगर आपके बारे में ये कहना ना कि जो कहता खुद ही होता है वो अच्छा ही कहे फिर. और जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मुझे अपनी आरजे हमदा खान को दीजिएगा इजाज़त. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह 6-8 आप लोगों से मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. इसमें तेरे ही जाल में फंसा
2: बेताबियां. पाकिस्तान है, खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना
3: और अब्दुल कदीर.
2: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
3: وزیراعظم نے صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔
2: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عالمی برادری سنتوس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کرتی ہے۔
3: وزیر ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال جون تک تمام ٹرینوں کی تزئین و آرائش کر دی جائے گی۔
2: خزانے کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، برآمدات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
3: پاکستان اور اٹلی نے 2 کروڑ یورو کے رعایتی قرض کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो के

मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा और चुप।

0: Hello, hello.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101। खवातीनो हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं, और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सूबों की मशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी वज़ा करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि आलमी बरादरी सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम करती है। पाकिस्तान और इटली ने 2 करोड़ यूरो के रियायती कर्ज के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। ख्वातीन के आईसीसी T20 आलमी कप का पहला सेमीफाइनल कल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा।
1: This is FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101, where your spirit is set free.
1: 101 FM.
2: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pakistan. क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट पारे बन होंगे. ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हुसैन रजा, ऑल द वे फ्रॉम हिट हॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एफएम 101. और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामा स्टूडियो से. ऑलराइट जी, हमारी आवाज इस टाइम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई. इंटरनेशनली आप इस टाइम हमें सुन रहे हो radio.joy.pk पर. इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त सिस्टम हमें मोबाइल इंटरनेट पर सुन रहे हैं radio.joy.pk/mobile पर. और अगर तो आप अपने रेडियो सिस्टम मोबाइल सिस्टम पर सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून किया हो प्योर पाकिस्तानी चैनल एफएम 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. अपने रेडियो सिस्टम मोबाइल सिस्टम पर सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून किया हो प्योर पाकिस्तानी चैनल एफएम 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं.

बिकॉज ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिन भी अच्छे नहीं गुजरेंगे, पूरा हफ्ता अच्छा नहीं गुजरेगा. सब डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर. पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा. तो अच्छा है ना पॉजिटिव सोच के लाइफ को अच्छा बना लो. एनीवेज योर बताएं आपके तकरीबन दो हफ्ते जो हैं आप कैसे गुजरे, क्योंकि लास्ट वीक जो है प्रोग्राम नहीं था, मुहर्रम चल रहा था और जिसकी वजह से आपका मेरा साथ नहीं था. और अभी हम आपके साथ आए हैं. आज देखिए मंथ का लास्ट डे है, 30th of June है और कल से 1st July जो है, मतलब कल आने वाले कल में स्टार्ट हो जाएगा. और देखें ना, अब आधा साल जो है वो तकरीबन गुजर गया है और टाइम कितना जल्दी गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है हमें पता नहीं चल रहा. आप लोग बताएं आप इतने दिन जो है वो क्या करते रहे, किस तरह आपने टाइम गुजारा है. बीच में ऑब्वियसली कुछ छुट्टियां भी आपके पास आ गई और आपको पता है जब छुट्टियां आती हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले में हो, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है, हमारी क्या बहुत सारे लोगों की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम कहीं पे घूमने फिरने के लिए चले जाएं. और अभी पिछले दिनों आपको यही देखने को मिला और स्टिल अभी भी लोग जो हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मियों में दिल करता है कि बस दूर दूर चले जाएँ, पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ. सो नथिया गली मरी और नारायण खगान हंजास करदू, तो लोग काफ़ी घूमने फिरने गए हुए. मैं मुझे तो पिछले दिनों ऐसे लग रहा था लोगों की इंस्टाग्राम और फेसबुक देखे कि शायद सिर्फ मैं ही इस्लामाबाद में हूँ, बाकी सारे लोग जो हैं वो स्कर्दू या हंजा पहुँचे हुए हैं. तो इसी वजह से आपको बहुत, जब आप इस रास्ते पे जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ट्रैफिक जाम जो है वो देखने को मिलती है. वहाँ पर कई कई घंटे जो है आपको वेट करना पड़ता है. फिर आप कहते हो कि यार होटल्स के इतने महंगे कमरे क्यों हैं, और जारी बात है जब डिमांड बढ़ती है तो फिर पैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं. फिर लोगों को पता होता है ना कि अब इनको कमरा तो चाहिए ही चाहिए, सो स्टे तो इन्होंने करना ही करना है. तो फिर जहाँ वो 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, वो कहते हैं यार 20 भी कर लो तो लोगों ने दे देने हैं. लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि पिछले कई सालों में ये होटल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है. बहुत सारे होटल्स जो हैं वो बन भी रहे हैं. और अब अगर आप जाओ ना इस नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पर आपको बड़े लग्जरी होटल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो आपको बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और जहाँ आपको व्यू भी मिलते हैं पहाड़ों के, कहीं पे पानी के. सो वहाँ पर आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, चिल कर सकते हो. सो वहाँ पर पैसे जो हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पर मिल जाता है. सो ऐसा ऐसा लोग जो हैं, अब होटल जो हैं वो ट्रेंड ज़्यादा चल पड़ा है. लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि अब जारी बात है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो वहाँ पर फिर जाके काम करना चाहिए. थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन स्टिल काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर आप अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हो. लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप अगर पैसे डिमांड कर रहे हो तो सर्विसेज जो हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए, जो आप जिस चीज़ के पैसे आप ले रहे हो. चलें जी, अच्छा है, घूमते फिरते रहें, लाइफ को एंजॉय करें. लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती. सो जहां पर आपको मौका मिले वहां पर आपको जाना चाहिए. और क्योंकि फिर वक्त जो है, जब आप सारा साल अगर काम करते रहो ना, वैसे ही आप बड़े बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो. फिर आप बहुत ज़्यादा खामोश भी हो जाते हो. फिर आपका दिल करता है कि यार कहीं पर निकलो. कुछ लोग तो निकल भी नहीं पाते हैं और उनको छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, या घर के अपने मामलात होते हैं. लेकिन जो लोग टाइम निकाल के निकल जाते हैं ना, और ये सोचते हैं यार काम तो होते रहेंगे, 2-3-4 दिन मिले बस निकलो, फैमिली के साथ आउटिंग करने जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, तो मतलब आप फ्रेश हो जाते हो, मेंटली फ्रेश हो जाते हो. और आपको ये काम जो है वो करना भी चाहिए. एनीवेज जी, कुछ मौसम के हवाले से बात करें. अभी कल यानी मंडे को और संडे को, खास तौर पे मंडे को, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा फील हो रही थी. और अभी आज भी कहा जा रहा है, कुछ देर पहले जो है मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक भाई बड़ा अच्छा वेदर फोरकास्ट करते हैं, उन्होंने यही कहा था कि आज ट्यूसडे को किसी तरह बर्दाश्त कर ले. सो तो ये है कि फर्स्ट से जो है वो बारिशों के चांसेस हैं. सो 3-4 दिन जो है वो बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं और अच्छी खासी हो सकती हैं. सो चलें, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मैं पोस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बड़े एक्यूरेट, मतलब 100 में से 80% जो है उनकी फोरकास्ट जो है वो अच्छी होती है. वो मतलब कुछ लोग पूरा सिस्टम देख के ना वो फिर बताते हैं कि अब क्या हो सकता है.

100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए 20% मार्जिन जो है रखना चाहिए. तो लेट्स सी अभी आने वाले दिनों में क्या होता है, बारिशें होती हैं और मौसम जो है वो किस तरफ जाता है अभी है. लेकिन अगला एक महीना आप जेहन में रखें कि आप ये ना सोचिएगा कि सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी, सर्दी आप गर्मी में तो पड़ नहीं सकती. सो ये है कि कुछ गर्मी जो है वो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी. सो अभी से सेविंग जो है वो करना शुरू कर दें, क्योंकि अगले महीने का बिल जो है ना आपको बहुत आएगा. क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है वो एसी वगैरह तो रह नहीं सकते, तो एसी चलाना जरूरी होता है. जब एसी चलाना होता है तो बिल भी आता है. बिल जब आता है तो फिर क्या होता है, फिर एकदम से ना हमारे होश जो है वो ठिकाने आते हैं, यार इतना बिल आ गया. लेकिन जब आप पहले से दिमाग में रखो ना कि यार बिल आएगा, हमने इस्तेमाल करना है एसी, तो पहले से ज़रा पैसे ऐसे मैनेज करके रखो. तो आपको पता है एक दो महीने जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अर्निंग्स अपनी बढ़ानी पड़ती हैं. सो जो लोग कमा रहे हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पहले से मैनेज करके रखना चाहिए ना, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो. एनीवेज ये बातें आपके साथ चलती रहेंगी. जल्दी से आपको बता दो प्रोग्राम में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो. लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0511111011 एंड 0519202540. आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे एसएमएस मैसेज के थ्रू. अभी से मोबाइल फोन के एसएमएस के ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101 एक स्पेस, तो अपना मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471441 पर अपने तमाम टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करोगे. इसके अलावा जी फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पे ज्वाइन करो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्टर आएगी कि 12 to 2 AM आपका मेरा साथ रहेगा FM 101 इंटरनेशनल में. वहां पर अपने कॉमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और खास तौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो. एनीवेज ये अभी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रैक में प्ले कर रहा हूँ, और फर्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है मुस्तफा जाहिद की आवाज में. कोई नया ट्रैक तो आया नहीं मुस्तफा जाहिद का. तो नखरों के हवाले से जो ट्रैक है वो जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो नखरे बहुत करते हैं. एनीवेज इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, और जैसा मैं कहता हूँ अगर आपका दिल करे चाय पीने को, ग्रीन टी पीने को, कॉफी पीने को रात के इस टाइम, और साथ आपने सुनना है शो को, सो जल्दी से जाइए बना के लाइए एक कड़क चाय का कप जो है. अगर मेरे पास आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं यार, गुजारा कर लेंगे. So, anyways, जी ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हसन रजाक, मेरा साथ जाएगा ठीक रात के 2 बजे तक, और हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद. सो सुनते रहिएगा FM 101 इस्लामा स्टूडियो से. Mom.

ओके लोगों, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक इन एफएम मोरा इंटरनेशनल में। और सबसे पहले आपको बता दूं, आज के प्रोग्राम में मैं पूछने क्या जा रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। मौसम बड़ा गर्म है तो मैं नहीं चाहता कि कोई ज़्यादा आप अपने जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर जोर डालें। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन साथ में बता दूंगा कि आपने किस तरह इसका जवाब देना है। आपने मुझे कोई भी जनरल बात, कोई कुछ भी हो सकती है, आपने मुझे बताना है कौन सी ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन रिलेशन से हट के आपने बात करनी है, ठीक है। क्योंकि अमूमन जब भी मैं कोई सवाल करता हूँ उसके ऊपर या तो ट्रस्ट की बात आ जाती है, या तो झूठ की बात आ जाती है, या रिलेशंस की बात आ जाती है। तो रिलेशन से हट के बात करनी है। ये क्या क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। और आप रिलेशंस के अलावा कोई भी जवाब दे सकते हैं। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि क्या क्या बातें हैं जो कि जनरली लोगों को नहीं पसंद होती हैं। सो आप द प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर। साथ फेसबुक पे आपने पार्टिसिपेट करना है www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। और लाइव कॉल्स आपकी 1240 के बाद जो है हम शामिल करेंगे 0511111 एंड 0519202540 पर। मैं रिपीट करता हूँ, आपने प्रोग्राम में मुझे बताना है क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, रिलेशन से आपने हट के कोई बात करनी है, जनरली जो भी आपके दिमाग में आए या जो भी आपको नॉर्मली जो है नहीं पसंद। सो क्लियर हो गया, अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और आई डोंट नो कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। मेरी हर साल जो है टीम जो है अर्जेंटीना ही होती है, और लास्ट टाइम वर्ल्ड कप भी वही जीते थे, और इस टाइम अर्जेंटीना बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पर है। अभी जो CR7 के फैंस हैं रोनाल्डो के, रोनाल्डो ने अपने पिछले मैच में, पिछला ड्रॉ हो गया था उसमें, बड़े ज़बरदस्त गोल किए। मैसी मेरे फेवरेट हैं, और भी जिन जिन के फेवरेट्स हैं, तो उन्होंने भी अभी तक टॉप स्कोरर हैं, ठीक है। 6 गोल्स हुए उन्होंने किए हैं इस वर्ल्ड कप में, और अपनी टीम को मतलब जिताया है, कैप्टन तो वो हैं ही, जिताया है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अभी कल जो मैच था ब्राज़ील और जापान का, ब्राज़ील जीत गया 2-1 से। फिर साउथ अफ्रीका कनाडा का मैच था, कनाडा जीत गया। और अब जर्मनी का मैच है पैराग्वे के साथ, और ये मैच जर्मनी को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीदरलैंड का मैच है मोरक्को के साथ, नीदरलैंड को जीतना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग टीम है नीदरलैंड की। और इसी तरह फ्रांस और स्वीडन का मैच है, फ्रांस के लिए मैच जीतना ज़रूरी है। सो अभी आगे जो है बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस आने वाले हैं। और अगर पुर्तगाल का मैच होगा 3 जुलाई को क्रोशिया के साथ, फिर अर्जेंटीना का फिर मैच है 4 जुलाई को। सो आगे बड़े अच्छे मैचेस आने वाले हैं। और नेक्स्ट राउंड जो होगा राउंड 16, अभी देखना है कि 4 जुलाई के बाद कंफर्म होगा कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो पूरी तरह नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं। सो ये है कि आई डोंट नो कि आप लोगों की टीम कौन सी है, किस टीम को आप पसंद करते हो, किन प्लेयर्स को पसंद करते हो, सो और किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, और क्या फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैं वैसे पूरी तरह तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी फेवरेट टीम में मैचेस जो है वो देखता हूँ, जो और जो वाकई मुझे लगे कि यार ये मैच जो है वो देखने वाला है, सो उसको मैं फिर बाद में देख लेता हूँ अगर लाइव मैं ना देख सकूँ। सो फीफा जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स में से एक है, और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इस पर। अच्छा जी, इसके अलावा अब देखो ना, गर्मियों की जहाँ बात कर रहे हैं, अब आमों का मौसम आ गया है, ठीक है। अच्छा, जब आमों का मौसम आता है तो जितने मुल्तान के लोग होते हैं ना, तो वो उनके दोस्त जो है ना उनसे रابطہ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सारा साल رابطہ नहीं करेंगे, ये गर्मियों में رابطہ लाजमी करते हैं, क्योंकि आम जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके अपने बागात होते हैं, तो अपने आम लगते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब वो सेल भी करते हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी भेजते हैं। सो फिर पेटियों की पेटियाँ आ रही होती हैं, और यह कि जारी बात है, एक डेढ़ महीना होता है, तो उसमें हर सीज़न का फ्रूट को एंजॉय करना चाहिए। सो यह कि आम वाले दोस्त जो हैं वो बड़े ख़ास हो जाते हैं, कहने का तो वो आम होता है, लेकिन दोस्त ख़ास हो जाते हैं।

अच्छा, आजकल एक एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल पड़ा है, जिस तरह मैं अभी कुछ प्रोग्राम्स पहले भी चैट जीपीटी या जेमिनी के हवाले से बात कर रहा था, या और बहुत सारी ऐप्स जो हैं और भी आ चुकी हैं। अब पहले होता था कि हमने कोई ऐड बनाना, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई गाड़ी सेल करनी है, तो हम बड़ा सोचते थे यार इसका कंप्यूटर पर या मोबाइल के ऊपर डिफरेंट ऐप्स के थ्रू जो हैं वो किस तरह हम एक पोस्टर ऐड बना सकते हैं जिसको हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर लें। अब देखो ना, चैट जीपीटी अब के ऊपर कितनी आसान ऑप्शन आ गई है, या जेमिनी के ऊपर, कि आप वहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी सेल करनी है, वहाँ पर आप पिक्चर्स जो हैं 2-3 लगाएं और नीचे उसकी डिटेल्स दे दें, प्राइस दे दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दें, आपको एक ऑटोमेटिकली जो है एक मिनट के अंदर जो है वो इतना कैची किस्म का आपका एक ऐड जो है वो बन के आपके पास आ जाता है। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा आप मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एक बनी बनाई चीज़ जो है वो आपके पास आ जाती है। मैं सोच रहा था यार कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं। आज से अगर 5 साल पहले जाएं तो आपको ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर आप देखते थे यार पेड वर्जन भी है तो पूरी तरह ऐड जो है वो बन नहीं सकता, फिर उसमें आपने भी पिक्चर ऐड की है, फिर टेक्स्ट ऐड किया है, फिर उसमें बड़ा टाइम लग गया, तो मतलब कि आधा घंटा आपको लग जाता था एक टाइम पे एक अच्छा ऐड बनाने के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें से रिमूव करके दोबारा ऐड करना। सो अब जो है ऑटोमेटिकली आप इन्फॉर्मेशन दोगे सारी, आपको एक मिनट के अंदर आपका ऐड जो है वो बन जाएगा, और जो पेड चैट जीपीटी या जेमिनी है उसके अंदर आई थिंक आप वीडियो ऐड भी बना सकते हो। और अभी कल मैं देख रहा था एक इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि यार कुछ ऐप्स हैं, अब वो सारों के नाम तो मैं नहीं बता सकता प्रोग्राम में, बहुत ज़्यादा ऐप्स थी, अब उसके ऊपर जाकर आप जस्ट लिखो कि मुझे इस तरह का एक जो है वो ऐड बनाना है 15 सेकेंड्स का, और साथ अपनी पिक्चर डाल दो और उन्हें सिनेरियो जो है सारा एक्सप्लेन कर दो, जिसे आप प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। सो उसको आप एंटर करोगे, वो तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा, 5 मिनट का टाइम लेगा, आपको एक प्रॉपर जो है वो ऐड बना के वीडियो ऐड वो आपके सामने आ जाएगा। प्रॉपर म्यूजिक उसके अंदर होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो आप जॉगिंग कर रहे होगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उससे रिलेटेड जो है वो खुद ही इन्फॉर्मेशन उसके बीच में आ जाएगी। सो मैं ये सोच रहा था कि यार चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं, और इसी तरह मैंने जब ये वीडियो देख रहा था, अगले दिन ही मेरे साथ ऐसा हुआ, एक सप्लीमेंट्स का काम कर रहे हैं भाई, तो उनके ऐड जो है वो मेरे सामने आ गया, तो मैं और उसमें वो आर्टिफिशियल लड़के जो हैं बैठे हुए थे और वो सप्लीमेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, और मैं बड़ा हैरान हुआ, कल मैं वीडियो देख रहा तो मेरे सामने ऐड भी आ गया। सो अभी आप देखो कि फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें कितनी आ गई। अभी भी कोई कहे ना कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और टाइम देना पड़ेगा, यार हम किस तरह काम करेंगे, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप इजीली एक मिनट के अंदर, 1 से 5 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली खुद जनरेट कर सकते हो। तो अभी भी जो लोग कहें ना यार टाइम लगता है, मुश्किल है यार, ऐसा है वैसा है, फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो देखो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, ना आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और ना ही कहना मैं आपको बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन से चुटकी बजा के हो जाती हैं।

एनीवेज मुझे प्रोग्राम में आप बता रहे हो क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने कहा रिलेशन से हट के बात करनी है, ये ट्रस्ट और ये लव और झूठ और इस तरह की चीज़ों से हट के ज़रा बात करनी है। मैं देखूंगा आपका क्या क्या फीडबैक जो है मेरे पास आता है। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर और लाइव कॉल्स आपकी 12:40 के बाद हम प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अभी जी प्रोग्राम में हम ट्रैक प्ले करेंगे और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया हुआ है, किसका? अली जफर का ट्रैक प्ले करते हैं। ताउला खान ईसा खिलवी के साथ उन्होंने ये ट्रैक फीट किया, सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। जो दोस्त इस टाइम ड्राइव करें स्पेशली मोरवे हाईवे पे, आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग।

और जलेसोस आपको वेलकम बैक इन एफएम मोरवा इंटरनेशनल में और अली जफर की आवाज में आप ट्रैक सुन रहे थे। एनीवेज ये आपसे मैंने पूछा है, मुझे बताओ क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है 101 एक्सप्रेस मैसेज दाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर और साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101channelpakistan पर। अच्छा आपके मैसेज जो है मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, उनको हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ साथ हम और बहुत सारी बातें जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा होता हूँ, उसमें बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर भी न्यूज़ होती है, उस पर इर्द गिर्द लोगों से मिलने मिलाने में भी होता है। सो बहुत कुछ मैं देख रहा होता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, वो मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ।

अच्छा मुझे भी वो मैसेज आया कि आपने फुटबॉल के ऊपर बात की, आपने क्रिकेट के ऊपर कोई बात नहीं की। यार क्रिकेट क्रिकेट के ऊपर मैंने बात करनी की छोड़ दी है यार। अब मैं कहा इतने कितने कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए, मैंने शायद क्रिकेट के ऊपर बहुत कम बात की होगी। मैं अब नहीं करता यार, अब मैं देखता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों बात करूँ क्रिकेट के ऊपर। सो वो मेरा इंटरेस्ट जो है ना यार ख़त्म हो गया, आपको वो मज़ा नहीं है क्रिकेट में। और अब वो ऐसे कोई प्लेयर है भी नहीं जिसकी वजह से मैं टीवी के सामने बैठ के मैं इतने इतने घंटे जो है वो मैच जो है वो देखूं। सो इसलिए फिर मैं प्रोग्राम में कभी कभी बात करता हूँ, आप रेगुलर बेसिस पे करता ही नहीं हूँ।

Anyways, yeah, participate kare 101 Express bus Islam Sheikh and I'm like 4471 par saath Facebook pe www.facebook.com/fm101channel Pakistan aur mujhe bata rahe ho ki kya aisi baat hai jo aapko bilkul pasand nahi hai. Bada aasan sawal hai aur koi bahut zyada sochne ki aapko zarurat nahi hai. So jo bhi hame sun rahe hain aap zarur respond karo, hame batao aur hum aapke message jo hain wo program mein shamil karenge. Aur iske alawa jaisa main kehta hu program mein koi bhi baat karna cha rahe ho yaar, zindagi mein कुछ भी चल रहा है, ठीक है, चाहे आप बहुत खुश हो, चाहे कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूज हो, कुछ भी, एनीथिंग, सो आप हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर कर सकते हो, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं.

और जी अभी प्रोग्राम में ट्रैक प्ले कर रहे हैं और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है कभी मैं कभी तुम और इस का ये गाना है चल दिए तुम कहाँ. सो इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा. इस ट्रैक के बाद वापस आएंगे आपका मजीद फीडबैक जो है हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. साथ कोशिश करेंगे आपकी लाइव कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं. सो एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हुसैन रोज़ा आपको मेरा साथ रहेगा ठीक रात के 2 बजे तक.

0: ओके तो लेट्स सो वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में और अभी आप लाइव कॉल्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हो 0511111 एंड 0519202540 पर. पूछा मैंने आपसे ये कि मुझे बताओ कि क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और रिलेशंस से हट के कोई भी आप मुझे बात बता सकते हो. सो साथ साथ आपके हम मैसेज जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे कॉल्स के. और माजबी ने हमारे साथ पार्टिसिपेट करनी है. आपने क्या, मुझे गर्मी नहीं पसंद है और सर दर्द हो जाता है हॉट वेदर से. वो तो सबके साथ ही यही होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और मज़ा बहुत आता है. और आपने कहा रिश्तेदार का लफ्ज़ जहाँ आ जाए मुझे पसंद ही नहीं है. क्यों, क्या वजह है? ये सिर्फ आपके साथ मसला नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार रिश्तेदारों की बात जो है वो ना किया करो. ऐसा क्या है यार, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रिश्तेदार होते हैं और कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों से बड़े तंग होते हैं. क्या क्या लॉजिक किया है इसकी? अच्छा, इसके अलावा जी गुल हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए. आपने कहा मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मंडे हो और आपका शो ना हो. और मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मुझसे चाय का पूछे. ये भी कोई पूछने की बात है भला? अच्छा, मतलब कि आपसे चाय का नहीं पूछता चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगता, बस चाय ले आए बस. ठीक है, सो मुझे बताएं गुल के चाय का कप जो है छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? और मुझे याद है ये बड़े चाय का कप जो है ना, नादिया खान जब शो किया करती थी टीवी के ऊपर, सो वो इतना बड़ा चाय का कप जो है वो साथ रखती थी. तो मैं हमेशा ही बात सोचता था कि इतना बड़ा चाय का कप जो है ये ख़त्म कैसे करती हैं. अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर चाय होती थी या नहीं होती थी, लेकिन ये है कि मैंने जब भी उनको देखा इतना बड़ा चाय, मतलब मग से भी बड़ा जो है उनका चाय उनके लिए आती थी. सो अच्छा, मेरी आदत पता है कि चाय का कप जो है छोटा होना चाहिए. छोटा मतलब दरमियाने साइज़ का होना चाहिए, बस मतलब मज़ा पूरा होना चाहिए ना चाय का. अब ये तो नहीं कि बस चाय पीते रहो ख़त्म ही ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. अच्छा, इसके अलावा जी हमारे साथ किसने पार्टिसिपेट किया है, मैसेज है जी मेरे पास फैजी का. आपने मुझे एक बात दो तीन बार दोहराना नहीं पसंद. अच्छा फैजी, वैसे ये बात मुझे भी नहीं पसंद यार. एक अच्छा, समटाइम्स ना आप किसी को बड़े अच्छे तरीके से पूरी बात जो है वो एक्सप्लेन कर देते हो, बता देते हो. अच्छा पता नहीं लोगों का दिमाग किधर होता है आजकल, शायद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम में चल रही होती हैं या समटाइम्स लोग खुद ही समझना नहीं चाह रहे होते हैं. तो हालाँकि बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, लेकिन कुछ लोग शायद दोबारा भूल जाते हैं, उनके जहन से निकल जाती हैं और फिर आपको दोबारा बताना पड़ता है. तो अच्छा वैसे अगर कोई बात आपको बता दीजिए, आप थोड़ा सा केयरफुल रहते हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उनको कभी आपने वो बात कही नहीं है. सो है ये वैसे मेरे में भी है फैजी. अच्छा, इसके अलावा जी कुछ हम साथ साथ कॉल्स लेते हैं, साथ साथ आपके मैसेज जो हैं वो शामिल कर लेते हैं. सो देखते हैं हमारे साथ कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहां से हमारे साथ हैं. असलाम, इतनी देर से कॉल आ रही हैं और जैसे ही आप उठाओ एकदम से कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो जाती हैं. एनीवे जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हो 0511111111 एंड 0519202540 पर. और आपसे मैंने पूछा है कि मुझे बताओ कि क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम,
1: क्या हाल है सुनैन भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कौन कहाँ से बात कर रही है?
1: मैं लाहौर से साजदा बात कर रही हूँ.
0: लाहौर से साजदा बात कर रही है?
1: हाँ जी.
0: लाहौर में भी इस्लामाबाद जितनी गर्मी पड़ी है मंडे को
1: बहुत ज्यादा पड़ रही है. और ये भी कहना चाहूंगी मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद.
0: अच्छा चले, ये तो एक जनरल सी बात है ना, कोई और बात बताएं. ये तो भी एक और
1: नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यही कहना था मुझे ना ये मैंगो वगैरह यानी इसका फ्रूट पसंद है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद.
0: अच्छा,
1: जहाँ ठंडा मौसम हो, जैसे माहौल अच्छे खुले माहौल में जैसे बैठ जाओ, परी वगैरह पहाड़ी इलाके में
0: जब भी लोगों को मैंने सुना यार दुआ करो बारिश हो जाए, बस बारिश हो जाए.
1: हाँ जी, रहमत की बारिश हो जाए और अच्छा मौसम हो जाए. यकीन करें लाहौर में तो बहुत ज्यादा गर्मी है.
0: ठीक है, मतलब लाहौर पाकिस्तान में नहीं है ना, इस्लामाबाद भी गर्मी पड़ती है.
1: हाँ जी,
0: तो सिर्फ लाहौर में तो नहीं पड़ती.
1: नहीं, इस्लामाबाद में तो फिर भी सुना है हवाएं चल रही है, वो ठंडा मौसम है, उधर मरी भी करीब है, तो लाहौर में जरा ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी।
0: कल दोपहर को तो बहुत गर्मी थी, मतलब उतनी नहीं थी जितनी पहले होती है, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखें मौसम जो है वो किस तरफ जाता है।
1: देखिए, हर बंदा एसी लगा के भी नहीं बैठ सकता, काम कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में काम बिल्कुल नहीं किया जाता, उस काम के लिहाज से ना मुझे सर्दी अच्छी लगती है।
0: अच्छा ठीक है, चले आपने मौसम के हवाले से बात की है, और कुछ कहना चाहेंगी?
1: आपका शो जबरदस्त है और आपने कम से कम 3-4 हफ्ते बाद आए हैं।
0: नहीं, 3-4 हफ्ते क्या, सिर्फ पिछले हफ्ते प्रोग्राम नहीं हुआ था, उससे पिछले हफ्ते तो हुआ था, उससे पिछले हफ्ते भी हुआ था, वो आपने नहीं सुना। मैं तो आया था, आपने प्रोग्राम नहीं सुना था।
1: मैं तो सुनती हूँ, बल्कि मैंने ट्यूनिंग किया था, आप नहीं आए थे, फिर मैंने बंद कर दिया।
0: नहीं, सिर्फ पिछला प्रोग्राम नहीं हुआ था मुहर्रम की वजह से, वैसे प्रोग्राम सारे हो रहे हैं। मैंने कौन सी छुट्टी की है, मैंने बता, अब देखो मुझे दोबारा 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, 3 बार, लेकिन वही बात, छुट्टी ना की अगर आप नहीं आए थे, अब मैं कैसे बताऊं मैं आया था।
1: चलिए ठीक है, और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, आप अपना ख्याल रखिएगा, सब सुनने वालों को मेरा
0: ओके,
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम सलाम,
1: दुआएं और अल्लाह
0: हाफिज। ऑलराइट जी, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम
2: जी, भाई साहब
0: जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से?
2: नईम लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से?
2: नईम लाहौर से बात कर।
0: अच्छा, नईम लाहौर से, तू ऊंचा बोल रहा, नईम खाना नहीं गया?
2: वो दरअसल थोड़ा गला थोड़ा खराब है।
0: ये क्यों, इस मौसम में गला क्यों खराब हो जाता?
2: वो मैंने शायद कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ठंडी पी ली थी।
0: कोल्ड ड्रिंक पीते हो?
2: हाँ।
0: जूस पिया करो यार,
2: बस आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की।
0: नहीं क्यों, दिन में कितनी पी लेते हो, 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हो?
2: दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ।
0: अच्छा अच्छा, आप उन लोगों में आते हैं जो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लाजमी पीते हैं।
2: हाँ, वो एक्चुअली ना ऐसी आदत पड़ गई है सैन भाई की, जब तक कोल्ड ड्रिंक ना खाने के साथ, ऐसा फील होता है खाना जो है ना वो बस मजा सा है, तो लाजमी फिर आदत सी हो गई है।
0: अच्छा, वैसे ये बड़ी डेंजरस आदत है, इस आदत को चेंज करो।
2: लोग कहते हैं बिल्कुल जैसे आप अभी बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग, लेकिन मजे की बात ये बताऊं, जो मुझे ज्यादा रोकता है ना उसको भी मैंने पीते देखा है।
0: अच्छा, नहीं हाँ। मैं तो कभी 2-3 महीने में एक बार हो गया, चलो कोई मूवी देख रहा हूँ तो साथ चलो इस तरह, वरना तो नहीं। मैं
2: जो कोल्ड ड्रिंक छोड़ने की दफा कोशिश की थी मैंने, तकरीबन 1 हफ्ता निकला था बड़ी मुश्किल से।
0: अच्छा, वाह यार,
2: उसके बाद फिर नहीं रुक, फिर मैंने दोबारा फिर पी ली।
0: लेकिन कोशिश करो कि इसको कम करो, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मुझे बताओ क्या ऐसी चीज, क्या ऐसी बात है जो आपको नहीं पसंद?
2: अच्छा स्नैन भाई, जब गैदरिंग में बैठे हो ना, मुझे दो चीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती गैदरिंग में बैठे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई जब दोस्त बैठे हो तो मोबाइल के साथ जो चिपका हो ना, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एक चीज। दूसरी चीज जो मुझे निहायत बहुत बुरी लगती है, जब गैदरिंग में बैठे और कोई किसी के कान में सरगोशी करे।
0: हाँ, ये दूसरी वाली बात जो है ना, ये इसलिए ठीक है कि यार जब गैदरिंग में बैठे हुए तो अच्छा, कुछ 2-3 लोग ना प्राइवेट बातें शुरू कर देते हैं।
2: वही ना, मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं स्नैन भाई, जो बिल्कुल सामने बैठे थे, लेट्स सपोज अगर 3 बंदे बैठे हैं, मिसाल के तौर पर 3 बंदे बैठे हैं, तो एक सामने बैठा और दूसरा उसके कान में बात करो, तो जो सामने बैठा होगा वो क्या सोचेगा?
0: जाहिर बात है उसको बुरा फील होगा।
2: ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इवन दैट के मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी काफी दफा इस बात पे लड़ाई भी हुई है कि यार ये चीज करने वाली नहीं है जो आप लोग करते हैं। अगले बंदे की इंसल्ट होती है
0: ऐसे ही है। कभी कभी ये भी देखा मैंने कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को उठा के साइड पे ले जाते हैं, यार तेरे से बात करनी है। यार आप उनके साथ बैठते हो ना जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, तो ये है कि आप या तो हो ना कि फोन पे बात कर लो, कोई गिरस्तर की बात है, अगले बंदे को महसूस ना हो, बात आपने ठीक की है।
2: हाँ, तो बस मेरा ये जो सुनने वाले आपके रेडियो से मेरा पैगाम है कि यार जब आप लोग गैदरिंग में बैठे, खासतौर पर लड़कों को ये पैगाम है, नहीं अगर कोई बात की दिक्कत करनी है तो चलो वेट कर लो, जब आप लोग आगे पीछे चले जाए, आप सेपरेट हो फिर बात कर ले, आप अगर कोई इतनी प्राइवेट बात है
0: तो। नहीं तो लड़कियां भी ऐसी करती होंगी, आपने कहा स्पेसिफिकली लड़कों के लिए।
2: लड़कियां जो मर्जी करे, आई डोंट केयर।
0: अच्छा ठीक है, और इसके कह रहे तो नहीं।
2: बहुत अच्छा होता है सुनैन भाई, मैं पहले भी सुनता हूँ और आपकी जो आवाज है ना, ये अब आजकल एक आधे जब प्रोग्राम कर रहा था ना उसकी कोई तारीफ करे तो मैं अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि मैं साहिवाल में किसी रेडियो पे थोड़ी देर अर्थात काम कर चुका हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ। जब एक आज प्रोग्राम कर रहा हूँ ना उसकी कोई तारीफ कर रहा हूँ तो यकीन माने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लगता है। ठीक है, बट आई मस्ट से आप जितने भी आ जाते मैं सबको सुनता हूँ वक्तन फवक्तन, बट आपकी जो आवाज है ना वो इंतहाई यूनिक है, टोटली यूनिक है, सबसे अलग है। फोटो आपकी मैंने देखी है, आप प्यारे देखने में, बट आपकी आवाज बहुत प्यारी है।
0: चलो थैंक यू यार, आप ऐसा समझते हो। मैं अपनी आवाज खुद सुनता हूँ तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती
2: आपकी आवाज। 101 पे जो मेरा सबसे फेवरेट आरजे ज़ीशान है और सबसे फेवरेट आवाज आपकी है, प्रोग्राम मुझे उसका ज्यादा अच्छा लगता है, आवाज मुझे आपकी ज्यादा अच्छी।
0: चलो ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और राइट जी, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम,
3: क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है?
3: मैं आयशा लाहौर से।
0: आयशा लाहौर से बात कर रही है। आयशा क्या कहना चाहेंगी?
3: मुझे ना सिर्फ उस शख्स से नफरत है जो मुझे हर चीज पे इंस्ट्रक्ट कर रहा हो।
0: नफरत कहाँ से आ गई? नफरत कहाँ से? मैंने कहा था रिलेशन से दूर रह के बात करनी है। शख्स कहाँ से बीच में आ गया? नफरत कहाँ से बीच में आ गई? आप इसको इस तरह कह सकते हो कि मुझे जब कोई टॉन्ट करता है ना मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं तो क्यों, आपको क्यों नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई इंस्ट्रक्ट करे, आपको कोई बताए?
3: यार मतलब मेरा काम है ना, मुझे पता है मैंने किस तरह से करना है, तो कोई और आके मुझे कहेगा ना भाई यू नहीं यू करो, तो मेरा काम खराब हो जाता है। जब मैंने काम जिस तरह से करना होता है ना वो वैसे भी नहीं होता।
0: ठीक है, और अगर कोई कोई काम आपको नहीं आता हो और फिर आपको बता रहा हो,
3: वो एक डिफरेंट चीज है कि अगर कोई काम मुझे नहीं आ रहा है, मैं किससे गाइडलाइन ले रही हूँ वो एक अलग चीज है। कोई ऊपर से आके बोलना शुरू करे नहीं भाई इस तरह नहीं, इस चीज छोड़ के इस तरह करना शुरू करते हो, हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं भाई, तुम जिस तरह मर्जी करो, मेरा काम है ना, मैं तो मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी कर सकती हूँ। मुझे अलग अलग दिमाग दिया, मैंने जो चीज अगर मैं कोई काम कर रही हूँ मुझे पता है कि मैंने अपने दिमाग से समझ कर, मुझे मेरी जितनी कैपेसिटी है मैंने उसके हिसाब से समझ कर उस तरह से करूँ।
0: अच्छा भाई सुन लो, आयशा जो काम कर रही है उन्होंने करने दिया करो, ठीक है? एमी ऊपर से आके बोला ना करो, ठीक है ना? अब मैंने कह दिया आपको, ये बोलेगा।
3: थैंक यू सो मच।
0: चलें और कुछ कहना चाहेंगी?
3: मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: चलें बहुत शुक्रिया आपका।
3: मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरा जब भी सांवा चक्कर लगा, मैंने आपसे मुलाकात भी नहीं, आपका कभी यहाँ लगा तो जब आई विश कि मैं आप लोगों से मिल सकूं, एक आपसे और एक ज़ीशान भाई से।
0: ठीक हो गया, सही हो गया।
3: मेरी तरफ से सबको सलाम, सारे पाकिस्तान को दुआएं, सबके लिए फिर दुआएं, जो जो है जहाँ जहाँ है वो सब महफूज रहे इस गर्मी से भी और शैतान के शर से,
0: गर्मी से भी और आने वाली बारिश से भी और आने वाली सर्दियों से भी, बस हर मौसम में बस बच के रहें। चले थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
4: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम सलाम,
4: आपके साथ आतिफ बात कर रहा हूँ।
0: आतिफ कैसे हो, ठीक ठाक हो?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बारिश खबर दी थी, आपको याद होगा मेरे कपड़े सुखा दिए थे, मैंने फिर टिकटॉक पे आपको फॉलो किया था, मैंने मैसेज किया था, देखा होगा,
0: मैसेज किया था? नहीं किया था यार,
4: किया था यार, आतिफ बात मेरे नाम लिखा था,
0: किया होगा, मैंने रिप्लाई किया होगा।
4: नहीं रिप्लाई करने की बात नहीं, देखा होगा, बस आपने इसमें
0: काफी। हाँ देखा होगा, देखा होगा,
4: रिप्लाई भी किया था। हाँ सही है, सही
0: है। तो आतिफ क्या क्या कहना चाहोगे
4: यार? टॉपिक क्या वाले से टॉपिक से अच्छा डिफरेंट जवाब मिलेंगे सुनने को, جو ہے نا کہ یہ جو پنکھے کا شور ہے نا یہ مجھے نہیں اچھا لگتا, بس میں چاہتا ہوں پنکھا ہوا دے اور ریکارڈ نہ کرے.
0: نہیں تو اس کو ٹھیک کراؤ نا یار, یہ کیا بات ہے, پنکھے کا شور نہیں پسند. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہلکا ہلکا شور آنا چاہیے, بالکل خاموشی نہیں ہونی چاہیے.
4: نہیں وہ جس کو نیند نہیں آتی ہوگی تو وہ کہتے ہیں ویسے تو میں چاہتا ہوں یار یہ دماغ ٹھنڈا رہے, آواز ایسا رہے اور آواز نہ ہو.
0: ٹھیک ہو گیا, نہیں نہیں تو چیک کراؤ نا اسے, کیا نام ہے, چینج کرا لو یار. اس میں کیا ہے,
4: نہیں
0: سارے
4: ہی شور کرتے ہیں نا,
0: کہاں سارے شور کرتے ہیں یار. آج کل ایسے پنکھے آئے ہوئے, وہ اب تو کارڈ والے پنکھے آ گئے ہیں
4: یار, اس طرح کا کوئی دیکھتے ہیں, اب دیکھنا پڑے گا
0: مجھے یار. تو وہ تو پتہ نہیں چلتا پنکھا چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اور کچھ کہہ رہے ہو گے,
4: سلامت رہے اور تمام سننے والوں کو سلام.
0: چلو تھینک یو,
4: اللہ
0: حافظ. اللہ حافظ.
4: السلام
0: علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک, نام بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. حق نواز کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی حق نواز کیا کہو گے؟
5: ریلیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں.
0: میں نے کہا ہے ریلیشن کے اوپر نہیں بات کرنی.
5: نہیں وہی میں آپ کو اسی کی طرف لے کے آ رہا ہوں, آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ ایک تو بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں.
0: وہ اس لیے کہ میں پروگرام میں 50 بار بتا چکا ہوں ریلیشن کے اوپر نہیں گل کرنی.
5: نہیں
0: کیونکہ
5: میرا کہنے کا مقصد یہ ہے حسین بھائی کہ جب ہم انسانوں میں رہتے ہوں تو انسان کس کی بات کرے گا.
0: یار میرا کہنے کا مقصد یہ, میں پروگرام میں کوئی بھی ٹاپک رکھ لوں نا, میں سوچ سوچ کے سارا دن پاگل ہو جاتا ہوں. میں کیا پروگرام میں آگے سے جواب آتا ہے, ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ. سنیں نا, آگے سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, وہ ہمارا دل توڑ دیا ہے, تو مطلب کہ بندہ کتنے سر کتنے ہمارے.
5: میں اس پہ ایگری ہوں کہ 100% ہے, اب ٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں ایگو بہت زیادہ آ گئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں ہی ہوں, میں اپنے آپ پہ لگاتا ہوں کہ میں اگر کوئی غلطی کر لوں نا تو اس غلطی کو سدھارنے کی وجہ سے اور بگاڑوں گا. مطلب مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ میں نے حسین بھائی کے ساتھ سے مطلب کوئی ایسی بات کر دی جس سے حسین بھائی کو وہ بات اچھی نہیں لگی, تو باقاعدہ مطلب ہے آپ سے ایکسکیوز کرنے کے میں اسے اور بگاڑوں گا. یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. میں سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ سے کچھ غلطی کسی سے ہو جائے, ہو جاتی انسان ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز ایکسکیوز لازمی کیا کریں. کیونکہ
0: اچھا آپ کہہ رہے انا کا مسئلہ لوگ بنا لیتے ہیں, وہ آپ کو نہیں پسند.
5: ہاں جو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا, یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر.
0: وہ تو پھر دیکھیں وہ تو عادت ہے نا پھر لوگوں کی.
5: ہاں یہ حسین بھائی نہیں ہونے چاہیے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ذاتی لائف میں انٹرفیئر نہ کرے کبھی بھی, یہ بہت بری بات ہے اور اسے اللہ اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتے ہیں.
0: لیکن آج کل تو
5: ہاں جس طریقے سے چل رہا ہے, جس ٹریک پہ چل رہا ہے اسے بس چلنے دیں. ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, اس کو پتا ہے میں نے کیسے چلنا ہے, کس نگر چلنا ہے, کس جگہ چلنا ہے. تو دوسرے جو انٹرفیئر کرتے ہیں نا وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا.
0: اوکے انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, اور کچھ کہنا چاہو گے آپ
5: سب سننے والوں کو؟ میک کر سے السلام علیکم.
0: چلو تھینک یو,
5: اسپیشل سوال.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور رہی جی جہاں تک انٹرفیئرنس کی بات ہے یار, میں ابھی ان کے بات سمجھ یاد آئی, سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے نا, اگر وہ غلطی سے سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے تو آپ کی زندگی کے اندر ایسی انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا کہ آپ کو لگ بتا جاتا ہے, آپ کے مطلب آپ کو دماغ گھوم جاتا ہے یہ ہو کے گیا ہے میرے ساتھ. تو مطلب کہ وہ آپ کے دوست یار تو رشتہ دار تو چلو الگ بات ہے, لیکن پھر جب پوری دنیا آ کے آپ کے لائف میں انٹرفیئرنس کرتی ہے نا, تو وہ ایک عجیب سا ایک سسٹم بن جاتا ہے. اور یہ ویسے مجھے بھی نہیں پسند کہ یار دیکھو اس طرح کوئی چیز آپ اپلوڈ ہی نہ کرو, یا اس طرح آپ کچھ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہی نہ کرو کہ مطلب کہ اس کا کوئی ایشو بنے, یا اس کو لے کے لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں بات کریں, یا اس کو لے کے آپ کو لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یار कुछ चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर करनी नहीं चाहिए। अगर करनी है तो फिर आपको फिर टोटली जो है वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इस तरह का फीडबैक जो है वो आ सकता है, इस तरह लोग जो है वो बात कर सकते हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया के ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर फिर डिस्कशंस होती हैं, तो फिर हर कोई हर चीज़ को लेके डिस्कस करता है, और फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको बुरी भी लग जाती हैं कि यार ऐसे लोग जो हैं वो क्यों सोचते हैं। अब जाहिर बात है दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, हर तरह की सोच रखते हैं, तो वो फिर जो भी बात होगी उसको डिस्कस तो करेंगे ना।

एनीवेज ये आपकी कॉल्स जो हैं हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, साथ आपके मैसेज जो हैं वो साथ साथ हम रीड करते रहेंगे। 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आप अपने मैसेज सेंड करें, साथ www.facebook.com/fm101shellpakistan पर आपके हमारे पास मैसेज और 051111001 and 051920 पर आपकी लाइव कॉल्स आ रही हैं। अभी मुझे प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करना है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है बिलाल सईद की आवाज़ में। और बिलाल सईद का कहना यह है, कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हमें ना सिखाया जाए कि मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम फन के थ्रू जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट बहुत जगह कर चुके हैं। एनीवेज ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हुसैन रज़ा, आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से।

Alrighty, listen, sir, welcome back in FM 101 International में. और आपसे मैंने पूछा, मुझे बताओ कि क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. और अदर देन रिलेशंस जो है, मैंने कहा है कि कोशिश करें कि आप मुझे अपना फीडबैक दें. अच्छा जी, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब जो मैंने सवाल किया उसके हवाले से बातचीत नहीं कर रहे. जस्ट सलाम लिखा हुआ है, शहर का नाम लिखा हुआ है और दैट्स इट. तो जो भी इस तरह के मैसेज सेंड करें, मैं इस तरह के मैसेज जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं करता, क्योंकि एक कॉमन सी चीज़ हो जाती है. तो वो फिर ऐसे लगता है जैसे आप सिर्फ नाम पढ़ रहे हो. तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ बात करके मैसेज जो है भेजा करें. सारा हमारे से लाहौर से पार्टिसिपेट करनी आता है कि किसी सीनिक स्पॉट पर जाकर, किसी भी स्पॉट पर जाकर उसको गंदा करना और लाइन ब्रेक करना, अपनी बारी का इंतज़ार ना करना और आगे निकलने की कोशिश करना, ये वो बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद. हाँ, ये है, देखो आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल रही है. अभी मैं इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, एक बड़ा पोश एरिया है, वहाँ पर बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं. अभी पिछले दिनों मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, एक वीडियो बनाई रात को लेट नाइट, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1:30-2 का टाइम था. सारे खाना खा पी के वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन मुझे भी देख के बड़ा दुख हुआ कि यार लोग अगर कोई कहीं टेक अवे कर रहे हैं तो वो खा के बॉक्सेस रात को ऐसे फेंक के जाते हैं कि जैसे शायद उधर लाइन लगी हुई है, लोग साफ करते रहेंगे. और फिर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी मैं 3-4 दिन से स्पेसिफिकली वो वीडियो देखने के बाद नोटिस कर रहा हूँ कि यार लोग नहीं केयर करते, लोग अपनी जगह के नहीं ख्याल करते. तो मेरे ख्याल से फिर आप यूएई में जाओ ना, दुबई में जाओ, ठीक है, फिर उस तरह का सिस्टम जब यहाँ पर आएगा ना, कैमरे लगे होंगे और आप कोई चीज़ जो है फेंकोगे और आपको फ़ौरन से जुर्माना हो जाएगा, फिर आपको लग बता जाएगा, फिर आप फोर्सफुली जो है वो चीज़ों को फॉलो करोगे, फिर आप कहते हो यार जगह जो है वो साफ नहीं होती हैं और ख्याल नहीं करते, फिर हुकूमत को ब्लेम कर रहे होते हो, कंपनियों को ब्लेम कर रहे होते हो, हालांकि कर आप खुद रहे होते हो. सो प्लीज़ यार इस तरह ना किया करो, जगहों को साफ रखा करो. और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगर कोई बॉक्स

0: टेक अवे कर रहे हैं कोई खाने पीने की चीज, अगर हमने खा ली यार, सामने डस्टबिन इतने बड़े बड़े पड़े होते हैं यार, कितना कोई टाइम लगते हैं यार, हमारे 3 सेकंड लग जाएंगे, हम जाके उसके अंदर हम डाल दें, दैट्स इट। लेकिन आई डोंट नो ये कौन सिखाएगा, कब सीखेंगे इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता। और जहाँ तक लाइन तोड़ने की बात है, ऐसा तो है बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है, लोगों से पेशेंस ही नहीं है, इंतज़ार ही नहीं है। बात देखो बड़ी सिंपल सी है कि हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम वहाँ पर किसी लाइन में खड़े हों तो हमारे में हिम्मत नहीं होती कि हम किसी को क्रॉस कर लें आगे लाइन में, हम बाहर क्यों कानून को फॉलो करते हैं। जब हम अपने मुल्क में आ जाते हैं तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी अथॉरिटी आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि लोग कोशिश करते हैं लाइन को तोड़ के बस पहले हमारा नंबर आ जाए, हमें जल्दी और किसी को जल्दी नहीं, तो सारा हमारा टाइम जो है ना कीमती है और किसी का टाइम कीमती है ही नहीं है। मैंने बहुत सारी मतलब कि इस बात को बुरा नहीं मनाना, मैंने बहुत सारी ख्वातीन को देखा है फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ का कि अगर कोई लाइन लगी हुई है तो वो कहती हैं हम फीमेल है ना, हमें पहले आगे जाने दें। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अगले 15 मिनट में कहीं पहुँचना ही पहुँचना है और मैं एक जगह आधे घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ कि मैं एज नॉर्मल सिटीजन जो है मैं वहाँ पर लाइन में खड़ा हूँ और उसको फॉलो करूँ, और मेरा जब टाइम आए तो मैं जहाँ पर जो भी काम मैंने करना है वो उसके लिए जाऊँ। आप आधा घंटा आप वेट करते हो, एक फीमेल आती हैं, वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, और वो काउंटर या जहाँ पर भी आप लाइन में हो वो लोगों से भी रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं कि हमारा नंबर पहले आ जाए। हालांकि हो सकता है उनको कोई काम ना हो सकता है कोई ऐसी बात हो, हम लोग इज्जत देते भी हैं, हम बारी भी दे देते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि फ़ायदा उठाना, ठीक है, जैसे आप फीमेल कार्ड प्ले करना भी कहते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं अब, और रोज़ हम देखते हैं ऐसा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए टाइम जो है ना सबका कीमती है, यू नेवर नो कि कौन किस तरह अपनी रूटीन को मैनेज कर रहा है, कौन किस तरह अपने काम कर रहा है, कौन किस तरह दौड़ रहा है ज़िंदगी में, आपको नहीं पता होता, लेकिन लोग इतने आराम से आते हैं और इस तरह फ़ौरन आगे अपना काम करा के चले जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ। और अच्छा, मुल्तान से हमारे साथ उमर पार्टिसिपेट करें, आप तो कह के मुझे ट्रैफिक का चलान पसंद नहीं वो तो किसी को भी नहीं पसंद होता, लेकिन ये है कि आप जारी बात है आप ट्रैफिक कवानीन को तोड़ोगे तो फिर चलान तो मिलेगा ना। आजकल तो देखो कैमरा सिस्टम है, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पर, सो कितनी पिक्चर्स आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो और साथ आपकी पिक्चर जो है उस कैमरे से खींच ली गई है, वो शेयर इसलिए भी हो जाती हैं ताकि लोगों को बताने के लिए कि आपको हम देख रहे हैं, तो ज़रा ख्याल करें। तो बाकी चलान किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन ये कि आप कुछ ऐसा करें ही ना कि आपको चलान मिले, बात ये है, तो हम भी तो फिर मानते नहीं है ना, हमें भी फिर मनवाना पड़ता है। एनीवेज कॉल की तरफ बढ़ते हैं, 0511111 0519202540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं और जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। एनीवेज अच्छा, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया अमरीन ने, आप देखें मुझे सियासी पसंद और नापसंद की वजह से एक दूसरे से झगड़ा और अपनी पसंद मुसल्लत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आई एग्री, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अच्छा मैंने इस वजह से मैंने दोस्तों के बीच में पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी ही छोड़ दी है। उसकी वजह यह कि मैंने काफ़ी दोस्तों में देखा है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है अगर आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो उसका अख्तिताम जो है ना वो लड़ाई पर होता है या नाराज़गी पर होता है, कोई एक उठ के चला जाता है, उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती, दूसरे को कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया इसके ऊपर बात करनी छोड़ दी है, डिस्कशन करना छोड़ दी है कि मतलब कुछ ऐसा हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। चाचा दांत बकरियां ला बोरिया तो कलर का हार तो बोरिया चाचा दांत बकरियां ला
0: जी। चाचा जी क्या कहना चाहोगे?
1: ठीक है, मैं सर सो सुने ना ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਇ ਹੁੰਦਾ ਬਕਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਚੁਕਾ ਨਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਇ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਵਾ ਸੋ ਰੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਤੀ ਵੀ
0: ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਫ ਐਮ 101 ਹੈ
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ
1: ਇਹ ਭਾਈ
0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹੇਂਗੇ ਆਪ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ
1: ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਕਰੀਆਂ ਬਸ ਬਸ ਗਾਣਾ ਬਸ ਚਲਾ ਦੇ ਬਸ ਉਹ
0: अच्छा अगला अगला जो भी गाना होगा वो आपके लिए ठीक है
1: चलो
0: ओके अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम जी
0: जनाब कौन कहाँ से
2: डॉक्टर सादत इस्लामाबाद
0: डॉक्टर साहब कैसे हैं ठीक ठाक हैं
2: अल्लाह इज वेरी काइंड आप कैसे
0: हैं जबरदस्त अल्लाह का बड़ा शुक्र क्या कहना चाहेंगे
2: बस आपके टॉपिक के हवाले से इतना ही कहूंगा एक चीज ऑब्जर्व करने में आई है कि हम लोग एक चीज का डार्क पहलू या ग्रे एरिया बड़े अच्छे तरीके से बयान करके तनकीद कह लें उसको सिर्फ तनकीद करने को ही समझते हैं ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है जब किसी वो वेस्टेज ऑफ टाइम है जब आप किसी बुराई को बुरा कहने में जितना टाइम सर्च करते हैं ना तो हकीकत आप खुद भी उतनी देर के लिए उस बुराई के साथ जुड़ चुके होते हैं तो अल्लाह कुरान में कहते हैं कि तुम में से बेहतरीन जो है बात को सुनते हैं गौर से और पैरवी करते हैं बात के बेहतरीन रुख की तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ जो रेडियो चैनल्स हैं वो बात की बेहतरीन रुख पे कभी बात करें हम हमेशा बात के एक उस नेगेटिव पहलू को पकड़ के उस पर तनकीद करके और उसी पर अपनी तब आजमाई करके हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया तो मेरी इस कॉल की वजह से सिर्फ मैं कहूंगा कि डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए हमारी क्योंकि माइक हक अदा करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इसका एहसास जो भी कर जाएगा मेरे ख्याल में वो अपना काम सर अंजाम बेहतर तरीके से दे देगा दिस ओवरऑल
0: अच्छा ऐसी क्या बात हुई है जिसके ऊपर आपने ये बात कही है
2: नहीं मैंने पर्टिकुलरली कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि मैं कोई बंदे का नाम लूं या मैं बात करूं बट अगर आप अपने प्रोग्राम को रिवाइंड करके देखें कि जी माशरे में गंदगी फैलाई जा रही है ये हो रहा है आप कहीं भी देखेंगे सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या रियल मीडिया हो सिर्फ एक चीज जो बुराई हो रही होती है उसको हाईलाइट कर देगा ये बड़ा खराब है जी हम कभी कोशिश करें ना कि यार ये जो अच्छी चीज हो रही है उसको हम अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करें वो ज्यादा मेरे ख्याल में इंस्पायरिंग होगी क्योंकि जो माइक पर बैठता है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो लोगों की सोचों की भी दुरुस्ती करे क्योंकि वरना एक माशरे में लोगों को तनकीद करने की आदत पड़ जाएगी और हर बंदा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझेगा जी कि मैं तो इस चीज की जो है ना एक निशानदेही की और एक बुरी चीज को मैंने बड़े अच्छे तरीके से पेश कर दी ये भी तो एक खोर है तो
0: नहीं अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आपने आप रेडियो सुनते हैं आपने रेडियो पे कभी अच्छी बात नहीं सुनी
2: बदकिस्मती के साथ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया मुझे आज तक समझ नहीं आया जो हमारे आरजेस हैं इनको सिलेक्ट कौन करता है इसका क्राइटेरिया क्या है बिकॉज जिस जमाने में मैं खुद भी रेडियो करता था तो एक किसी को हम सुनते थे कि यार अल्फाजों का चुनाव जुमले और अल्फाजों में फर्क क्या है बहुत कम हो गया है अभी खलंडरापन ज्यादा है थोड़ा सा जिसे आप कह सकते हैं कि हर बंदा जल्दी में है बस उसके अपने 2 घंटे पूरे करने हैं अपनी फीस लेनी है घर जाना है जितनी बातें याद की जाती हैं कई ऐसे रेडियो पर्सन को या टेलीविजन के लोगों को हम करीब से जानते हैं उनके कोलो फेल में जो वो कह रहे होते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में वो ऐसे नहीं होते तो ये तो इंसानी माशरा है हमारा चले उस पर एक अलग बात बट कहने का मकसद है कि जो एक किरदार अदा करना चाहिए अब उसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कभी आप गौर कीजिएगा आप खुद जब रेडियो कर रहे हो तो उस वक्त नहीं जब आप कभी रेडियो सुन रहे हो अब ये देखिएगा कि कॉल करने वाले जो लोगों की अक्सरियत होती है वो क्या बात करते हैं या उनका ताल्लुक माशरे के किस एजुकेशन जो कहते हैं ना एजुकेटेड तबके के साथ है इंटेलेक्चुअल तबके के साथ है आपको 90% से ज्यादा कॉलें मिलेंगी हमारे माशरे के सफेद पोश या लो मिडिल क्लास लोग कभी भी किसी प्रोग्राम में मैंने नहीं सुना कि कोई साहिब इल्म आके लोगों से बात कर रहा हो कोई नसीहत कर रहा हो कोई वो बात बता रहा हो जो कि एंकर पर्सन को या आरजेस वगैरह बच्चों को नहीं पता होती तो इसका मतलब है कि रेडियो ऐसे लोगों के लिए मौके नहीं फ्राहम कर रहा कि वो माशरे में जो कि आप कह सकते हैं असातिज़ा उनके लिए एक तो क्लासरूम होता है ये रेडियो भी तो एक क्लासरूम है मैं और आप भी बात कर रहे हैं 10 लोग सुन रहे हों या हजारों सुन रहे हों ये भी तो एक मीडियम है कभी हमने इस मीडियम को माशरे की एक मिनहैज ग्रोथ के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया वो उनवानात हर बदलते दिन एक नया
0: ठीक है, मैंने आपकी सारी बात सुनी है, इसीलिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं मैंने बिल्कुल आपकी बात समझी है। और चले मैं इसके ऊपर ऑन एयर में बात करता हूँ, ठीक है डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने शेयर की है, अच्छी बात है, जो दिल में बात हो वो कहनी चाहिए, और जो आप ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो एक अच्छे तरीके से कहना भी चाहिए। अच्छा अब मैं बाकी रेडियो चैनल्स की तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे FM 101 के चैनल में अगर आप सुबह से लेकर शाम तक ट्रांसमिशन अगर आप सुने ना, तो आपको डिफरेंट ट्रांसमिशंस जो हैं वो देखने को मिलती है। ट्रांसमिशंस इन द सेंस के डिफरेंट पहलुओं के से आपको प्रोग्राम जो है वो सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे दिन के टाइम में गेस्ट भी ऐसे आते हैं जो डिफरेंट इदारों के होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के होते हैं गेस्ट जो हैं, और ज़िंदगी के डिफरेंट फील्ड से होते हैं, उनके साथ बातचीत होती है और बहुत कुछ होता है। आर्टिस्ट भी आते हैं, उनके साथ गपशप भी होती है, फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जाता है जिनको आप ऑन एयर डिस्कस कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों को आप लिमिट करके रखते हो क्योंकि ऑन एयर आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाता है ऑन एंड ऑफ जो है। और मैं अपने प्रोग्राम के बारे में अगर बताऊँ, मेरा प्रोग्राम बड़ा मिक्स किस्म का होता है, इसमें हंसी मजाक भी होती है, इसमें मैं बहुत सारी दुनिया के हवाले से बातचीत भी करता हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करता हूँ, अभी से नहीं 20 साल से कर रहा हूँ, और जो मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम में बात करनी चाहिए। अब उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, उसमें जो नेगेटिव चीज़ें मैं देखता हूँ वो भी होती हैं। हाँ, मैं कोई कोशिश मेरी ये होती है, इंसान गलती हो सकती है, कोशिश मेरी ये होती है कोई ऐसी बात ना हो जो कि नहीं होनी चाहिए, एक ब्रॉडकास्टर को नहीं करनी चाहिए, हमेशा से कोशिश रही है। तो ये है कि बाकी आपकी बात जो है वो सारों ने सुनी होगी, और आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल सर आंखों पे ये है कि, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रांसमिशन में होती हैं। तो एनीवेज थैंक यू वेरी मच। आप लोग कॉल्स करो प्रोग्राम में 0511111 एंड 0519202540 पर। इसके अलावा आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, और साथ फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। आप मुझे बता रहे हो क्या ऐसी बात है जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद।

अच्छा जी, अभी मुझे जल्दी से एक म्यूजिक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और मैंने नेक्स्ट ट्रैक जो है आपके लिए जो क्यू किया हुआ है. अच्छा, फरहान सईद का एक ट्रैक आया था, मेरे ख्याल से ये ट्रैक 2012-13 में मेरे ख्याल से ये रिलीज हुआ था. सो आज दिल कर रहे थोड़ा पुराना ट्रैक प्रोग्राम में मैं इंक्लूड करूँ. अब तो खैर फरहान सईद के ज़्यादा ड्रामास देखने को मिलते हैं और वही बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जितने भी सिंगर्स हैं वो ड्रामा इंडस्ट्री में आ गए हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, गानों से काफ़ी दूर हो गए हैं. एनीवे द ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM Mormon International.

0: ओके तो वेलेश साहब वेलकम बैक कहते हैं एफ एम और इंटरनेशनल फरहान सईद की आवाज़ में आप ट्रैक सुन रहे थे। एनीवेज आप मुझे बता रहे हो प्रोग्राम में कि क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो लाइव कॉल्स में 0511111 एंड 0519202540 पर। इसके अलावा आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101channelpakistan पर। और अच्छा एक मैसेज मेरे पास आया है कि एक बात जो अच्छा हसनैन रजा को नहीं पसंद वो है गाने की फरमाइश, जैसा मैं कहूँ प्लीज़ ऐद वफा का सॉन्ग लगा दें। हाँ देखो आपको पता है ना कि सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट जो है वो मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर साथ साथ कॉल्स आप ही प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके हमारे रेगुलर कॉलर जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलती है टून टून टून। और अच्छा मेरे एक दोस्त सुन रहे हैं मनान रऊफ इस्लामाबाद में, और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे कोई पुराने दोस्तों के सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करो। पहले तो मनान मुझे बताओ कि आप इस टाइम मतलब घर जा रहे हो, मुझे पता है आपकी ड्यूटी आवर्स लेट खत्म होते हैं, आप इस टाइम घर जा रहे होगे।
1: तू थोड़ी देर और ठहर जा।
0: अच्छा जहाँ पर पुराने दोस्तों की बात हो रही है मैं मनान के बारे में बताऊँ, मनान मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त है और इनके घर बैठ के हमने जितने फर्स्ट सेशनल सेकेंड सेशनल फाइनल्स जितने सेमेस्टर्स की तैयारियां की हैं, और अल्लाह पाक इनकी वालदा को जन्नत में आलम काम दे, जितने आंटी ने हमें चाय पिलाई हैं कि जितने बिस्किट खिलाए हैं, यकीन करें कि टाइम कुछ टाइम ऐसा होता है ज़िंदगी में जिसको आप भूल नहीं सकते हो, और हमने बड़ा गोल्डन टाइम जो है ये मेरे दोस्त जो हैं मनान के घर में गुजारा है यूनिवर्सिटी का। और मतलब हम जाते थे पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ दोस्त होते थे और वहाँ पर हम पढ़ते भी थे और हंसी मजाक भी इतना करते थे कि वो खैर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखिए पुराने दोस्त तो फिर पुराने होते हैं ना, और हालांकि अभी मेरे दोस्तों से मुलाकात बड़ी कम होती है, मे भी शायद ईद के ईद होती है या शायद कोई 3-4 महीने में एक बार होती है, ऐसा ही ना मनान। तो लेकिन यह है कि हम अभी भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हम आज से 15-20 साल पहले मिलते थे। तो चलें जो भी नेक्स्ट ट्रैक में प्ले करूंगा ना वो मैं अपने सारे पुराने दोस्तों के लिए करूंगा आपकी तरफ से मनान, ठीक है। ओके जी कॉल्स हम शामिल कर रहे थे, देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
2: सॉरी स्टैंड बाय मैंने दोबारा कॉल की, मैंने एक छोटी सी बात ऐड करनी थी आपके शो में।
0: अच्छा जल्दी से कर ले नाम पहले दोबारा बताइएगा।
2: हाँ नहीं बोल रहा जल्दी से, मैंने ये कहना है बेसिकली ना आरजे जो होता है जब एक प्रोग्राम कराता तो आरजे का मतलब क्या है, रेडियो जॉकी, ठीक है। तो आरजे का मतलब लोगों को इंटरटेन करना होता है, ना कि कोई सबक पढ़ाने, नहीं आरजे का आता है लोगों को इंटरटेन करने आता है आरजे, तो आरजे का मतलब ये होता है, बस मैंने ये कॉल करके बताना।
0: अच्छा चले चले थैंक यू। और भाई जी खैर मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि हर जो लिसनर होता है ना वो अपने, क्योंकि मैं भी एक लिसनर रहा हूँ ठीक है, और एक लिसनर जो है वो अपने सोच के हिसाब से अपने मिजाज के हिसाब से वो प्रोग्राम जो है वो सुनता है और जो भी उसमें बात हो रही हो उसका उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है और उसका जवाब देता है। तो इसलिए इसके ऊपर नो कमेंट्स, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, तो इसके ऊपर इसलिए मैं कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा जी कॉल्स हम शामिल करते हैं, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो नहीं जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, कॉल जो है वो आखिर में ड्रॉप भी हो गई, और खैर कॉल ड्रॉप हो जो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो खैर जी दोबारा से अभी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं 0511111 0519202540 पर। अच्छा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया हिना ने रावलपिंडी से, आपने कहा है अच्छा जब मैं कोई बात कर रही हूँ और मुझे बात करते हुए कोई टोके तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। अच्छा ये बात वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती। अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है किसी को बात करने ही नहीं देते, ठीक है। अगर वो कोई भी बात करना चाह रहे हो, ये दोस्तों में ऑब्वियसली होता है, कोई भी बात करना चाह रहे हो, वो आगे से वो एकदम से ना अपनी बात शुरू कर देते हैं। और अब देखो हर तरह के लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग मतलब इतने बात नहीं करते, ठीक है, जब लोगों में बैठते हैं, लेकिन जब वो बात करने लगे तो उनको एकदम रोक दिया जाता है, ठीक है, उनको बात पूरी नहीं करने दी जाती या उनकी बात पूरी तरह सुन ही नहीं जाती। मैं आपको बताऊं, इस चीज़ से लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बड़ा कम होता है। तो यार सुना करो, समटाइम्स जो है आपके दोस्त दोस्त यार जो हैं आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो कोई ज़रूरी बात भी हो सकता है करना चाह रहे हैं। और कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो मे भी शायद इतने बातूनी ना हो, वो कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रहे हो लेकिन नहीं करने देते, उनको उनकी बात सुनते नहीं है। तो बात जरूर सुना करो, क्योंकि देखो हर एक इंसान का दिल होता है यार, हर किसी को तकलीफ होती है। तो मैं कल कहीं पे एक किसी ने व्हाट्सएप पे स्टेटस दिया, तो उसमें इसी के हवाले से कुछ मजाक के हवाले से एक स्टेटस था, उसमें लिखा हुआ था कि यार किसी से ऐसा मजाक ना करो कि वो जब अकेला बैठे सोचे कि यार ये मजाक तो नहीं था, 10 लोगों में बैठ के मेरी इंसल्ट हो गई है और मुझे जो है बड़ा बुरा फील कराया गया है। एक मजाक की लिमिट होती है जब आप लोगों में बैठे होते हो या आप अकेले भी हो, तो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो हो सकता है आप अगले बंदे को कह दो यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने मजाक में ये बात की थी, और उस मजाक में कोई आप ऐसी सीरियस बात कह जो, तो आप उसे सॉरी कर भी दोगे ना, लेकिन उसके दिल से बात वो निकलेगी नहीं, वो उसके दिल में रहेगी, वो घर जाके सोचेगा या अकेले बैठे बैठेगा सोचेगा यार इसने ये मेरे से बात की क्या थी। तो उस पे इंसान है, इंसान को तकलीफ होती है। तो वो मुझे किसी ने स्टेटस शेयर किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो खैर काफी लंबा चौड़ा स्टेटस था, मैं तो बड़ा शॉर्ट करके ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। तो खैर चलें कॉल्स हम देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रही है? अच्छा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा।
3: भाई एक महीने से मेरा तबीयत खराब है, इसलिए तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही। आज मैंने सोचा मैं हर हाल में पार्टिसिपेट करती हूँ।
0: अच्छा क्यों, आपको क्या हुआ?
3: गलत करने के लिए खराब है, ठीक ही नहीं हो रहा।
0: ओके चलें, गेट वेल सून और अल्लाह करे आप जल्दी ठीक हो जाए।
3: और दूसरा भी आपके सारे प्रोग्राम सुने हैं, तो आपने गेस्ट आए थे तो आपने सोचने की छुट्टी दी है। बाकी है कि मुझे पूछने से बुरी लगती है, जो आपने की भी ना हो फिर मैं आपको बोल दिया था कि आपने ही की है, मुझे यकीन है तुमने ही की होगी, तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और मुझे यकीन मैंने खून तो तुम तक कोई खैर खबर नहीं होती।
0: अच्छा मुझे ना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है
3: अब आ रही है,
0: जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता है।
3: मैं कह रही हूँ ना, जब दो चीज मैंने की ना बुक्स भी नहीं मिली, मतलब ऐड कर दी जाए कि तुमने ही काम किया है, तुमने ये काम नहीं करना चाहिए था, और जब मुझको उसके बारे में कोई खबर ही ना।
0: अच्छा कोई काम आपने ना किया हो लेकिन आपको आपको वो कहा जा रहा हूँ, नहीं ये आपने किया है, ठीक है, वो आपको जो है वो पसंद नहीं है, इस तरह की बात जो है, ठीक हो गया। चले आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है इसलिए मैं ज़्यादा देर आपकी कॉल नहीं ले सकूंगा, बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी, ठीक है, चले थैंक यू ज़रा, आपका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट जी, होता है ये भी, अब सोसाइटी में होता है, लोगों में होता है कि कभी कभी आपके ऊपर ना चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश की जा रही होती हैं, हालांकि वो आपने नहीं की होती लेकिन लोग कहते हैं नहीं तुमने की है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
4: लाहौर से निमशा।
0: रिमशा फ्रॉम लाहौर जी, कैसी हो आप, ठीक ठाक हो?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे।
0: बिल्कुल ठीक है।
4: और टॉपिक पे भाई मैं ये बात करूंगी कि मुझे जो स्ट्रगल रहती है कि ये कि मुझे हर चीज पे टोका जा रहा हो, हर काम पे टोका जा रहा हो कि ये मत करो, वो मत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, ये मत खरीदो, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा, आपको कोई काम करते हुए रोका टोका जा रहा हो, वो ये आपको पसंद नहीं है?
4: ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी मैं कोई भी फैसला लूं मुझे ना उस पर टोका जा रहा हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो वो मुझे पसंद नहीं है।
0: नहीं तो इतना गुस्सा क्यों आता है आपको?
4: गुस्सा भाई, गुस्सा तो हर बात पे इंसान को आ जाता है, लेकिन मैं
0: हर बात पे आ जाता
4: है, अगर मुझे आ रहा तो मैं गुस्सा बर्दाश्त कर लेती हूँ, गुस्सा पी जाती हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान का, जिस इंसान को जिस चीज से खुशी मिल रही होती है ना, दुनिया उसी चीज में ना टांग अड़ाती है, उसी चीज में ना तंग मारती है कि इसकी खुशी में पंग करे हम लोग, बस इसको तंग करे, तो इसलिए इंसान को फिर गुस्सा आ जाता है, बर्दाश्त जो है ना फिर खत्म हो जाती है, एक लिमिट तक होता है गुस्सा, एक बर्दाश्त भी इंसान के अंदर एक लिमिट तक होती है, कब तक इंसान किसी की बकवास को बर्दाश्त कर सकता है, कब तक वो इंसान उसके अल्फाजों को इस्तेमाल चुप करके सुनता रहे, पर इसलिए मैं गुस्सा जो है ना काफी मतलब ऐसा होता है कि मैं पी जाती हूँ, लेकिन बार दफा फिर मुझे बोलना पड़ जाता है।
0: ठीक है, इग्नोर किया करें, ठीक है, गुस्सा करने से फायदा कुछ नहीं होता,
4: बिल्कुल
0: बेहतर ये है इग्नोर करें, मुश्किल होता है लेकिन स्टिल कोशिश किया करें।
4: नहीं नहीं मैं कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई मेरी लाइफ के अंदर जो है ना, मैं सही कहती हूँ कि पहले मेरी लाइफ में काफी मुश्किलें थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें थी, आप यकीन करिए अगर मुझे कोई पूछता था ना कि तुम कैसी हो, तो मैं कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अब जब से अपनी लाइफ में ये अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ शुरू किया है ना, तो आप यकीन करिए मेरी लाइफ में आसानी आने लगी।
0: ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इन चीजों को समझ जाओ ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है।
4: बिल्कुल, अगर मुझसे कोई भी पूछता है तुम कैसी हो, हालांकि मैं परेशान भी हूँ, तो मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
0: ठीक हो गया रिमशा, थैंक्स फॉर कॉलिंग।
4: जी जी,
0: मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया।
4: ठीक है, ओके जी, अल्लाह
0: हाफिज। ऑलराइट जी, अच्छा ये दूसरी कॉल थी जिसमें ये कहा गया कि हमें पसंद नहीं है कि हमें कोई टोका जाए काम करते हुए, तो इट मींस के हम लोगों को बस खामोशी से अपने तरीके से काम जो है वो करने दिया जाए, हम सारे काम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी परवेज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
5: अल्हम्दुलिल्लाह। आपने साहब ठीक हैं?
0: जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
5: बस ये कि क्या कहने को, पहले खुद अमल करो फिर दूसरों को बताओ। सर बहुत सी बातें देखने को मिलती है रोजाना, जिन बातों से मुझे गुस्सा भी आता है और मैं फिर खामोश भी हो जाता हूँ। जैसे मस्जिद में नमाज खड़ी हो जमात के साथ, वहाँ लिखा होता है नमाज के दौरान अपना मोबाइल फोन बंद कर दे, बाद में घंटी बजती रहती है। लेकिन सर ये एक अल्लाह का घर है, 10 मिनट की तो नमाज होती है, फिर इसे भी फिर हम टकरे मारने शुरू कर दें, और इसके बाद बहुत ही वजू करते हैं लोग, तो आपस में बात करने शुरू कर देते हैं। शायद ये मेरी बात किसी के दिल में अच्छी लगी तो दुआ में याद रखना। कहते हैं जब इंसान वजू करता है तो वो फ्रेश तो उसके लिए रहमत की चादर डाप लेते हैं, तो ये भी अगर बहुत से लोग हैं जो आपस में वो बातें करना शुरू करते हैं, ऐसे एहतियात करने चाहिए सर, 10 मिनट की नमाज होती है अल्लाह की इबादत के लिए जो है, तो बस इसे हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। अमल इलम ज्यादा हो गया सर, अमल की जरूरत है सर।
0: ऐसे ही ऐसी बातें तो दोबारा
5: आपका अच्छा, बहुत अच्छा बातें होती है, बहुत अच्छी बातें आप लोगों से, हम लोग सीखते हैं, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो अल्लाह ताला आप लोग को समझ रखे। जितने भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब से मैंने बहुत मुलाकात भी की है, बहुत अच्छे इंसान है, इनको भी इस्लाम जितने भी सुनने वाले सर, तो मेरे पास आपसे भी मुलाकात हो जाए।
0: चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
5: क्यों आपको समझ रखे सर, सब सुनो सर, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, आपकी कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, एक कॉल और मैं शामिल करूंगा, फिर मैं सॉन्ग की तरफ बढ़ूंगा, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम।
6: हुसैन भाई क्या हाल है?
0: जी जबरदस्त, कौन कहाँ से?
6: अब्दुल हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: जी हाशमी भाई क्या कहना चाहेंगे?
6: तो टॉपिक पे आने से पहले मैं छोटी सी वजाहत करना चाहूंगा, मुझे तकलीफ पहुंची है डॉक्टर साहब की बात।
0: अच्छा वो क्रॉस कमेंट नहीं, हाशमी में क्रॉस कमेंट है।
6: चलो ठीक है, तो किसी भी कौम, मुहज्जब कौम की जो पहचान जो होती है ना, वो उसका ट्रैफिक का निजाम होता है।
0: बिल्कुल।
6: तो जब मुझे ये देखिए, एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल रास्ता, उसमें भी लोग आगे बाइक ले जाते हैं, कारें ले जाते हैं, तो वो इशारा तोड़ के भाग जाते हैं पूरी हम एक कौम कौम नहीं बन सके, एक एक हम एक रशी कौम मतलब रशी पीपल बन गए हैं और आज तक हम एक कौम में जो होती है ना क्वालिटी तो वो हम में नहीं है। मुझे ये बहुत नापसंद है इशारा तोड़ना, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करना। तो अल्लाह ताला सबको हदायत दे।
0: ये जो आपने बात की ना, एकदम से गाड़ी भुगा देते हैं, बाइक भुगा देते हैं, बिल्कुल जहाँ पर इशारा जैसे बंद होने लगे ना साथ ही निकल जाते हैं। तो
6: और भी बड़ी और भी एक ज्यादा चीज है ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल वालों बुजुर्ग होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, तो वहाँ भी लोगों ने बाइक वगैरह आगे ना खड़े करके उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ना वो खड़े होते हैं लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है देखकर और बड़ा दुख होता है। हम मतलब हम
0: चले कोई नहीं, ऐसे ऐसे सख्ती हो रही है अभी इन चीजों में भी, बड़ी सख्ती हो जाएगी आने वाले टाइम में।
6: बड़े अच्छे बाद आपसे बात हो रही है, अल्लाह
0: हाफिज। चले थैंक यू अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, अभी मुझे एक प्रोग्राम में ट्रैक प्ले करना है और अभी दोस्तों की बात हो रही थी, पुराने दोस्तों की बात हो रही थी, जहाँ पर दोस्तों की बात हो वहाँ पर अली हैदर का सॉन्ग ना हो, पुरानी जीन्स और गिटार। सो ट्रैक को इंजॉय कीजिएगा, हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद।

jeans. All right, जी, पुरानी जीन्स और गिटार आप सुन रहे थे एफ एम वर्मा इंटरनेशनल में, और साथ में वक्त दे रहा था. वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है और दो घंटे का पता नहीं चलता, ऐसे टाइम गुजर रहा है और शो जो है वो खत्म हो जाता है. एनीवेज, ये आज के प्रोग्राम में आपसे मैं पूछ रहा था, मुझे बताओ कि क्या ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद. सो अपना फीडबैक आप मुझे दे रहे थे लाइव कॉल्स पे, मैसेज पर, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो सोशल मीडिया पे. मेरा नाम लिख के हसनैन रजा, HASNAIN हसनैन स्पेस RZA हसनैन रजा लिखोगे आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह मैं आपको मिल जाऊंगा. और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कोई बात करनी हो मुझे इनबॉक्स कर सकते हो. आपका मेरा साथ सिर्फ मंडे मिडनाइट को रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM मोरो इंटरनेशनल में होता है. सो अभी लास्ट ट्रैक प्रोग्राम प्ले करने जा रहा हूँ. लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, आदिफ असलम फीट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, ट्रैक सनु इकबाल, चैन ना आवे. सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. हसनैन रजाई साइनिंग ऑफ नाउ, ठीक है, अल्लाह हाफिज.